0: Leica Gold.
1: Location, location, location.
2: In real estate, location is everything. And this one is a winner.
1: Introducing Greens by Daniel, a premium collection of townhouses and villas
2: located in Dubai in a prime location for high appreciation.
1: Step inside and walk into fully furnished townhouses and villas with premium Italian furnishings.
2: Step outside and enjoy 50 plus amenities inside the master community.
1: And the best part, townhouses and villas, Greens start from just £711,000.
2: To book, call our London office on 02 03963 5757. Greens by Daniel, prime location,
1: high appreciation
2: in Dubai.
3: भारत या पाकिस्तान जाने की सोच रहे हैं तो एयर टिकट साउथ हॉल ट्रेवल से खरीदिए।
4: मगर साउथ हॉल ट्रेवल से ही क्यों?
3: क्योंकि उनसे ज्यादा सस्ती टिकटें कहीं नहीं मिलेंगी।
4: गारंटेड
3: बुकिंग करवाएं और उसके बाद 24 घंटों के भीतर कहीं से भी सस्ती ला के दिखाएं तो ये फुल रिफंड या प्राइस डिफरेंस वापस कर देंगे। साउथ हॉल ट्रेवल
4: फोन 02085748410।
3: 24 घंटे किसी भी वक्त फोन करें 02085748410। एट ऑल प्रोटेक्टेड।
5: Mum, I'm outside. Yes, literally just landed.
6: Wait. How are you calling already? I'm still searching for Wi-Fi.
5: Oh, I'm on Simzy. Downloaded the eSIM back at Heathrow.
6: And you didn't pay those massive roaming charges?
5: Not a penny extra. Just a cheap local data plan. I even kept my UK number for bank alerts.
7: Heading home for the holidays? Skip the roaming drama. Get instant 5G data in India and 100 plus countries. Download the Simzy app today. Simzy, your global flow. T's and C's apply.
8: बजट टाइट पर ब्रांड का इम्पैक्ट बड़ा चाहिए? लाइका रेडियो और लाइका गोल्ड लाए हैं आपके लिए परफेक्ट पैकेज। रेडियो, डिजिटल या इवेंट, सब कुछ मिलेगा कस्टमाइज्ड। जल्दी करिए, कॉल नाउ 02071321458 या लिखिए sales@laikaradio.com।
9: क्लासिक नगमे आपके अपने लाइका गोल्ड पर।

ये रात है ये तुम्हारी जुल्फें खुली हुई हैं, है चांदनी या तुम्हारी नजरों से मेरी रातें धुली हुई हैं, ये चांद है या तुम्हारा कंगन, सितारे हैं या तुम्हारा आंचल, हवा का झोंका है या तुम्हारे बदन की खुशबू, ये पत्तियों की है सरसराहट कि तुमने चुपके से कुछ कहा है, ये सोचता हूं मैं कब से गुमसुम कि जबकि मुझको भी यह खबर है कि तुम नहीं हो, कहीं नहीं हो, मगर ये दिल है कि कह रहा है कि तुम यही हो, यही कहीं।

मजबूर ये हालात इधर भी है उधर भी, तन्हाई की एक रात इधर भी है उधर भी। कहने को बहुत कुछ है मगर किससे कहें हम, कब तक यूं ही खामोश रहें और सहें हम। दिल कहता है दुनिया की हर एक रस्म उठा दें, दीवार जो हम दोनों में है आज गिरा दें। क्यों दिल में सुलगते रहे लोगों को बता दें। हाँ हमको मोहब्बत है, मोहब्बत है, मोहब्बत। अब दिल में यही बात इधर भी है।

0: ये है लाइका गोल्ड। भारत या पाकिस्तान जाने की सोच रहे हैं तो एयर टिकट साउथ हॉल ट्रेवल से खरीदिए।
1: मगर साउथ हॉल ट्रेवल से ही क्यों?
0: क्योंकि उनसे ज्यादा सस्ती टिकटें कहीं नहीं मिलेंगी।
1: गारंटेड
0: बुकिंग करवाएं और उसके बाद 24 घंटों के भीतर कहीं से भी सस्ती ला के दिखाएं तो ये फुल रिफंड या प्राइस डिफरेंस वापस कर देंगे। साउथ हॉल ट्रेवल
1: फोन 02085748410।
0: 24 घंटे किसी भी वक्त फोन करें 02085748410। एट ऑल प्रोटेक्टेड।
2: So, your decaf, oat milk, extra but not piping hot, 4 pumps of caramel, no sugar, small latte in a large cup. That will be 10 minutes.
3: No worries, I'm having fun on Play Ojo.
4: Keep it fun with Play Ojo's safer gambling tools, including take a break and time checks to keep track of your play.
2: Here's your decaf, oat milk, extra but not piping hot.
3: Thanks, playtime's over. Mmm, lovely.
5: Feel the fun, Play Ojo.
4: 18 plus gamble aware.
6: Classic Nahumi. Aapke apne Laika Gold par.

0: ये है लाइका गोल्ड 10:35 AM
1: लोकेशन लोकेशन लोकेशन
2: इन रियल एस्टेट लोकेशन इज एवरीथिंग एंड दिस वन इज अ विनर
1: इंट्रोड्यूसिंग ग्रीन्स बाय डैनियो अ प्रीमियम कलेक्शन ऑफ टाउनहाउसेस एंड विलास
2: लोकेटेड इन दुबई इन अ प्राइम लोकेशन फॉर हाई अप्रिसिएशन
1: स्टेप इनसाइड एंड वॉक इनटू फुल्ली फर्निश्ड टाउनहाउसेस एंड विलास विद प्रीमियम इटालियन फर्निशिंग्स
2: स्टेप आउटसाइड एंड एंजॉय 50+ एमिनिटीज इनसाइड द मास्टर कम्युनिटी
1: एंड द बेस्ट पार्ट टाउनहाउसेस एंड विलास ग्रीन्स स्टार्ट फ्रॉम जस्ट £711,000
2: टू बुक कॉल our London office on 02039635757 Greens by Danube prime location
1: high appreciation
2: in Dubai
3: CTV and C5 proudly present Hamare Ram produced by Felicity Theatre India aur Dubai mein houseful shows ke baad ab pehli baar London mein dekhiye Ashutosh Rana ko as Ravan aur Rahul R Bhuchar ko Prabhu Shri Ram ke roop mein Ramayan ki undiscovered stories live on stage 9 se 12 July Eventim Apollo Hammersmith Hamare Ram book your tickets now visit www.eventimapollo.co.uk exclusive radio partner like our Radio.
4: Packed for the trip? Gifts? Passport?
5: Check. Just dreading that phone bill when I get back from India. Roaming is a nightmare.
4: Mate, you're doing it wrong. Just get Simzy.
5: Simzy?
4: It's an eSIM app. You buy a data plan for India starting at just $5. No swapping plastic SIMs. No kiosks.
6: Plans for Asia, Europe and beyond. Search simzy.com. That's SIMZY.com. T's and C's apply.
0: ताज़ा करें अपनी यादें लाइका गोल्ड के साथ
7: जानना है

0: is Leica Gold, a part of the number one Asian commercial radio network in Greater London. The Leica Group.
1: काम कर गई दोनों ही मेरी बख्शिश के लिए मोमिन की दुआ

उत्तम नीच हुक्म लिख दुख सुख पाई हैं, एक ना हुक्मी बख्शीस एक हुक्मी सदा भुआई हैं। हुक्मे अंदर सबको बाहर हुक्म ना कोए, नानक हुक्मे जे बुझे ताहों मैं कह न कोई। गावे को तान होवे किसे तान, गावे को दात जाने निशान। गावे को गुण वडियाईयां चार, गावे को विद्या विखम विचार। गावे को साज करे तनखे, गावे को जी लै फिर दे। गावे को जापे दिसे दूर, गावे को वेखे हादरा हदूर। कथना कथी ना आवे तोट, कथ कथ कथी कोटी कोट कोट। देंदा दे लेंदे थक पाहे, जुगा जुगंतर खाई खाए। हुक्मी हुक्म चलाए राव, नानक विकसै वे परवाह। साचा साहेब साच ना।

मैं विसर ना जाए जे जुग चारे आर जा होर दसूनी होए नवा खना विच जानी है नाल चले सब कोए चंगा नाम रखाए कै जस कीरत जगले जे

होए जे को मन जाने मन कोए मन्ने मार्ग ठाक न पाए मन्ने पत्स्यों प्रगट जाए मन्ने मग न चले पंथ मन्ने धर्म सेती संबंध।

असंख चोर हराम खोर, असंख अमर कर जाए जोर, असंख गलवड हत्या कमाए, असंख पापी पाप कर जाए, असंख कूड़े यार कूड़े फिराए, असंख मलेच मल भक खाए, असंख निंदक सिर करे भार, नानक नीच कहे विचार, वारिया न जावा एक वार, जो तुद भावे साई बलिकार, तू सदा सलामत निरंकार। असंख नाव असंख थाव, अगम अगम असंख लो, असंख कहे सिर भार होए।

ता लिखिए लेखे होए विनाश। नानक वड्डा आखिए आपे जाने आप, साला ही साला एती सुरत न पाया, नदियां ते वहां।

गावन पंडत पढ़न रखी सर, जुग जुग वेदा नाले गावे मोहनिया मनमोहन सुरगा मच प्याले। गावन रत्नु पाए तेरे अठ सठ तीरथ नाले, गावे जोध महाबल सूरा गावे खाणी चारे। गावे खंड मंडल वर भंडा कर कर रखे धारे।

अनाहत जुग जुग एको वेश उगत ज्ञान दया भंडारण घट घट वाजे नाद आप नाथ नाथी सब जाकी रिद सिद्ध।

जोर जोर ना जीवन मरण है जोर जोर ना राजमाल मंसोर जोर ना सुरती ज्ञान विचार जोर ना जुगती छुटै संसार जिस हाथ जोर कर वेखे सोए नानक उत्तम नीच ना कोए राती रुती चित्ती वार पवन पानी अग्नि पाताल तिस विच धरती थाप रखी धर्मसाल तिस विच जी जुगत के रंग तिनके नाम अनेक अनंत करमी करमी होए विचार सच्चा आप सच्चा दरबार तिथे सोहन पंच परवान नदरी करम पवै निशान कच पकाई उथे पाए नान गया जापै जाए।

0: What a classic. That's from the film Asli Nakli. I don't know why it cut there. It's nothing to do with me. It just cut. So that is a beautiful song by, of course, our very own Mohammed Rafi.
1: Tasty track of the hour. Sponsored by Coca Noodles. Just add hot water and enjoy Coca Noodles in 3 minutes. Yeah, hai Like a
0: Gold. So well done to Jinx, Manoj Patel, number ending in 122, that's Jay Patel and Shanta. You've got the answer right for today's Bollywood flashback. Let's continue with the dialogue.
2: बात है, कल पिताजी जिंदा थे तो हमारा ब्याह नहीं हो सकता था, अब पिताजी मर गए तो हमारा ब्याह नहीं हो सकता, कल तुम्हारा मामा मर जाएगा तो हमारा ब्याह नहीं हो सकता, परसों अर्जुन सिंह मरेगा, फिर ये मरेगा, फिर वो मरेगा, और एक दिन हम मर जाएंगे, बस किस्सा खत्म।
3: कैसी उल्टी सीधी बातें कर रहे मुन्ना बाबू, आप इस एस्टेट के मालिक हो, आपको समझदार बनकर रोबदार से रहना चाहिए, जैसे आपके पिताजी थे ना, उन्हीं की तरह आपको सब पर हुकूमत चलानी चाहिए।
2: अरे जमुना, अब हमको सब सरकार सरकार कहकर बुलाते हैं। हाँ, आप सब पे हमारा रोबदार हो गया है।
1: WhatsApp message Like a Gold now on 07 44 23 23 23. Like a Gold. Across Greater London, this is Kajal on Breakfast.
0: Right, so let's work it out then. If you haven't already, you've got the WhatsApp number, you've got another dialogue, you can recognise the voices. Just think about it. Just think about it. Should we just say, should we give a year? All right, it's around the 80s. That's all I'm going to say. Let's get back to the music. A nice classic from the hit film Mann. Udit Narayan, Kavita Krishnamurthy.

0: Experienced tour operators for air, coach and cruise holidays. So now, whenever you plan for a holiday, plan with Serene Holidays.
1: Call Deepthi Pandya today.
0: 0116-266-2481. For more information, log on to sereneholidays.co.uk.
2: इस महीने मेरा बॉयलर लेकर आया है प्री बुकिंग सेल का शानदार मौका। अब सभी बॉश बॉयलर्स पर सीधे £350 की बचत। 25 किलोवाट बॉयलर सिर्फ £1,890 से पूरी तरह फिटेड। और हाँ, मिलेगी आपको 7 साल की बॉश गारंटी। तो इंतजार मत कीजिए, अभी कॉल करें 0208150-2025 और विजिट meraboiler.com। टीज एंड सीज अप्लाई।
3: लंदन, गुड न्यूज, आपका फेवरेट आईटेक अब TRS कैश एंड कैरी साउथ हॉल में। ह्यूज variety of products including fresh vegetables and fruits with better prices, perfect for retailers, traders, takeaways and caterers. iTech is open 24/7 with free parking. For iTech at unit 123 South Bridgeway, South Hall, UB24AX. Once you visit, you come again and again.
4: Looking for your next cruise getaway?
5: Explore the Mediterranean, Northern Europe, the Caribbean or even around the world. With Travelling Style, every trip is tailored to you.
4: From relaxation to adventure. Call 0208-954-0077
5: or email info@travellingstyle.co.uk.
4: 24/7
5: Travelling Style,
4: where your dream holiday begins.
6: चाय ब्रेक हो या बिजी वर्क डे, सबको चाहिए एक परफेक्ट कप ऑफ चाय।
7: और अब रॉयल चाय लाए हैं स्मार्ट सॉल्यूशन फॉर योर बिजनेस।
6: गेट अ रॉयल चाय वेंडिंग मशीन फ्री, परफेक्ट फॉर कैफेज, रेस्टोरेंट्स, ऑफिसेज, शॉप्स, पेट्रोल स्टेशंस और कम्युनिटी स्पेसेस।
7: रिच ऑथेंटिक टेस्ट एवरी सिंगल टाइम।
6: रॉयल चाय, ब्रूड फॉर बिजनेस।
7: ईमेल नाउ info@royalchaivending.com। लिमिटेड ऑफर, टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई।
8: Up next, Ravi Sharma with the Ravi Sharma Show on Leica Gold.
9: Star Trek of the Hour, sponsored by Star Tours. From Europe to faraway places, the same delicious Indian food. Wherever you go, that's the Star Tours experience. Visit startours.co.uk.

0: लता जी की आवाज में ये मीठा सा गाना जिसे म्यूजिक से सजाया था आरजी बर्मन ने। फिल्म का नाम था द ट्रेन, जिसे को प्रोड्यूस किया था राजेंद्र कुमार ने, और इस फिल्म में थी नंदा, और नंदा ने ही राजेंद्र कुमार को सजेस्ट किया था कि इस फिल्म में मेन लीड के लिए राजेश खन्ना को साइन किया जाए। और देखिए, राजेश खन्ना और नंदा की जोड़ी ने कमाल कर दिया। फिल्म बहुत बड़ी हिट थी और जिसके गाने आज भी जब हम सुनते हैं ना, तो दिल से एक ही आवाज़ आती है, वाह क्या गाना है। कमाल का गीत आपने सुना, और उससे पहले हमने आपको सुनवाया शराबी फिल्म का गीत इंतहा हो गई इंतजार की, आई ना कुछ खबर मेरे यार की, वन ऑफ माय फेवरेट। और इस गाने के लिए, इस फिल्म के गीतों के लिए बप्पी दा ने भी बेस्ट म्यूजिक डायरेक्टर का अवार्ड जीता था शराबी फिल्म में। और इस फिल्म का एक गाना है, आपने सुना होगा, बहुत ही खूबसूरत गीत है, मंजिलें अपनी जगह है रास्ते अपनी जगह, जिस गाने के लिए किशोर दा को बेस्ट मेल प्लेबैक सिंगर का अवार्ड मिला था। तो लीजिए दो आपके पसंदीदा गीतों के साथ आज के शो की शुरुआत हो गई है। ये है लाइक अ गोल्ड इन ग्रेटर लंदन एंड लाइक अ रेडियो इन मिडलैंड्स, और रितु शर्मा स्टूडियो में हाजिर है आपका साथ देने के लिए अब से लेकर दोपहर के पूरे एक बजे तक, सिटिंग इन फॉर रवि शर्मा जी। और जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि रवि शर्मा जी कहीं व्यस्त हो गए हैं, इस वजह से वो शो में नहीं आ पा रहे हैं, और इसी वजह से उनकी जगह इस शो में मैं यहाँ पर हूँ। उम्मीद है आपको मेरा साथ पसंद आ रहा है, और अगर आ रहा है तो देर किस बात की है, मतलब थी एक बजे तक बस यूं ही साथ देते रहिए।
1: SBI UK Money Talk. Send money to India with competitive rates with Yono SBI UK online and via the SBI UK branch.
0: तो आपको हम याद दिला दें कि अगर भारत पैसा भिजवाना चाहते हैं वाया SBI ब्रांच ऑनलाइन और बाय यूजिंग द योनो SBI UK मोबाइल ऐप, आज £1 आपको देगा 128 भारतीय रुपए। लेकिन इसके अलावा अगर आप बैंक के थ्रू या ऐप के थ्रू या ब्रांच में जाकर पैसा ट्रांसफ़र करते हैं, तो एंड ऑफ जून तक आप अगर £1,000 ट्रांसफ़र करते हैं तो आपको मिलेगा £75 का वाउचर एवरीडे, और आप 1 ग्राम गोल्ड कॉइन भी जीत सकते हैं एवरी वीक व्हेन सेंडिंग ओवर £2,000। टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई।
1: State Bank of India UK offers savings products, business banking, buy-to-let mortgages and safe deposit lockers. Visit sbiuk.statebank to locate your nearest branch. T's and C's apply. Get all the latest travel updates for London at Breakfast and Drive.
2: Ye hai Leica Gold.

0: हम किसी से कम नहीं। मोहम्मद रफी और आशा भोसले की आवाजों में था ये गाना 1977 की फिल्म और आदि बर्मन का म्यूजिक। और आप सुन रहे हैं लाइक अ गोल्ड इन ग्रेटर लंदन एंड लाइक अ रेडियो इन मिडलैंड्स, और जहां पर ऋतु शर्मा आपका साथ दे रही है। और मैंने आप सभी से पूछा था कि उम्मीद है आपको मेरा साथ अच्छा लग रहा है, तो आपके ढेरों मैसेजेस मुझे मिले हैं जिन्हें पढ़कर मुझे भी अच्छा लग रहा है कि आपको मेरा साथ अच्छा लग रहा है। क्या बात है, थैंक यू ज्योति जी, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद आपके मैसेज के लिए। थैंक यू। कौन है ये जिन्होंने अपना नाम नहीं लिखा है? तो एक मैसेज है ना, जब भी लिखते हैं नाम जरूर लिखा कीजिए। यस, ये हमारी प्रज्ञा है, हमारे पास दो प्रज्ञा है, ये हमारी नई वाली प्रज्ञा है। संध्या भाव से स्वागत है आपका। महेंद्र बाजारिया जी, थैंक यू। निर्मला जी, मिस शेख, किरण जी, ज्योति पटेल, जासू जी, एजाज जी, थैंक यू। मनोज जी, आपका मैसेज भी मिला है और आप शो को पसंद कर रहे हैं, थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर द कॉम्प्लीमेंट। भरत गंगोराम जी, हरीश खत्री जी, अनिल सोनी जी, वियाना से तोची जी, हेतु सोलंकी, अर्जुन जी एंड हमारे विजय गुडोरी जी, आपने आज हमारे साथ एक विचार, आज का विचार शेयर किया है और बड़ी ही पते की बात है। इसमें लिखा है, खो देने के बाद ही ख्याल आता है कि कितना कीमती था समय, व्यक्ति और संबंध। अगर समय रहते ही हम ये समझ जाएं तो बाद में जो हमें पछतावा होता है ना, उससे हम बच सकते हैं। बहुत अच्छा विचार है, थैंक यू विजय जी हमेशा ही साथ देने के लिए। एंड ऑफ कोर्स हमारे साथ जितने भी साथी घर में, बाहर, काम पे, गाड़ी में, गार्डन में साथ दे रहे हैं या फिर किचन में, सभी का स्वागत है इस शो में।
1: Feel good track brought to you by Dairy Valley.
2: Happy Halwai brings your taste buds oodles of happiness with authentic gulab jamun, rasmalai, motichur laddu and much more. Visit happyhalwai.com.
3: Manoranjan with Ravi Sharma.
0: Like a gold. तो लीजिए रवि शर्मा जी के मनोरंजन प्रोग्राम में एक बार फिर से आपका स्वागत है। मैं हूँ ऋतु शर्मा और अब समय हो गया है हिंदी में समाचार सुनने का। तो आज के प्रमुख समाचारों में सबसे पहले समाचार भारत से। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा है कि राजधानी में 21 जून को नीट की जो यूजी की परीक्षा है देने वाले सभी कैंडिडेट्स को डीटीसी बस में मुफ्त यात्रा की सुविधा दी जाएगी। उन्होंने बताया कि जितने भी स्टूडेंट्स अपने वैध एडमिशन कार्ड दिखाएंगे उन्हें सभी डीटीसी बसों में निशुल्क यात्रा की सुविधा दी जाएगी। उन्होंने ये भी कहा कि छात्रों के भविष्य के लिए महत्वपूर्ण इस दिन किसी भी छात्र को या किसी भी पार्टिसिपेंट को किसी भी तरह की असुविधा का सामना ना करना पड़े, यही हमारी प्राथमिकता है। भारत में पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ने के बाद आरबीआई ने अर्थव्यवस्था को लेकर कहा है कि मौजूदा दिक्कतों के बावजूद भारतीय अर्थव्यवस्था मजबूत बनी रहेगी। उन्होंने बताया कि सप्लाई चेन की दिक्कतों और वैश्विक बाजारों से आने वाली चुनौतियों के बावजूद चालू वित्त वर्ष में भारतीय अर्थव्यवस्था की विकास यात्रा मजबूत बनी रहेगी। और रिपोर्ट्स के मुताबिक आपको बताएं कि कॉरपोरेट और बैंकिंग क्षेत्र की मजबूत बैलेंस शीट और सरकार की ओर से पूंजीगत व्यय यानी कि कैपेक्स पर लगातार दिया जा रहा जोर भारत की मजबूत विकास दर के लिए एक पॉजिटिव संकेत है। सुप्रीम कोर्ट ने मुकदमों के निपटारे में देरी पर चिंता जताते हुए देश के सभी हाई कोर्ट को निर्देश दिए हैं कि किसी मामले में आदेश सुरक्षित रखने की तारीख से 3 महीने के भीतर फैसला सुना दिया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि फैसलों में देरी से अदालत में न्याय के लिए आने वाले लोगों को बहुत ही क्षति होती है और इससे न्याय मिलने की प्रक्रिया भी प्रभावित होती है। उधर कर्नाटक के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने के बाद कांग्रेस नेता सिद्धारमैया ने शुक्रवार सुबह अपने बेटे यतीन्द्र सिद्धारमैया के साथ 10 जनपद स्थित आवास पर राहुल गांधी से मुलाकात की। और इस मुलाकात को इसलिए अहम माना जा रहा है क्योंकि सिद्धारमैया राज्यसभा की सीट की पेशकश पहले ही ठुकरा चुके हैं। सिद्धारमैया कांग्रेस नेतृत्व के साथ अपनी आगे की राजनीतिक भूमिका पर चर्चा करेंगे। और उन्होंने ये भी कहा है कि वो कर्नाटक में ही रहना चाहते हैं और पार्टी आलाकमान की ओर से सुझाई गई किसी केंद्रीय जिम्मेदारी में उनकी खास दिलचस्पी नहीं है। यूपी से एक दुखद खबर आ रही है। उत्तर प्रदेश के हमीरपुर जिले में गुरुवार देर रात एक निर्माणाधीन पुल गिरने से 6 मजदूरों की मौत हो गई है, जबकि मलबे में दबे 3 मजदूरों को रेस्क्यू कर अस्पताल भेज दिया गया है। स्थानीय प्रशासन के मुताबिक ये हादसा गुरुवार देर रात को हुआ जब पुल का निर्माण कार्य चल रहा था। अचानक निर्माणाधीन ढांचा गिर गया और वहां काम कर रहे मजदूर मलबे में दब गए। और इसके अलावा खबर सुनवाते हैं आपको गुजरात से आ रही है। जो गुजरात

0: है कि अन्य शेयरों को भी बेबेसिया इन्फेक्शन हो सकता है। इससे पहले भी 2020 में इस महामारी के कारण 20 से अधिक एशियाई शेयरों की मौत हो गई थी। अब खबरें सुनाते हैं आपको विदेश से। अमेरिकी वित्त मंत्री स्कॉट बेसेंट ने कहा है कि ईरान को बातचीत की मेज पर लाने में दो चीजों ने अहम भूमिका निभाई है, पहली सैन्य कार्रवाई और दूसरा आर्थिक दबाव। उन्होंने कहा है कि ईरान पर लगे प्रतिबंधों में डील ढील देने या उसकी फ्रीज की गई संपत्तियों को जारी करने की प्रक्रिया बहुत धीमी गति से आगे बढ़ेगी। बेसेंट ने गुरुवार को व्हाइट हाउस में पत्रकारों से कहा कि अमेरिका और उसके सहयोगियों की ओर से उठाए गए सैन्य कदमों के साथ साथ कड़े आर्थिक प्रतिबंधों ने ईरान पर इतना दबाव बनाया कि वो बातचीत के लिए तैयार हुआ। और ये बयान ऐसे समय में आया है जब अमेरिका और ईरान के बीच संभावित समझौते को लेकर बातचीत जारी है। इसराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने गुरुवार को कहा था कि उन्होंने सेना को गाजा के और हिस्सों पर कब्जा करने का निर्देश दिया है। और नेतन्याहू ने कहा है कि शुरुआत में लक्ष्य फिलिस्तीन क्षेत्र के 70 फीसदी हिस्से पर नियंत्रण हासिल करना है। ये कदम अक्टूबर 2025 में इसराइल और हमास के बीच हुए युद्ध विराम समझौते की शर्तों के उलट माना जा रहा है। गाजा की आबादी पहले ही समुद्र तट के किनारे एक बेहद छोटे इलाके में सिमट कर रह गई है। और खेल से जुड़ी कुछ खबरें आपको सुनवा दें। सुप्रीम कोर्ट ने विनेश फोगाट को एशियन गेम्स के ट्रायल में शामिल होने की अनुमति दे दी है। रेसलर विनेश फोगाट को एशियन गेम्स 2026 के लिए होने वाले ट्रायल में हिस्सा लेने की अनुमति दे दी गई है। ये ट्रायल 30 और 31 मई को होने हैं। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस पीएस नरसिम्हा और जस्टिस आलोक अराधे की बेंच ने शुक्रवार को ये आदेश दिया। अदालत भारतीय कुश्ती महासंघ यानी कि WFI की याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें दिल्ली हाई कोर्ट के उस आदेश को चुनौती दी गई थी जिसमें विनेश फोगाट को ट्रायल में शामिल होने की अनुमति दी गई थी। यही थे आज के प्रमुख समाचार।
1: Is like a gold. Tasty track of the hour brought to you by Coca Noodles.

0: लता जी की आवाज में दो रास्ते फिल्म से लिया था ये गाना, और ये गाना मेरी ओर से था आप सबके नाम पर।
1: टेस्टी ट्रैक ऑफ द आवर स्पॉन्सर्ड बाय कोका नूडल्स, गुडनेस इन एवरी बाइट, ट्राई इट टुडे, अवेलेबल इन योर नियरेस्ट कन्वीनियंस स्टोर।
0: और आगे बढ़ने से पहले आपको याद दिला दें कि भाई डनबे प्रॉपर्टीज दुबई का नया ऑफिस खुल रहा है। लंदन में उनका दूसरा ऑफिस है जो कि नाइट ब्रिज में दिस सैटरडे को ओपनिंग हो रही है। उनका एक और ऑफिस है हैरो में, और जहां पर उनको काफ़ी सक्सेस मिली है इसलिए अब दूसरा ऑफिस उन्हें खोल रहा है, जहां पर हमारी लाइका टीम लाइव ब्रॉडकास्ट करेगी। याद रखिए 11 बजे से लेकर दोपहर के 2 बजे तक दिस सैटरडे। सो आप ज़रूर सुनिए और आप उन्हें फॉलो भी कर सकते हैं लाइका रेडियो। आप अपडेट्स के लिए लाइका रेडियो इंस्टाग्राम और फेसबुक पेजेस को भी फॉलो कर सकते हैं, और वहां पर भी आपको इन्फॉर्मेशंस मिलती रहेगी। तो याद रखिए डनबे प्रॉपर्टीज दुबई का दूसरा ऑफिस खुल रहा है नाइट ब्रिज में दिस सैटरडे, जहां से लाइका रेडियो टीम लाइव ब्रॉडकास्ट करेगी।
2: हॉलिडे ब्रेक्स आर ब्रॉट टू यू बाय साउथ ओल ट्रैवल।
0: और अगर आप हॉलिडे जाने का प्लान कर रहे हैं तो साउथ ओल ट्रैवल को अभी कॉल कीजिए या फिर विजिट कीजिए साउथ ओल ट्रैवल, या उन्हें फोन कीजिए 0208-574-8410 पर। उनके साथ होटल डीज, फ्लाइट्स सब कुछ बुक कराइए। और आप जानते हैं कि 40 सालों से वो अपनी कम्युनिटी की सेवा कर रहे हैं, जिन्होंने अवार्ड भी जीता है, ब्रिटिश ट्रैवल अवार्ड उन्हें मिल चुका है। तो आप ज़रूर अगर हॉलीडे प्लान कर रहे हैं तो साउथ ओल ट्रैवल को याद रखिए।
2: Breaks were brought to you by Southall Travel. Low prices for flights, hotels or holiday packages. Visit southalltravel.co.uk. Get all the latest travel updates for London at breakfast and drive.
3: Ye hai
4: Laika Gold.
5: travelhubworld.com कामयाबी के शानदार 22 बरस सेलिब्रेट कर रहे हैं बाय ओपनिंग देयर थर्ड ब्रांच ऑन 2 ईलिंग रोड वेम्बली। फाइंड द बेस्ट प्राइस ऑन एनी होटल एनीवेयर इन द वर्ल्ड ऑन travelhubworld.com। फ्लाइट्स एंड हॉलीडेज हमसे सस्ता कहीं नहीं मिल सकता। कॉल ट्रैवल हब 24/7 ऑन 0208-782-8833 और विजिट travelhubworld.com।
6: ट्रैवल हब, बेस्ट सर्विस विद अनबीटेबल प्राइस
7: एट ऑल प्रोटेक्टेड।
6: विजिट travelhubworld.com।
8: Selling your car can be super simple if you choose We Buy Any Car. Now in their 20th year, they're on average 11 minutes away, so help is never far. If only they could make finding a good driving song simpler. No. No. Oh, definitely not. We Buy Any Car. Selling made simple. To sell your car today, enter your reg number now at webuyanycar.com.
9: Step into the new grand showroom of Gajul's Couture, Southall.
10: At 159 The Broadway, Southall, UB1 1LR.
9: From stunning bridal wear and glamorous party wear to stylish casual outfits for men and women,
10: plus beautiful jewellery and accessories, find everything under one roof. Gajul's Couture, now open 7 days a week.
9: Gajul's Couture, Southall. Style, elegance and occasion wear, all in one destination.
11: CTV and C5 proudly present Hamare Ram, produced by Felicity Theatre. India aur Dubai mein houseful shows ke baad, ab pehli baar London mein. Dekhiye Ashutosh Rana ko as Ravan aur Rahul R. Bhuchar ko Prabhu Shri Ram ke roop mein. Ramayan ki undiscovered stories live on stage. 9 se 12 July, Eventim Apollo, Hammersmith. Hamare Ram. Book your tickets now. Visit www.eventimapollo.co.uk. Exclusive radio partner, Laika Radio.
12: इस महीने मेरा बॉयलर लेकर आया है प्री बुकिंग सेल का शानदार मौका। अब सभी बॉश बॉयलर्स पर सीधे £350 की बचत। 25 किलोवाट बॉयलर सिर्फ £1,890 से पूरी तरह फिटेड, और हाँ, मिलेगी आपको 7 साल की बॉश गारंटी। तो इंतजार मत कीजिए, अभी कॉल करें 020-8150-2025 और विजिट meraboiler.com। टीज एंड सीज अप्लाई।
13: वीजा प्रॉब्लम? इंतजार मत करें, हर डिले आपको महंगा पड़ सकता है। कैंटन सॉलिसिटर्स लंदन, असाइलम केसेस, अपील्स, स्किल्ड वर्कर वीजा, स्पॉन्सरशिप लाइसेंस और रिफ्यूजल पर फास्ट काम करते हैं। अभी कॉल करें 0208-907-2444। That's 0208-907-2444।
3: આ સપ્ટેમ્બર પેરિસમાં ઇતિહાસ લખાઈ રહ્યો છે.
7: બીએપીએસ મંદિરનું ઓપનિંગ અને સ્ટાર ટૂર્સ તમને લઈ જઈ રહ્યું છે આ પવિત્ર યાત્રા પર.
3: યુરોપના 3-9 દિવસના ટૂર્સ,
7: ફ્રાન્સ, સ્વિટ્ઝરલેન્ડ, ઇટલી અને જર્મની સાથે
3: દર્શન પણ અને યુરોપ પણ.
7: સીટ્સ જલ્દી ભરાઈ રહી છે, આજે જ બુક કરો સ્ટાર ટૂર સાથે.
3: કોલ 02089002323. ધ સ્ટાર ટૂર્સ,
7: ટ્રાવેલ વન્સ એન્ડ યુ વિલ ટ્રાવેલ અગેન એન્ડ અગેન.
14: હલકે ફુલકે મોમેન્ટ્સ કો ઓર ભી ખાસ બનાએ જેમિન સ્નેક્સ કે હલકે ફુલકે પફ બાઇટ્સ કે સાથ.
15: રાઈસ કોર્ન સે બને લાઇટ ઓર ક્વોલિટી મે બેસ્ટ જેમિન પફ બાઇટ્સ, જો હૈ બાર્બીક્યુ, લેમન ચિલી, મસ્ત મસાલા ઓર મેક્સિકન સાલ્સા જેસે ફ્લેવર્સ મે અવેલેબલ.
14: જેમિન પફ બાઇટ્સ અવેલેબલ એટ યોર નિયરેસ્ટ એથનિક ગ્રોસરી સ્ટોર્સ.
16: Discover Turkey with a beach and touring escape. Fly from the UK, enjoy 7 nights all-inclusive beach stay, then experience a 3-day escorted tour in Cappadocia. Prices lead in from just £1,199 per person. For Turkey holidays with a difference, visit Skylord Cruise and Holidays.com or call 019-238-83100. Atoll protected.
17: Location, location, location.
18: In real estate, location is everything, and this one is a winner.
17: Introducing Greens by Daniel, a premium collection of townhouses and villas
18: located in Dubai in a prime location for high appreciation.
17: Step inside and walk into fully furnished townhouses and villas with premium Italian furnishings.
18: Step outside and enjoy 50 plus amenities inside the master community.
17: And the best part, townhouses and villas Greens start from just £711,000.
18: To book, call our London office on 020-3963-5757. Greens by Danube. Prime location,
17: high appreciation
18: in Dubai.
2: Like a Radio Network. Proud hospitality partner, Ragasan. Like a Gold. Officially London's number one Asian retro music station. Available in Greater London on 10:35 AM, DAB Digital Radio, Alexa and likeagold.com.
19: हाय, मैं हूँ अश्विनी. हर शाम 7-10 बजे तक सुनिए मुझे लाइक अ गोल्ड रेडियो लंदन एंड ग्रेटर मैनचेस्टर इन द इवनिंग शो विद अश्विनी. फीचर्स बड़े ही इंटरेस्टिंग, अमेजिंग आप सभी के लिए.

0: Mica Radio Network across London, Manchester, and the Midlands. Currency updates are sponsored by LemFi mobile app. Send money to India, Pakistan, and Bangladesh swiftly from your phone.
1: तो आज 1 pound आपको देगा 127 भारतीय रुपए, 372 पाकिस्तानी रुपए, and 164 बांग्लादेशी टकास.
0: Radio. Are you thinking of sending money to India, Pakistan or Bangladesh? Then think LemFi. LemFi's best exchange rate and money transfers. Earn an additional £5 cash back when you use the code LIKA. Download LemFi now. T's and C's apply.
2: Manoranjan with Ravi Sharma.
0: Gold Rate, brought to you by Pooja Sweets and Savories, PoojaSweets.com, or visitors in Tooting, Kingsbury and Cardiff.
1: So Gold Rate is 107.6 pounds per gram.
0: Gold Rate was sponsored by Pooja Sweets, one of the best quality vegetarian food suppliers, PoojaSweets.com, or visitors at Eastham, Hounslow or Crowley.
2: ये है
3: Like a Gold.
0: India cricket score updates brought to you by Remitly. Send money fast to India with Remitly's great rates and low fees. Remitly, proud to be the official partner of England cricket.
1: तो आज IPL का मैच है, वो है गुजरात टाइटंस और राजस्थान रॉयल्स के बीच में, और ये मैच दोपहर के 3 बजे से शुरू होगा और मैच का हाल हम आपको बताएंगे, आप हमें सुनते रहिए.
0: India cricket score updates were brought to you by Remitly, where more of your money makes it home with competitive rates and low fees. Download the Remitly app today. Remitly UK Limited is authorized and regulated by the FCA.
3: Like our gold.
4: Search is changing.
5: Customers aren't just using Google anymore.
4: They're asking AI.
5: And AI doesn't show 10 websites. It recommends one answer.
4: One business, one recommendation.
5: So, when someone asks AI, who's the best company for this?
4: Will your business be the answer?
5: Or the one that got left behind?
4: The future of search has already started.
5: Have you? Visit HartyHanks.com and make sure AI recommends you.
4: Harty Hanks, the digital agency that doesn't play safe.
6: लंदन में एक महान धार्मिक अवसर यूनिटी इन डिवाइनिटी प्रेजेंट्स महासोम यज्ञ 14 से 21 जून वुडलैंड स्टैन मोर के टेम्पल ग्राउंड्स पर. सभी के लिए एंट्री फ्री है, तो आप सभी अवश्य पधारिए. रोज सुबह 10 से 3 यज्ञ और शाम 4 से 7 मनोरथ फॉलोड बाय महाप्रसाद. आप पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, वॉलंटियर बनना चाहते हैं या यजमान सेवा लेना चाहते हैं, तो आज ही रजिस्टर करें. वेन्यू टेम्पल ग्राउंड्स वुडलैंड स्टैन मोर HA74LF. फॉर मोर डिटेल्स विजिट somyagya.com. कॉल 07932623852.
7: Location.
8: In real estate, location is everything, and this one is a winner.
7: Introducing Greens by Daniel, a premium collection of townhouses and villas
8: located in Dubai in a prime location for high appreciation.
7: Step inside and walk into fully furnished townhouses and villas with premium Italian furnishings.
8: Step outside and enjoy 50 plus amenities inside the master community.
7: And the best part, townhouses and villas Greens start from just £711,000.
8: To book, call our London office on 020-3963-5757. Greens by Daniel. Prime location,
7: high appreciation
8: in Dubai.
9: बोले तूने क्या कर रहा है रे?
10: अरे गुरु, आपके शो के टिकट ढूंढ रहा हूँ.
9: ये तो बताओ, कोई पता चला?
10: गुरु, इस 19 जून को द प्रिंस रीजेंट होटल में किशोर कुमार यानी आपके संगीत का शो है. सुरेश कुमार और इंद्रा ट्रेवल की पेशकश क्रेजी फॉर किशोर ऑन 19 जून.
9: तो शुभकामनाएं देर नहीं करनी चाहिए, सुबह से शीघ्र.
10: क्रेजी फॉर किशोर एट द प्रिंस रीजेंट होटल ऑन 19 जून. टू बुक कॉल 0208-514-5400. बुक ऑनलाइन एट Eventbrite.
11: एक्सक्लूसिव रेडियो पार्टनर लाइका गोल्ड.
12: Transfer money home and turn every transfer into a chance to win while making your money go even further with SBI UK.
13: Transfer £1,000 or more in a day to enter our daily draw for a £75 voucher.
12: Transfer £2,000 or more in a week to enter our weekly draw for a 1 gram gold coin.
13: Transfer now using the Yono SBI UK app, online banking, or simply visit your nearest branch.
12: And that's not all. Enjoy zero transfer fees and competitive exchange rates.
13: More value, more rewards, more reasons to choose SBI UK.
12: Offer valid from the 4th of May to the 30th 30th of June 2026. Entries open to UK residents 18 plus. No entry fee and purchase required. Terms and conditions apply. Visit sbiuk.statebank for details. SBI UK Limited is authorised by the PRA and regulated by the FCMPRA.
14: Herald, new world of eco-friendly disposables for restaurants, cafes, caterers, food takeaways and food delivery services. Order your free 2025 catalogue today. Call on 0208 507 7900 or download the catalogue from heraldpackaging.com. Herald is a manufacturer of high-quality, eco-friendly and cost-effective disposables for restaurants, cafes, caterers, food takeaway and delivery businesses. Herald disposables available at food services, cash and carries and with disposable supplies to trade. Visit heraldpackaging.com.
15: राम कृष्ण हरी यूके तयार आहात ना ऐतिहासिक क्षणाचे साक्षीदार व्हायला येत्या 6 जून ला होते वाद्य महोत्सव 2026 रॉयल विंडसर रेस कोर्स SL4 5JJ 100 ढोल 80 ताशे मराठी खाद्य संस्कृतीची चव घ्यायला आणि मराठी उद्योजकांना भेटायला नक्की या. महाराष्ट्राची परंपरा संस्कृती आणि आनंदाचा जल्लोष आणि विठ्ठल नामाचा गजर हा सोहळा तुम्हाला लाइव्ह बघायला नक्कीच आवडेल. थेट भारतापासून यूके पर्यंत सर्वांना जोडणारा एकच नाद वाद्य महोत्सव. किट्स आता उपलब्ध आहे svrtuk.org. जय हरी विठ्ठल.
16: वेडिंग्स, सेलिब्रेशंस, कॉर्पोरेट इवेंट्स, रागसन सब कुछ एफिशिएंटली हैंडल करते हैं. परफेक्ट लोकेशन ढूंढने से लेकर इनक्रेडिबल थीम्स डिजाइन करने तक, वर्ल्ड क्लास कुजीन से हर छोटी बड़ी रिक्वायरमेंट तक मैनेज करते हैं. 30 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस हर इवेंट को खास बनाए. फॉरन का फोन मिलाए 0208839080 और विजिट ragasan.com. लोकेशन, डिजाइन, मैनेजमेंट या केटरिंग, रागासन.
17: Bright Sun Travel is celebrating 40 years of travel and we're giving you the chance to win one of four amazing prizes. You could win a £2,000 holiday voucher, a weekend break for two to Barcelona, a Michelin star dinner for two people, or £400 of Amazon vouchers. Want to enter Bright Sun's 40th anniversary competition? It's easy! Enter before the 30th of June 2026. Just visit brightsun.co.uk/win.
18: आवाजों में ताकत होती है जब वो सही जगह तक जाती है. लाइका रेडियो और लाइका गोल्ड आपकी आवाज बन सकते हैं. ऑन एयर हो, ऑनलाइन या ऑन ग्राउंड, हर प्लेटफॉर्म पर आपका ब्रांड चमकेगा. संपर्क करें 0207-132-1458 या ईमेल sales@laikaradio.com.
19: Wake up to Kajal on breakfast at 6 a.m. and drive back with Sandy Shah at 4 p.m. Laika Gold.

0: across Greater London. This is Leica Gold, 10:35 a.m., DAB and online, a part of the Leica Radio Network.
1: The top stories this hour. The head of NATO says Russia's a danger to all after two drones from Moscow hit an apartment block in Romania. Mark Rutte says he's told the country's president the alliance is ready to defend. The strike happened near the border with Ukraine. A rocket from Jeff Bezos' company Blue Origin turned into a fireball last night after an explosion in Florida. No one was hurt. The price of oil has dropped to a six-week low after U.S. Vice President J.D. Vance said a peace deal with Iran is close. He told reporters he can't guarantee both sides will get there, but he's feeling optimistic. Alia Awadalla is a Middle East analyst and a former Pentagon defense official.
2: I would say, frankly, I'm not optimistic that any final discussions will resolve any of the major issues on the table, such as the Iranian nuclear program. I suspect that negotiations are most likely to succeed when it comes to just reopening the strait, and then the thornier issues will probably just keep getting kicked down the road.
1: Two people have been charged after a woman was shot dead outside a bar in Sheffield on Bank Holiday Monday. Police say Shanice Brooks was an innocent bystander. The number of drivers using their phones for things other than calls is an eight-year high. The RAC says 1 in 10 under-25s admit they've live-streamed while driving in the past year. There were more than 40,000 convictions in 2024 where phone use was a contributory factor. Rod Dennis from the motoring organisation wants tougher action.
3: This is about education, especially among younger drivers. It's also perhaps about changing the penalties. And the other thing here is around the feeling, the sense that you could be caught. That does depend on probably more uniformed officers and more police forces making use of camera technology as well.
1: And Tim Allen says British fans are even more obsessed with Toy Story than audiences in the US. The actor reunited with Tom Hanks in London last night for the premiere of the fifth film in the franchise. From Sky News, that's the latest.
0: This is Leica Radio Network, officially London's number one Asian commercial radio group.
4: Need anything from Tesco? Like half-price jammy Dodgers. Now, just 50p. Down from £1.
5: Club card accepted.
4: Because every little helps. Majority of larger stores, 140 gram pack, ends 3rd of June. Club card or app required.
0: Weather is brought to you by Southall Travel, taking you to the best destinations in the world.
6: Good morning. आइए बात कर लेते हैं आज के मौसम की. और आज मौसम में आसमान में बादल छाए रहेंगे, कहीं कहीं पर बारिश भी हो सकती है. आज मौसम कल से बेटर है. लंदन में आज मैक्सिमम टेम्परेचर 25 डिग्रीज तक रहेगा और मिडलैंड्स में 24 डिग्रीज तक रहेगा.
0: For special rates to India, Pakistan, Dubai, Maldives, Thailand, USA, Canada, Africa, Australia and New Zealand, call Southall Travel 24 hours a day, 7 days a week on 0208 574 8410.
7: Like a gold.
8: Manoranjan with Ravi Sharma.
7: Like a gold. Chintan.
6: गुड मॉर्निंग, आप सुन रहे हैं लाइका गोल्ड इन ग्रेटर लंदन एंड लाइका रेडियो इन मिडलैंड्स. प्रोग्राम का सेकंड आवर शुरू हो गया है. 11:03 हुए हैं और ये समय है चिंतन का. चिंतन यानी आज के विचार का, जिसे आप सुनते हैं रवि शर्मा जी के साथ. लेकिन आज इस शो में उनकी जगह मैं ऋतु शर्मा दे रही हूँ आपका साथ. और चलिए शुरू करते हैं आज के चिंतन की. आज के चिंतन में एक बार फिर से मैं आपको सुनाने वाली हूँ एक छोटी सी कहानी. एक बार की बात है, एक बहुत बड़ा और घना जंगल था. दोपहर का समय था, लेकिन अचानक से मौसम बदल गया. भयंकर तूफान आ गया और बिजली कड़की, और बिजली के कड़कने से जंगल की जो सूखी घास थी उसमें आग लग गई. आग की लपटों ने धीरे धीरे करके सारे जंगल को घेर लिया और पूरा जंगल धुएं से और आग की लपटों से घिर गया। सभी जानवर अपनी जान बचाकर भागने लगे। हाथी, शेर, चीता सभी अपनी जान बचाकर भाग रहे थे। सभी डरे हुए थे, बेबस महसूस कर रहे थे और उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि आखिर करे तो करे क्या। सभी ये सोच रहे थे कि अचानक से सब कुछ ठीक था, या कहां से लग गई। उसी जंगल में एक पेड़ पर एक नन्ही सी चिड़िया रहती थी और जब चिड़िया ने देखा उसका घर पूरा जंगल जल रहा है तो जानते हैं बाकी जानवरों के तरह चिड़िया भागी नहीं, वो तुरंत नदी के पास गई, अपनी चोंच पानी में डुबोई, एक बूंद पानी चोंच में भरा और लाकर आग पर डाल दिया और बस बार बार यही कर रही थी। उड़कर नदी के पास जाती, चोंच में जितना भी पानी आता भरकर लाती और आग पर गिराती। उस चिड़िया को ये करते हुए हाथी देख रहा था जो अपनी जान बचाकर भाग रहा था, क्योंकि उसकी नजर उस चिड़िया पर पड़ी तो वो रुका और हंसने लगा। उसने कहा, ए नन्ही चिड़िया, क्या तुझे लगता है कि तेरे इस एक बूंद पानी से इतनी भयंकर आग बुझ जाएगी। चिड़िया ने हाथी की बात सुनकर बड़े ही विनम्र भाव से जवाब दिया। चिड़िया बोली, मुझे पता है कि मेरे एक बूंद पानी से ये आग नहीं बुझेगी, लेकिन जब भी इस जंगल की आग का इतिहास लिखा जाएगा तो मेरा नाम आग लगाने वालों में नहीं बल्कि आग बुझाने वालों में होगा। चिड़िया की यह बात सुनकर हाथी को एहसास हुआ, मैं भी गलत कर रहा हूं, मेरा नाम तो हो सकता है आग लगाने वालों में लग जाए लेकिन आग बुझाने वालों में तो किसी हालत में नहीं लिखा जाएगा क्योंकि मैं तो भाग रहा हूं। चिड़िया की बात सुनकर हाथी को अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने भी अपनी सूंड में पानी भरकर आग पर डालना शुरू किया। हाथी और चिड़िया को यह देखते हुए बाकी के जानवर भी मदद के लिए आगे आ गए और वो भी आग को बुझाने का प्रयास करने लगे और सबके छोटे छोटे प्रयासों से अंत में आग काबू में आ गई। ये कहानी हमें सिखाती है कि कभी कभी हम सिर्फ कमेंट करते हैं, ये गलत हो रहा है, वो गलत हो रहा है, ये ठीक नहीं है, ये अच्छा नहीं है, ये ऐसा है, ये वैसा है, और इंतजार करते हैं कि बदलाव हो। तो मैं ये कहूंगी कि इंतजार करने की बजाय शुरुआत कीजिए ना, एक छोटा सा कदम भी मायने रखता है बहुत ज्यादा। हमें हमेशा बड़े बदलाव का इंतजार नहीं करना चाहिए बल्कि खुद शुरुआत करनी चाहिए। जैसे एक दिए से हजारों दिए जल सकते हैं, वैसे ही एक इंसान का नेक काम दूसरों को प्रेरित कर सकता है, दूसरों को प्रेरणा दे सकता है। जब हम स्वार्थ छोड़कर दूसरों की भलाई के लिए जुटते हैं ना, तो नामुमकिन काम भी मुमकिन हो जाते हैं।

0: जोत से जोत जगाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो, यानी कि अपने हिस्से का दिया जलाए रखो ताकि संसार में कभी अंधेरा ना हो सके। आज के चिंतन का यही विचार था और हमारे राजेश जी, आपने भी आज के चिंतन का विचार बहुत सही समझा है और आपने बहुत अच्छी तरह से इसे व्यक्त किया है। आपने लिखा है कि हमारे सरल पॉजिटिव बदलाव और काम कई लोगों के लिए प्रेरणादायक हो सकते हैं, इसलिए कुछ कीजिए, बस यूं ही बैठे बैठे बातें न बनाएं, कोशिश कीजिए, शुरुआत कीजिए, बदलाव का हिस्सा बनिए। किसी ने बहुत सुंदर लिखा है कि अंधेरा घना है तो क्या हुआ, एक दिया तुम भी जलाओ, निराशा की इस भीड़ में उम्मीद की अलख जगाओ, अकेले चले तो क्या चले, कारवां साथ बनाते चलो, रास्ते की हर नफरत को मोहब्बत से मिटाते चलो, हाथ थाम लो गिरते हुए का, खुद को इंसान बनाओ, जोत से जोत जगाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। यही था आज का चिंतन, आज का विचार, जिसे आप में से बहुत सारे साथियों ने पसंद किया है। थैंक यू विजय गुनोवा जी, थैंक यू नलिनी जी, कहती हैं बहुत अच्छा चिंतन था आज का। थैंक यू संध्या भावसर जी, थैंक यू विजय गुडुरी जी, कहते हैं मुझे आज का चिंतन और संत ज्ञानेश्वर का गाना बहुत अच्छा लगा। थैंक यू राजेश जी, आपने भी अच्छा मैसेज भेजा है, बहुत सही समझा है आज के चिंतन को। थैंक यू रागिनी जी, थैंक यू राजीव पटेल जी, थैंक यू महेंद्र बाजारिया जी, अर्जुन जी, सहर जी, हरविंदर जी, जासू जी, निर्मला जी, जैस्मीन, हंसा जी, आप सभी का ये कहना है आप चिंतन के प्रशंसक हैं, हमेशा सुनते हैं, उम्मीद है आज का चिंतन आपको पसंद आया है, इसके लिए मुझे बहुत बहुत खुशी है। थैंक यू। चिंतन हर रोज मंडे टू फ्राइडे 11 बजे की न्यूज़ के बाद आप सुनते हैं रवि शर्मा जी के साथ उनके मनोरंजन प्रोग्राम में। चिंतन को समेटते हुए बढ़ जाते हैं आगे।
1: SBI UK Money Talk. Send money to India with competitive rates with Yono SBI UK online and via the SBI UK branch.
0: तो आज 1 पाउंड के बदले में आपको मिलेंगे 128 रुपए और आपको ये ट्रांसफर करवाना होगा बाय SBI ब्रांच ऑनलाइन बाय यूजिंग द योनो SBI UK मोबाइल ऐप। और आपको बता दें कि एंड ऑफ जून तक आप 75 पाउंड्स का वाउचर एवरीडे जीत सकते हैं, विन कर सकते हैं जब आप 1000 पाउंड्स भिजवाते हैं, और 1 ग्राम गोल्ड कॉइन्स एवरी वीक आपको मिल सकता है जब आप 2000 पाउंड से ज्यादा ट्रांसफर करते हैं। टर्म्स एंड कंडीशंस डू अप्लाई।
1: State Bank of India UK offers savings products, business banking, buy-to-let mortgages and safe deposit lockers. Visit sbiuk.statebank to locate your nearest branch. T's and C's apply.
2: Ye hai Leica Gold, 10:35 a.m.

0: सिलसिला फिल्म से लिया था ये गाना और आप सुन रहे हैं आपका मनपसंद रेडियो जो है लाइका गोल्ड इन ग्रेटर लंदन एंड लाइका रेडियो इन मिडलैंड्स और ऋतु शर्मा आपके साथ है सिटिंग इन फॉर रवि शर्मा जी। एक बजे तक मैं आपके साथ ही रहूंगी और अब मैं आपको बताने जा रही हूँ कि डैन्यू प्रॉपर्टीज अपना नया ऑफिस खोल रहे हैं नाइटब्रिज में। लंदन में उनका ऑलरेडी एक ऑफिस है हैरो में और उनका दूसरा ऑफिस खुल रहा है नाइटब्रिज में दिस सैटरडे और इस स्पेशल ओकेजन पर हमारी लाइका रेडियो टीम वहां से लाइव ब्रॉडकास्ट करेगी और ये लाइव ब्रॉडकास्ट होगा 11 बजे से लेके 2 बजे तक। और आप अपडेट्स के लिए लाइका रेडियो इंस्टाग्राम और फेसबुक पेजेस को फॉलो कर सकते हैं डैन्यू प्रॉपर्टीज दुबई का नया ऑफिस नाइट ब्रिज में दिस सैटरडे। याद रखिए लाइव ब्रॉडकास्ट होगा वहां से 11 से 2 बजे के बीच। आप वहां जा सकते हैं, जानकारी पा सकते हैं और हमारे जो टीम मेंबर्स हैं उनसे भी आप मिल सकते हैं।
1: मनोरंजन विद रवि शर्मा।

0: किशोर दा की आवाज में ये जबरदस्त गाना लिया था हमने फिल्म जबरदस्त से, जिसमें म्यूजिक है आजी बर्मन का। और अब जो किशोर कुमार के फैंस हैं उनके लिए है ये खास खबर। तो भाई आप मेरी तरह अगर किशोर कुमार के फैन हैं और उनके गाने पसंद करते हैं, सुनना भी गुनगुनाना भी, तो आपको बता दें कि एक स्पेशल म्यूजिकल नाइट हो रही है जिसमें केतन इंद्रानी संजय परफॉर्म करने वाले हैं विद 515 बैंड, और ये होने जा रहा है फ्राइडे 19 जून को एट द प्रिंस रीजेंट होटल चिगवल में एसेक्स। एक्सक्लूसिव रेडियो पार्टनर्स हैं इस प्रोग्राम के लाइका गोल्ड रेडियो।
1: ये है लाइका गोल्ड। Feel good track brought to you by Dairy Valley.
2: Soft and tender like grandma's warm hug. Dairy Valley paneer is made with natural ingredients and zero preservatives. Visit dairyvalley.net.
3: Laga gori gujariya se

0: नौशाद के म्यूजिक पर मोहम्मद रफी साहब की आवाज में ये गाना गंगा जमुना फिल्म से लिया था। और विजय जी आपने सही कहा कि इस गाने में वैजयंती माला बहुत ही खूबसूरत लगी हैं। और फरीदा जी का कहना है कि ये गाना ऋतु मेरे नाम कर दो। बिल्कुल, मैंने ये गाना आपके नाम किया। महेंद्र बजारिया जी आप भी सुन रहे हैं और ये गाना आपको भी बहुत पसंद है। दिनेश पोपट जी हमारे साथ है और नरेंद्र पांचाल जी आपने क्या लिखा है, लिखते हैं ऋतु आपने चिंतन भी सुनाया और उसके बाद में गाने का अच्छा सिलसिला चालू किया है, आनंद आ रहा है। क्या बात है, और मुझे आपका ये मैसेज पढ़कर भी आनंद आ रहा है। थैंक यू दिनेश पांचाल जी, हम नरेंद्र पांचाल जी हमेशा ही हमारा साथ देने के लिए। हमारे साथ कामिनी पटेल, रक्षा पटेल या किमी पटेल, आपका दोनों ही नाम है, आप हमारा साथ दे रही हैं। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद। और इसके अलावा ढेरों मैसेजेस मिले हैं जिनका जिक्र करूंगी, लेकिन पहले आपको
1: Feel Good Track brought to you by Dairy Valley.
2: Happy Halwai brings your taste buds oodles of happiness with authentic gulab jamun, rasmalai, motichur laddu and much more. Visit happyhalwai.com.
3: Manoranjan with Ravi Sharma.
4: Extra podcast update.
0: तो आपको बता दें कि लाइका एक्स्ट्रा पॉडकास्ट का नया एपिसोड आ चुका है और इसका टाइटल है मेनोपॉज, जिसे होस्ट किया है रूबी रजा ने। और आप लाइका एक्स्ट्रा पॉडकास्ट सुन सकते हैं यूट्यूब, अमेजन, एप्पल और सभी मेजर स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स पर जाकर।
4: लाइका एक्स्ट्रा इज हियर। गेट ऑल द लेटेस्ट ट्रैवल अपडेट्स फॉर लंदन एट ब्रेकफास्ट एंड ड्राइव।
5: ये है
6: लाइका गोल्ड
7: ट्रेवल हब world.com। कामयाबी के शानदार 22 बरस सेलिब्रेट कर रहे हैं बाय ओपनिंग देयर थर्ड ब्रांच ऑन 2 ईलिंग रोड वेम्बली। फाइंड द बेस्ट प्राइस ऑन एनी होटल एनीवेयर इन द वर्ल्ड ऑन ट्रेवल हब world.com। फ्लाइट्स एंड हॉलीडेज हमसे सस्ता कहीं नहीं मिल

0: लीजिए लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के म्यूजिक पर दोस्ताना फिल्म से था ये गाना आशा जी और किशोर कुमार की आवाजों में।
1: Tasty track of the hour sponsor by Coca Noodles. More flavors, more convenience, more yum. Grab your Coca Bowl today.
2: Hey there, main hoon Bali Brambat. Catch me on my show Gold Afternoons with tributes, Ansuni Bate, Raag Adharit Gaane on Leica Gold and Leica Radio Midlands from 1 PM to 4 PM.
3: Currency updates are sponsored by LemFi mobile app. Send money to India, Pakistan and Bangladesh swiftly from your phone.
0: तो आज £1 आपको देगा 127 भारतीय रुपए, 372 पाकिस्तानी रुपए एंड 164 बांग्लादेशी टकास।
4: Leica Radio.
3: Are you thinking of sending money to India, Pakistan or Bangladesh? Then think LemFi. LemFi's best exchange rate and money transfers. Earn an additional £5 cash back when you use the code Leica. Download LemFi now. T's and C's apply.
5: Manoranjan with Ravi Sharma.
6: Leica Gold.
3: Gold Rate, brought to you by Pooja Sweets and Savories, PoojaSweets.com, or visit us in Tooting, Kingsbury and Cardiff.
0: So Gold Rate is £107.6 per gram.
3: Gold Rate was sponsored by Pooja Sweets, one of the best quality vegetarian food suppliers, PoojaSweets.com, or visit us at Eastham, Hounslow or Crowley.
6: Like a gold.
3: India cricket score updates brought to you by Remitly. Send money fast to India with Remitly's great rates and low fees. Remitly, proud to be the official partner of England cricket.
0: तो आज गुजरात टाइटंस और राजस्थान रॉयल्स के बीच में आईपीएल का मैच होगा और ये मैच दोपहर के 3 बजे से शुरू होगा। मैच का हाल हम आपको बताएंगे, आप हमारा साथ देते रहिए।
3: इंडिया क्रिकेट स्कोर अपडेट्स वर ब्रॉट टू यू बाय Remitly, where more of your money makes it home with competitive rates and low fees. Download the Remitly app today. Remitly UK Limited is authorized and regulated by the FCA.
7: This is Leica Gold.
8: Selling your car can be super simple if you choose We Buy Any Car instead of a confusing part exchange. Because with We Buy Any Car, you'll have cash in the bank for more bargaining power on your next car. If only they could make getting to that countryside wedding simpler.
9: Make a U-turn. Make a U-turn.
8: Oh, no. We Buy Any Car. Selling made simple. To get a quote in 30 seconds, enter your reg number now at WeBuyAnyCar.com.
10: Now make your money grow with ICICI Bank UK. Earn up to 4.60% on non-withdrawable fixed deposits.
11: Choose 1 to 3 year tenures and tap to open instantly in-app. Quick, simple and secure. Plus explore savings accounts, bonds and more. All at your fingertips. Start saving today with ICICI Bank UK. ICICI Bank UK PLC is authorized by PRA and regulated by the FCA and PRA. TNCs apply.
12: भारत या पाकिस्तान जाने की सोच रहे हैं तो एयर टिकट साउथ हॉल ट्रेवल से खरीदिए।
13: मगर साउथ हॉल ट्रेवल से ही क्यों?
12: क्योंकि उनसे ज्यादा सस्ती टिकटें कहीं नहीं मिलेंगी।
13: गारंटेड
12: बुकिंग करवाएं और उसके बाद 24 घंटों के भीतर कहीं से भी सस्ती ला के दिखाएं तो ये फुल रिफंड या प्राइस डिफरेंस वापस कर देंगे। साउथ हॉल ट्रेवल,
13: फोन 02085748410।
12: 24 घंटे किसी भी वक्त फोन करें 02085748410। एट ऑल प्रोटेक्टेड।
14: Step into the new grand showroom of Gajal's Couture, Southall.
15: At 159 The Broadway, Southall, UB1 1LR.
14: From stunning bridal wear and glamorous party wear to stylish casual outfits for men and women,
15: plus beautiful jewellery and accessories, find everything under one roof. Gajal's Couture, now open 7 days a week.
14: Gajal's Couture, Southall. Style, elegance and occasion wear, all in one destination.
16: The voice that touches every soul. Star Express presents Hariharan's Soul India.
15: Live in London. Experience an unforgettable evening with the legendary Hariharan.
16: Saturday, 4th July at the Royal Festival Hall. For bookings, visit southbankcentre.co.uk.
15: Exclusive radio partner, Leica Radio Network.
17: आपके घर में किसी प्रियजन की मृत्यु हुई है, इस दुख की घड़ी में आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर अंतिम संस्कार की सभी रस्में ओम फ्यूनरल केयर करके देंगे। कैंटन रोड वेस्ट लंदन और इल्फर्ड ईस्ट लंदन में ओम फ्यूनरल केयर्स वेल वर्स्ड प्रीस्ट्स कैरी आउट ऑल द राइट्स एंड रिचुअल्स इन इंग्लिश, हिंदी, गुजराती, मराठी, तमिल एंड अदर लैंग्वेजेस। कॉन्टेक्ट कीजिए कल्पेश पटेल ऑन 0208-922-3444-24-hour line.
18: चाय ब्रेक हो या बिजी वर्क डे, सबको चाहिए एक परफेक्ट कप ऑफ चाय।
19: और अब रॉयल चाय लाए हैं स्मार्ट सॉल्यूशन फॉर योर बिजनेस।
18: गेट अ रॉयल चाय वेंडिंग मशीन फ्री, परफेक्ट फॉर कैफेज, रेस्टोरेंट्स, ऑफिसेज, शॉप्स, पेट्रोल स्टेशंस और कम्युनिटी स्पेसेस।
19: रिच ऑथेंटिक टेस्ट एवरी सिंगल टाइम।
18: रॉयल चाय, ब्रूड फॉर बिजनेस।
19: ईमेल नाउ info@royalchaivending.com. लिमिटेड ऑफर, टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई।
20: हर क्रंची बाइट में एक खास एथनिक स्वाद, हर फ्रायम शेप में है वो बचपन की याद।
21: स्नैक टाइम हंगर को बनाए और भी टेस्टी विद जैमिन्स फ्रायम्स इन डिफरेंट शेप्स एंड यम्मीस्ट फ्लेवर्स लाइक लेमन चिली मिंट, मंचूरियन, मसाला, पेरी पेरी और शेजवान विद बेस्ट क्वालिटी एंड सेम एथनिक टेस्ट।
20: जैमिन फ्रायम्स अवेलेबल एट योर नियरेस्ट एथनिक ग्रोसरी स्टोर्स।
22: एक ऐतिहासिक अने दिव्य अवसर पेरिस मा भव्य BAPS स्वामीनारायण मंदिर ना ग्रैंड ओपनिंग मा दर्शन नो लाभ। आ पवित्र यात्रा मा जोड़ाओ आपना परिवार साथे, जहां मळशे शांति, भक्ति अने आनंद, अने साथे आईफिल टावर, सेन रिवर क्रूज अने पेरिस सिटी टूर नो आनंद माणो। डिपार्चर 5 सितंबर ना मंत्रा हॉलिडेज। कॉल करो 0203-773-6333। मंत्रा हॉलिडेज, व्हाट्स योर ट्रैवल मंत्रा?
23: Spring into the sunshine on Leica Radio Network.

0: कितनी मिठास है इस गाने में। आरडी बर्मन ने क्या धुन बनाई है और उस पर आवाज मोहम्मद रफी साहब और लता जी की। अनुराग फिल्म से था ये गाना, जो 1972 की फिल्म थी। और उससे पहले जुम्मा जुम्मा दे दे भाई, आज फ्राइडे का दिन है तो आपको जो करना है कीजिए, आई डोंट केयर। लेकिन ये गाना मैंने आपको सुनवा दिया और भावीन इस गाने को सुनकर बहुत खुश हो गए होंगे, क्योंकि फ्राइडे का दिन है और वो चाहते थे कि ये गाना बजाया जाए। तो चलिए, आज हमने आपकी बात मान ली और ये गाना आपको ही डेडिकेट कर दिया। और जानते हैं इस गाने में अमिताभ बच्चन की एज 49 ईयर्स की थी, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो। लेकिन इस गाने में उन्होंने क्या एनर्जी डाली है। सुनने में तो अच्छा लगता ही है ये गाना, देखने में भी अच्छा लगता है, अच्छी तरह फिल्म आया है। लेकिन इस फिल्म की हीरोइन किमी काटकर कहाँ गायब है पता नहीं, कभी उनके बारे में होगी बात, यादें मैं उन्हें लेकर आऊँगी। लेकिन उनकी फिल्म्स और उनके गाने इतने ज़्यादा नहीं हैं कि मैं पूरा एक घंटा उनके गीत बजा सकूं, लेकिन ज़रूर उनके बारे में इन्फॉर्मेशन आपके लिए लेकर आऊँगी। लेकिन फ़िलहाल तो जो इन्फॉर्मेशन है वो सुन लीजिए वो मैं बताऊँगी। लेकिन सबसे पहले प्रोग्राम के सेकेंड आवर में, फाइनल आवर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और ये है लाइक अ गोल्ड इन ग्रेटर लंदन एंड लाइक अ रेडियो इन मिडलैंड्स। और मैं ऋतु शर्मा हूँ आपके साथ, सिटिंग इन फॉर रवि शर्मा जी। आपके ढेरों मैसेजेस मुझे मिले हैं और एसएस भोगल जी, आपने बहुत ही खूबसूरत बात हमारे साथ शेयर की है, जिसमें लिखा है कि प्रार्थना करो, प्रतीक्षा करो और भरोसा रखो। ये मत पूछो कब होगा, लेकिन जब होगा बेहतरीन होगा। और इसी विश्वास के साथ अपनी जिंदगी बस जीते जाओ। थैंक यू, स्वागत है एसएस भोगल जी आपका। और इसके अलावा उल्लास टोरंटो में हमारा साथ दे रहे हैं और जितने भी साथी सुन रहे हैं। और हाँ, एक मैसेज और पढ़ना चाहती हूँ। ये मैसेज आपने मुझे फर्स्ट वाले आवर में भेजा था, लेकिन मैं देखो कितनी देर में आपका मैसेज पढ़ रही हूँ। और आपका नाम है दीप्ति चंदारिया। थैंक यू दीप्ति चंदारिया आपके प्यारे से मैसेज के लिए। और आपने लिखा है लव यू सो मच, तो मैं भी ये कहूँगी कि आई लव यू, थैंक यू साथ देने के लिए। और चलिए, अगला गीत तो मैं आपको सुनवाऊंगी अनुराधा पौडवाल की आवाज में, क्योंकि वो है हमारी इस बार की आर्टिस्ट ऑफ द वीक। लेकिन उससे पहले
1: SBI UK Money Talk. Send money to India with competitive rates with Yono SBI UK online and via the SBI UK branch.
0: आपको याद दिला दें कि आज £1 आपको देगा 128 भारतीय रुपए, और ये ट्रांसफर हमेशा की तरह आपको SBI ब्रांच ऑनलाइन और उनके योनो ऐप के थ्रू करवाना पड़ेगा। लेकिन बिफोर एंड ऑफ जून आप विन कर सकते हैं £75 का वाउचर एवरी डे व्हेन यू सेंड ओवर £1,000, आल्सो 1 ग्राम गोल्ड कॉइन एवरी वीक व्हेन सेंडिंग ओवर £2,000। टर्म्स एंड कंडीशंस डू अप्लाई।
1: State Bank of India UK offers savings products, business banking, buy-to-let mortgages and safe deposit lockers. Visit sbiuk.statebank to locate your nearest branch. T's and C's apply.
2: Ye hai Leica Gold.
3: Wherever you want to go for the holiday of a lifetime or a trip to visit loved ones, call Southall Travel 24 hours a day for total peace of mind. A fast, reliable service and a money-back guarantee. Call them today on 0208 574 8410. That's 0208 574 8410, and very soon you could be on your way. Southall Travel, the specialists for any airline, anywhere, anytime. 0208 574 8410.
4: No more worries for me.
5: Southall Travel, at all protected.
6: Location, location, location.
7: In real estate, location is everything, and this one is a winner.
6: Introducing Greens by Daniel, a premium collection of townhouses and villas
7: located in Dubai in a prime location for high appreciation.
6: Step inside and walk into fully furnished townhouses and villas with premium Italian furnishings.
7: Step outside and enjoy 50 plus amenities inside the master community.
6: And the best part, townhouses and villas Greens start from just £711,000.
7: To book, call our London office on 020-3963-5757. Greens by Danube. Prime location.
6: High appreciation.
7: In Dubai.
8: Herald. New world of eco-friendly disposables for restaurants, cafes, caterers, food takeaways and food delivery services. Order your free 2025 catalogue today. Call on 0208-507-7900 or download the catalogue from heraldpackaging.com. Herald is a manufacturer of high-quality, eco-friendly and cost-effective disposables. Disposables for restaurants, cafes, caterers, food takeaway and delivery businesses. Herald disposables available at food services, cash and carries and with disposable supplies to trade. Visit heraldpackaging.com.
9: You know that clean, fresh feeling after brushing? Siddhayu toothpaste takes it to another level. Clove, neem, herbal actives, proper Ayurvedic care, but modern and premium. Fresh breath, healthy gums, no harsh chemicals. From the house of Baidyanath, with over 100 years of Ayurvedic legacy. Available at all quality food stores and other leading retail stores across the UK. Siddhayu, Ayurved that fits your life.
10: Transfer money home and turn every transfer into a chance to win while making your money go even further with SBI UK.
11: Transfer £1,000 or more in a day to enter our daily draw for a £75 voucher.
10: Transfer £2,000 or more in a week to enter our weekly draw for a 1 gram gold coin.
11: Transfer now using the Yono SBI UK app, online banking, or simply visit your nearest branch.
10: And that's not all. Enjoy zero transfer fees and competitive exchange rates.
11: More value, more rewards, more reasons to choose SBI UK.
10: Offer valid from the 4th of May to the 30th of June 2026. Entries open to UK residents 18 plus. No entry fee and purchase required. Terms and conditions apply. Visit sbiuk.statebank for details. SBI UK Limited is authorized by the PRA and regulated by the FCMPRA.
12: આ સપ્ટેમ્બર પેરિસમાં ઇતિહાસ લખાઈ રહ્યો છે.
13: BAPS મંદિરનો ઓપનિંગ અને સ્ટાર ટૂર્સ તમને લઈ જઈ રહ્યું છે આ પવિત્ર યાત્રા પર.
12: યુરોપના 3-9 દિવસના ટૂર્સ,
13: ફ્રાન્સ, સ્વિટ્ઝરલેન્ડ, ઇટલી અને જર્મની સાથે
12: દર્શન પણ અને યુરોપ પણ.
13: સીટ્સ જલ્દી ભરાઈ રહી છે. આજે જ બુક કરો સ્ટાર ટૂર સાથે.
12: કોલ 02089002323. ધ સ્ટાર ટૂર્સ
13: ટ્રાવેલ વન્સ and you will travel again and again.
14: Travel in style. Offer the best prices in flights and holidays to any destination of your choice. Call now for your early bird discount. 0208 954 0077. That's 0208 954 0077. Travel in style. Fully bonded for your peace of mind. Travel in style. Travel in style. Travel in style.
15: Psst. You. Yeah, you. Listening to the radio. Up to whatever. We just wanted to let you know there's a lotto draw coming up, and
16: it could be you.
15: Yeah, what he said. Lotto, from the National Lottery. Rules and procedures apply. Players must be 18 or over.
17: Like a Gold, officially London's number one Asian retro music station. Available in Greater London on 10:35 AM, DAB Digital Radio, Alexa and likeagold.com.
18: Artist of the Week is brought to you by our new podcast, Like a Extra. Stream it now and be a part of the conversation.

0: राजेश रोशन के म्यूजिक पर अनुराधा पौडवाल और विपिन सचदेव की आवाज में इंसानियत फिल्म का था ये गाना जो 1994 में आई थी। और ये भी अमिताभ बच्चन की फिल्म थी और ये फिल्म भी उन फिल्म्स में थी जब अमिताभ बच्चन का करियर ढलान पर था और उन्होंने उस दौरान 90s में कई सारी फिल्में की हैं जो ज़्यादा चली नहीं हैं, लेकिन फिर भी वो फिल्में हैं अमिताभ बच्चन की। और अमिताभ बच्चन तब भी सुपरस्टार थे और आज भी सुपरस्टार है। और ये आवाज़ थी अनुराधा पौडवाल की और आप जानते हैं अनुराधा पौडवाल ही तो है हमारी इस बार की आर्टिस्ट ऑफ द वीक। और आगे बढ़ने से पहले, अगला गीत सुनाने से पहले आपको हम याद दिला दें एक बार फिर से कि डैन्यू प्रॉपर्टीज अपना नया ऑफिस खोलने जा रहे हैं नाइट ब्रिज में। उनका ऑलरेडी एक ऑफिस है हैरो में जिससे उन्हें काफ़ी अच्छा बिजनेस मिला है और अब हर कोई आगे बढ़ता है। तो ये उनका सेकंड लंदन ऑफिस होगा नाइट ब्रिज में और दिस सैटरडे उसकी ओपनिंग है। और इस मौके पर लाइका रेडियो की टीम वहाँ जाएगी और वहाँ से लाइव ब्रॉडकास्ट होगा 11 बजे से लेकर दोपहर के 2 बजे तक। आप भी जाइए, अगर आप कुछ खरीदना चाहते हैं, कुछ इन्फॉर्मेशन चाहते हैं तो वहाँ पर आप जा सकते हैं, हमारी टीम से मिल सकते हैं। और अपडेट्स के लिए आप लाइका रेडियो को इंस्टाग्राम और फेसबुक पेजेस पर फॉलो कीजिए।
1: Brought to you by Derry Valley. Soft and tender, like grandma's warm hug. Derry Valley paneer is made with natural ingredients and zero preservatives. Visit dairyvalley.net.

0: खूबसूरत गाना, फिल्म का नाम द ग्रेट गैम्बलर, और इस गाने ने तो मुझे वेनिस की याद दिला दी जब वेनिस घूमने गए थे, और आजकल मौसम है घूमने जाने का। अमिताभ बच्चन की आवाज़ में ये गाना बहुत ही खूबसूरत था। और एजाज जी, आपने सही कहा, आप हमारा साथ दे रहे हैं, थैंक यू सो मच। और आगे बढ़ने से पहले एक चीज के बारे में और आपसे बात करना चाहती हूँ।
1: Feel Good Track brought to you by Dairy Valley.
2: Happy Halwai brings your taste buds oodles of happiness with authentic gulab jamun, rasmalai, motichur laddu and much more. Visit happyhalwai.com.
0: तो किशोर दा की आवाज़ में अगला गीत आने वाला है, लेकिन उससे पहले आपको याद दिला दें कि लाइका रेडियो नेटवर्क एक्सक्लूसिव रेडियो पार्टनर है उस शो के, जिसका हम सबको इंतज़ार है और मुझे तो बहुत ही ज़्यादा इंतज़ार है। माइथोलॉजिकल शो होने जा रहा है जिसका नाम है हमारे राम, और जिसमें आशुतोष राणा रावण का कैरेक्टर निभा रहे हैं और राहुल बने हैं राम। ये शो होने जा रहा है बिटवीन 9th एंड 12th जुलाई एट लंडन्स एवेंटिम अपोलो, और मैं बहुत एक्साइटेड हूँ इसे देखने के लिए। जैसा कि मैंने कल भी कहा था, आशुतोष राणा की आवाज़ मुझे बहुत अच्छी लगती है, और जब वो उस आवाज़ में कविता पढ़ते हैं, जब वो उस आवाज़ में डायलॉग्स पर बोलते हैं, बहुत मज़ा आता है, बहुत अच्छा लगता है। तो आई एम श्योर कि जब वो रावण का कैरेक्टर निभाएंगे तो क्या गजब ढाएंगे। बहुत इंतज़ार है मुझे उन्हें उस कैरेक्टर में देखने के लिए, देखने का। मैं तो ज़रूर इस शो को देखने जाने वाली हूँ,

0: आज बड़े दिनों बाद ये गाना मैंने अपने प्रोग्राम में शामिल किया है। मेरे जीवन साथी फिल्म से था ये गाना, जो 1972 में आई थी। और अब 70s से पीछे जाते हैं और मैं आपको लेकर चलती हूँ 50s की ओर। अपने ज़माने का एक बड़ा ही सुपरहिट गीत सुनवाती हूँ उन सभी को जो हैं हमारे 70 प्लस यंगस्टर्स, उनके लिए जाता है ये गाना। लेकिन उससे पहले कैंट से सलमा जी आपने मैसेज भेजा है और आप बता रही हैं कि मैं आपको सुन रही हूँ, तो मैं ये जानना चाहती हूँ कि आपके यहाँ सब ठीक है, क्योंकि मैं न्यूज़ में सुन रही थी कि कैंट में पानी की थोड़ी समस्या आ रही है। आपके यहाँ सब ठीक ठाक तो है?
1: This superhit track is brought to you by Tilda Basmati Rice with a range of grains and flavors from around the world.

0: ट्रैवल। चलिए नया दौर के इस गाने के बाद आपको याद दिला दे एक बार फिर से कि अगर आप हॉलीडे जाने का प्लान कर रहे हैं तो साउथ हॉल ट्रैवल को याद रखिए। हॉलीडेज विद फ्लाइट्स एंड होटल्स, और जहां पर आप जिनके साथ बीचेस घूम सकते हैं, सिटीज को एक्सप्लोर कर सकते हैं, एट ऑल प्रोटेक्टेड है ये, और 40 सालों से आपकी सेवा में है साउथ हॉल ट्रैवल। ब्रिटिश ट्रैवल अवार्ड भी जीत चुके हैं। हॉलीडे बुक करने के लिए कॉल कीजिए साउथ हॉल ट्रैवल को ऑन 0208-574-8410 पर। विजिट कीजिए साउथ हॉल ट्रैवल।
1: Holiday breaks were brought to you by Southall Travel. Low prices for flights, hotels or holiday packages. Visit southalltravel.co.uk. Get all the latest travel updates for London at breakfast and drive.
2: ये है
3: लाइका गोल्ड
2: ट्रेवल हब world.com। कामयाबी के शानदार 22 बरस सेलिब्रेट कर रहे हैं बाय ओपनिंग देयर थर्ड ब्रांच ऑन 2 ईलिंग रोड वेम्बली। फाइंड द बेस्ट प्राइस ऑन एनी होटल एनीवेयर इन द वर्ल्ड ऑन ट्रेवल हब world.com। फ्लाइट्स एंड हॉलीडेज हमसे सस्ता कहीं नहीं मिल सकता। कॉल ट्रेवल हब 24/7 ऑन 0208-782-8833 और विजिट ट्रेवल हब world.com।
4: ट्रेवल हब बेस्ट सर्विस विद unbeatable price
5: at all protected।
4: Visit travelhubworld.com।
6: Transfer money home and turn every transfer into a chance to win while making your money go even further with SBI UK.
7: Transfer £1,000 or more in a day to enter our daily draw for a £75 voucher.
6: Transfer £2,000 or more in a week to enter our weekly draw for a 1 gram gold coin.
7: Transfer now using the Yono SBI UK app, online banking, or simply visit your nearest branch.
6: And that's not all. Enjoy zero transfer fees and competitive exchange rates.
7: More value, more rewards, more reasons to choose SBI UK.
6: Offer valid from the 4th of May to the 30th of June 2026. Entries open to UK residents 18 plus. No entry fee and purchase required. Terms and conditions apply. Visit sbiuk.statebank for details. SBI UK Limited is authorised by the PRA and regulated by the FCMPRA.
8: राम कृष्ण हरी यूके तयार आहात ना। ऐतिहासिक क्षणाचे साक्षीदार व्हायला येत्या 6 जून ला होते वाद्य महोत्सव 2026 रॉयल विंडसर रेस कोर्स SL4-5JJ। 100 ढोल 80 ताशे मराठी खाद्य संस्कृतीची चव घ्यायला आणि मराठी उद्योजकांना भेटायला नक्की या। महाराष्ट्राची परंपरा संस्कृती आणि आनंदाचा जल्लोष आणि विठ्ठल नामाचा गजर हा सोहळा तुम्हाला लाइव्ह बघायला नक्कीच आवडेल। थेट भारतापासून यूके पर्यंत सर्वांना जोडणारा एकच नाद वाद्य महोत्सव। टिकेट्स आता उपलब्ध आहे svrtuk.org। जय हरी विठ्ठल।
9: Be part of a historic grand opening.
10: Experience the newly inaugurated BAPS Swaminarayan Mandir in Paris. A once-in-a-lifetime spiritual journey.
9: Travel with your family and witness this divine occasion along with the Eiffel Tower, Seine River Cruise and a Paris City Tour.
10: Departure 5th of September. Call now on 0203-773-633.
9: Mantra Holidays. What's your travel mantra?
11: अब लंदन बैठे मिलेगा एशियन एथनिक स्वाद इंस्टेंटली थैंक्स टू जैमिन फूड्स।
12: जस्ट एड हॉट वाटर, वेट फॉर 5 मिनट्स एंड टेस्ट दी एथनिक रेसिपीज लाइक साबुदाना खिचड़ी, शीरा, पोहा, भाजी, वेज बिरयानी, दाल भात आर रेडी टू सर्व ऑन योर प्लेट।
11: जीरो मेस, नो स्ट्रेस, सेम एथनिक टेस्ट विद जैमिन फूड्स।
13: Your call is important to us. You are currently number 25 in the queue.
14: 25? Seriously?
13: Sounds like Ojo time.
14: Nice idea. Feel the fun with Play Ojo, the online casino with all the latest live casino and slot games. New players get 50 free spins on Big Bash Bonanza, plus instant payouts on winnings.
13: Sorry about the wait. How can I help?
14: You can help me celebrate. I won.
15: Feel the fun. Play Ojo.
16: First deposit only. Most wins are instant. 18 plus. Gamble aware. T's and C's apply.
17: Discover unique Grand Prix holidays with flights, race tickets and hand-picked stays. Combine iconic motorsport weekends with city breaks, beach escapes or even cruise experiences for the ultimate getaway. Prices start from just £799 per person. Visit skylordcruiseandholidays.com or call 0192 388 3100. At all protected.
18: Radio Network, proud hospitality partner, Ragasan. Seven stations, one podcast, one mobile app.
3: Advertise on Leica Radio Network, offering the largest Asian radio and digital content in the UK. Call 0207 132 1458 or sales at leicamedia.co.uk.
5: Tasty track of the hour brought to you by Coca Noodles.

0: रफी साहब की आवाज में ये गाना आपने सुना।
1: टेस्टी ट्रैक ऑफ द आवर स्पॉन्सर बाय कोका नूडल्स, क्विक टेस्टी हेल्दी फ्लेवर्स, परफेक्ट फॉर माय बिजी डे, अवेलेबल इन योर नियरेस्ट कन्वीनियंस स्टोर। मनोरंजन विद रवि शर्मा। Currency updates are sponsored by LemFi mobile app. Send money to India, Pakistan and Bangladesh swiftly from your phone.
0: तो 1 pound के बदले में आज आपको मिलेंगे 127 भारतीय रुपए, 373 पाकिस्तानी रुपए एंड 164 बांग्लादेशी टकास।
2: Leica Radio.
1: Are you thinking of sending money to India, Pakistan or Bangladesh? Then think LemFi. LemFi's best exchange rate and money transfers. Earn an additional £5 cash back when you use the code LEICA. Download LemFi now. T's and C's apply. Gold Rate, brought to you by Pooja Sweets and Savories, PoojaSweets.com, or visit us in Tooting, Kingsbury and Cardiff.
0: So gold rate is 107.6 pounds per gram.
1: Gold Rate was sponsored by Pooja Sweets, one of the best quality vegetarian food suppliers, PoojaSweets.com, or visit us at East Ham, Hounslow or Crowley.
3: हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ सरिता सबरवाल। एवरी वीकेंड 4 till 7 बहुत सी मीठी मीठी बातें आपके साथ शेयर करती हूँ। सैटरडे एंड संडे मेरे साथ ही रहेंगे।
4: ये है लाइका गोल्ड।
1: इंडिया क्रिकेट स्कोर अपडेट्स ब्रॉट टू यू बाय रेमिटली। सेंड मनी फास्ट टू इंडिया विद रेमिटली, ग्रेट रेट्स एंड लो फीस। रेमिटली, प्राउड टू बी द ऑफिशियल पार्टनर ऑफ इंग्लैंड क्रिकेट।
0: तो आज IPL में जो मैच है वो है गुजरात टाइटंस और राजस्थान रॉयल्स के बीच में, और ये मैच दोपहर के 3 बजे से शुरू होगा। मैच का हल जानने के लिए हमारा साथ देते रहिए।
1: इंडिया क्रिकेट स्कोर अपडेट्स वर ब्रॉट टू यू बाय रेमिटली, वेयर मोर ऑफ योर मनी मेक्स इट होम विद कॉम्पिटिटिव रेट्स एंड लो फीस। डाउनलोड द रेमिटली ऐप टुडे। रेमिटली UK लिमिटेड इज ऑथराइज्ड एंड रेगुलेटेड बाय द FCA।
0: तो लीजिए, आज का साथ मेरा और आपका बस इतना ही। अगला शो लेकर आ रही है सरिता जी सिटिंग इन फॉर बाली ब्रह्मभट्ट, लेकिन मैं आपसे कल फिर से मिलूंगी। और अगला गाना हमें लेकर चलेगा न्यूज तक। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। सी यू टुमारो, टेक केयर।
5: ये है लाइका गोल्ड 10:35 AM।
6: दिस ईद उल अज़हा, शेयर द जॉय नो मैटर द डिस्टेंस, वेदर यू आर नियर और फार, सेंडिंग सपोर्ट इज जस्ट अ टैप अवे। सेंड मनी विद वेस्टर्न यूनियन, एंजॉय जीरो ट्रांसफर फीस ऑन योर फर्स्ट ऑनलाइन ट्रांसफर टू बैंक अकाउंट्स और मोबाइल वॉलेट्स। प्रेफर टू सेंड मनी इन पर्सन। वेस्टर्न यूनियन इज ऑल्सो अवेलेबल एट पार्टिसिपेटिंग पोस्ट ऑफिसेस, यूरो चेंज एंड अदर रिटेल पार्टनर लोकेशंस। डाउनलोड आवर ऐप टुडे और विजिट westernunion.com। दिस ईद सेंड मोर देन मनी, सेंड जॉय। वेस्टर्न यूनियन मेक्स मनी फ्रॉम करेंसी एक्सचेंज।
7: The voice that turned love, heartbreak and memories into timeless songs. Pepe's presents
8: Atif Aslam live in the UK.
7: Atif Aslam brings his unforgettable sound to the O2 London on Sunday the 14th of June.
8: Book your tickets now at AXS.
7: Presented by Denby Productions, supported by Rianne's Music.
8: Exclusive radio partner, Leica Radio.
9: Mum, I'm outside. Yes, literally just landed.
10: Wait. How are you calling already? I'm still searching for Wi-Fi.
9: Oh, I'm on Simzy. Downloaded the eSIM back at Heathrow.
10: And you didn't pay those massive roaming charges?
9: Not a penny extra. Just a cheap local data plan. I even kept my UK number for bank alerts.
11: Heading home for the holidays? Skip the roaming drama. Get instant 5G data in India and 100 plus countries. Download the Simzy app today. Simzy, your global flow. T's and C's apply.
12: बोले तूने क्या कर रहा है रे?
13: अरे गुरु, आपके शो की टिकट ढूंढ रहा हूँ।
12: ये तो बताओ, कोई पता चला?
13: गुरु गुरु,
14: इस 19 जून को द प्रिंस रिजेंट होटल में किशोर कुमार यानी आपके संगीत का शो है। सुरेश कुमार और इंद्रा ट्रेवल की पेशकश, क्रेजी फॉर किशोर ऑन 19 जून।
12: तो शुभकामनाएं, देर नहीं करनी चाहिए, सुबह से शीघ्र
14: शीघ्र। क्रेजी फॉर किशोर एट द प्रिंस रिजेंट होटल ऑन 19 जून। टू बुक कॉल 0208-514-5400। बुक ऑनलाइन एट Eventbrite।
15: एक्सक्लूसिव रेडियो पार्टनर लाइका गोल्ड।
16: Step into the new grand showroom of Gajul's Couture, Southall.
17: At
16: 159 The Broadway, Southall, UB1 1LR.
1: From stunning bridal wear and glamorous party wear to stylish casual outfits for men and women,
16: plus beautiful jewelry and accessories, find everything under one roof. Gajal's Couture, now open 7 days a week.
1: Gajal's Couture, Southall. Style, elegance and occasion wear, all in one destination.
17: इस महीने मेरा बॉयलर लेकर आया है प्री बुकिंग सेल का शानदार मौका। अब सभी बॉश बॉयलर्स पर सीधे £350 की बचत। 25 किलोवाट बॉयलर सिर्फ £1,890 से पूरी तरह फिटेड। और हाँ, मिलेगी आपको 7 साल की बॉश गारंटी। तो इंतजार मत कीजिए, अभी कॉल करें 02081502025 और विजिट meraboiler.com। टीज एंड सीज अप्लाई।
18: लंदन, गुड न्यूज, आपका फेवरेट आईटेक अब TRS कैश एंड कैरी साउथ हॉल में। ह्यूज variety of products including fresh vegetables and fruits with better prices, perfect for retailers, traders, takeaways and caterers. iTech is open 24/7 with free parking. For iTech at unit 123 South Bridge Way, Southall, UB24AX. Once you visit, you come again and again.
19: So, your decaf, oat milk, extra but not piping hot, 4 pumps of caramel, no sugar, small latte in a large cup. That will be 10 minutes.
20: No worries, I'm having fun on Play Ojo.
21: Keep it fun with PlayOjo's safer gambling tools, including take a break and time checks to keep track of your play.
19: Here's your decaf, oat milk, extra but not piping hot.
20: Thanks. Playtime's over. Mmm, lovely.
22: Feel the fun. PlayOjo.
23: 18 plus, gamble aware.
24: Location, location, location.
25: In real estate, location is everything, and this one is a winner.
24: Introducing Greens by Daniel, a premium collection of townhouses and villas
25: located in Dubai in a prime location for high appreciation.
24: Step inside and walk into fully furnished townhouses and villas with premium Italian furnishings.
25: Step outside and enjoy 50 plus amenities inside the master community.
24: And the best part, townhouses and villas Greens start from just £711,000.
25: To book, call our London office on 020-3963-5757. Greens by Danube. Prime location,
24: high appreciation
25: in Dubai.
1: Up next, Ballybrumbat with Gold Afternoons on Leica Gold.
4: Manoranjan with Ravi Sharma.

0: बैक टू बैक दो गाने आपने सुने। ये गीत जो अभी अभी मेरी आवाज़ के साथ चल रहा है, ये था फ्रॉम द फिल्म ईमानदार। ईमानदार इस फिल्म के हीरो थे संजय दत्त और हीरोइन थी फराह। कल्याण जी आनंद जी का था संगीत और सुशील मालिक ने इस फिल्म को डायरेक्ट किया था। एंड गाना बहुत खूबसूरत था और जब भी कभी हमने प्ले किया तो आपने पसंद भी किया है। सुरेश वाडकर और आशा भोसले जी की आवाज़ें थी। और आज के प्रोग्राम का आगाज़ मैंने जिस गीत के साथ किया वो फिल्म थी थानेदार। वंस अगेन संजय दत्त भी थे इस फिल्म में और हीरो जितेंद्र भी थे, जयप्रदा थी और माधुरी दीक्षित भी थी। राजन सिप्पी ने इस फिल्म को बनाया था एंड बप्पी लहरी साहब का था संगीत। उम्मीद करती हूँ दोनों गीत आपने पसंद किए। लता जी एंड पंकज जी की पंकज उदास जी की आवाज़ें शामिल थी। राइट, आज का प्रोग्राम शुरू है। दो गीत आपने सुन लिए हैं और इट्स 18 मिनट्स आफ्टर 1 o'clock। सरिता आपसे जानना चाहती है कैसे मिजाज हैं आपके। उम्मीद करती हूँ जहाँ भी हैं खुश हैं, खैरियत से हैं, ज़िंदगी के हर पल को इन्जॉय कर रहे हैं। और अगर किसी वजह से तबीयत ठीक नहीं है तो मैं ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ, आपके लिए दुआ करती हूँ कि आप हमेशा तंदुरुस्त रहें, सेहतमंद रहें। इफ़ यू आर फीलिंग बिट डाउन, कम ऑन, चीयर अप। लाइफ इज़ टू लिव, लाइफ इज़ टू इन्जॉय। जी और शान से मुस्कुराते, गुनगुनाते, चहकते, महकते और थिरकते हुए। और जो मेरे साथी ऑलरेडी मेरे साथ जुड़ चुके हैं, अपने अपने मैसेजेस मुझ तक पहुंचा रहे हैं, थैंक यू एवर सो मच। सुनते रहिए, इन्जॉय करते रहिए और बता दीजिए कि कौन सा वर्ड था जो दोनों गीतों में आपको बार बार सुनने को मिला। अगर पता चल जाए और इस वर्ड पर आपको कोई और गाना याद आ रहा है तो मुझे ज़रूर बता सकते हैं। नंबर आपका जाना पहचाना है, उस नंबर के रास्ते आप मुझे व्हाट्सएप मैसेज भेज सकते हैं।
1: SBI UK Money Talk. Send money to India with competitive rates with Yono SBI UK online and via the SBI UK branch.
0: राइट, भी अगर आप SBI UK वालों के जरिए पैसे ट्रांसफ़र कराना चाहते हैं इंडिया में तो योर 1 pound इन ब्रिटिश स्टर्लिंग कैन गेट यू टुडे 127 rupees and 95 paisas। और डिपेंड करता है कितना अमाउंट आप ट्रांसफ़र करा रहे हैं, जितना ज़्यादा बड़ा अमाउंट होगा उतने ज़्यादा पैसे मिलेंगे आपको। सेंड मनी टू इंडिया वाया SBI योनो ऐप और ब्रांच बिफोर एंड ऑफ जून एंड बी इन टू विन अ 75 pounds voucher every day when you send over 1000 pounds. Also, a 1 gram gold coin every week when sending over 2000 pounds. Terms and conditions apply.
1: State Bank of India UK offers savings products, business banking, buy-to-let mortgages and safe deposit lockers. Visit sbiuk.statebank to locate your nearest branch. T's and C's apply.
2: Gemin Foods sponsors Gold Afternoons. From dal bhat, pav bhaji and biryani to namkeen, khakra, chikki, potato chips, mango pulp, pani puri and sweets. Everything delicious. Everything for everyone.
3: Now, banking with ICICI Bank UK works beautifully together.
4: Your iPhone becomes your ICICI Bank UK card with Apple Pay. Simple, secure and ready whenever you are.
3: Tap to pay in store or online across your Apple devices.
4: And with global account linkage, view your UK current account and India savings account balances all in one place.
3: Plus, send money to India seamlessly with the Money to India app.
4: ICICI Bank UK, smarter banking right at your fingertips.
3: Apple Pay is available on compatible devices. Terms and conditions apply.
4: ICICI Bank UK PLC is authorised by the PRA and regulated by the FCA and PRA.
5: Fly more, pay less with Leica Fly. Grab cheap flights to India, the Philippines, Africa and Pakistan. Book now, pay later. All ATOL protected. Call 0207 132 0700 or visit leicafly.com. Leica Fly. Fly more, pay less.
6: Location, location, location.
7: In real estate, location is everything. And this one is a winner.
6: Introducing Greens by Danio, a premium collection of townhouses and villas
7: located in Dubai in a prime location for high appreciation.
6: Step inside and walk into fully furnished townhouses and villas with premium Italian furnishings.
7: Step outside and enjoy 50+ amenities inside the master community.
6: And the best part, townhouses and villas, Greens start from just 711,000 pounds.
7: To book, call our London office on 0
8: 02039635757. Greens by Danube. Prime location.
9: High appreciation.
8: In Dubai.
10: Mom, I don't know what to do anymore. My hair is getting worse. I've tried everything. Nothing works.
11: Beta, you're not alone. For 5 generations, our family trusted one thing. Pure Herbal Care. Amla, Bringraj, Neem. Real ingredients, not chemicals.
10: So where do we find something like that now?
11: Right here in London. Baidyanath Sidhayu Hair Oil, Shampoo and Toothpaste. Pure Ayurvedic, premium and made it the way our eldest used it.
12: From the house of Baidyanath, with over 100 years of Ayurvedic legacy. Available at all quality food stores and other leading retail stores across the UK. The voice that touches every soul. Star Express presents Hariharan's Soul India.
13: Live in London. Experience an unforgettable evening with the legendary Hariharan.
12: Saturday, 4th July at the Royal Festival Hall. For bookings, visit southbankcentre.co.uk.
13: Exclusive radio partner, Leica Radio Network.
14: इस महीने मेरा बॉयलर लेकर आया है प्री बुकिंग सेल का शानदार मौका। अब सभी बॉश बॉयलर्स पर सीधे £350 की बचत। 25 किलोवाट बॉयलर सिर्फ £1,890 से पूरी तरह फिटेड। और हाँ, मिलेगी आपको 7 साल की बॉश गारंटी। तो इंतजार मत कीजिए, अभी कॉल करें 02081502025 और विजिट meraboiler.com। T's and C's apply।
15: लंदन में एक महान धार्मिक अवसर यूनिटी इन डिवाइनिटी प्रेजेंट्स महासोम यज्ञ 14 से 21 जून वुडलैंड स्टैन मार्केट टेंपल ग्राउंड्स पर। सभी के लिए एंट्री फ्री है, तो आप सभी अवश्य पधारिए। रोज सुबह 10 से 3 यज्ञ और शाम 4 से 7 मनोरथ फॉलोड बाय महाप्रसाद। आप पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, वॉलंटियर बनना चाहते हैं या यजमान सेवा लेना चाहते हैं, तो आज ही रजिस्टर करें। वेन्यू टेंपल ग्राउंड्स वुडलैंड स्टैन मार्केट HA74LF। फॉर मोर डिटेल्स विजिट somyagya.com। कॉल 07932623852।
16: Bright Sun Travel is celebrating 40 years of travel, and we're giving you the chance to win one of 4 amazing prizes. You could win a £2,000 holiday voucher, a weekend break for two to Barcelona, a Michelin star dinner for two people, or £400 of Amazon vouchers. Want to enter Bright Sun's 40th anniversary competition? It's easy. Enter before the 30th of June 2026. Just visit brightsun.co.uk/win.
17: Leica Gold, London का नंबर वन एशियन रेट्रो म्यूजिक स्टेशन, अब अवेलेबल है ग्रेटर लंदन में 10:35 AM पर DAB डिजिटल रेडियो पर। एलेक्सा पे बोलो प्ले Leica Gold और ऑनलाइन सुनो LeicaGold.com पे।
18: Feel good track brought to you by Dairy Valley.
19: Soft and tender, like grandma's warm hug. Dairy Valley paneer is made with natural ingredients and zero preservatives. Visit dairyvalley.net.

0: बुलबुल। Feel good track brought to you by Derry Valley.
1: Happy Halwai brings your taste buds oodles of happiness with authentic gulab jamun, rasmalai, motichur laddu and much more. Visit happyhalwai.com.
2: Jab jab phool ke liye is film se chuna tha maine is geet ko, 1965 ki film thi. Male voice to aap sabne pehchani, Ravi saab ne, aur dialogue jo beech mein hansi bhi thi wo कौन थी, कमेंट जो करी थी वो आवाज़ किसकी थी, अगर आपने पहचानी है तो ज़रूर मुझे व्हाट्सएप करके बता दीजिएगा। वैसे मुझे मालूम है, ये नहीं कि मुझे पता नहीं है, ज़रा आपकी याद के जो घोड़े हैं उन्हें दौड़ाना चाहती है सरिता।
0: ये है लाइका गोल्ड, टेस्टी ट्रैक ऑफ द आवर ब्रॉट टू यू बाय कोका नूडल्स।
2: एक और गीत रफी साहब और आशा जी की आवाज़ों में आप तक पहुंचा रही हूं। फिल्म का नाम था सांझ और सवेरा, 1964 में आई थी ये फिल्म। देखी थी आपने? अच्छी लगी थी?

0: tasty track of the hour, sponsored by Coca Noodles. Just add hot water and enjoy Coca Noodles in 3 minutes.
1: भी गीत सभी आपको पसंद आ रहे हैं, आपने कहा हमारा दिन बना दिया, थैंक यू एवर सो मच। यही तो सरिता चाहती है कि आपका दिन बहुत अच्छा बीते, आपकी हर मोमेंट अच्छी रहे, आप हमेशा इन्जॉय करते रहें इन गीतों को, और अगर आपकी कोई याद जुड़ी हो इन गीतों के साथ तो उसे भी चेरिश करते रहिएगा। अब मैं अपने सभी सुनने वालों को बताना चाह रही हूँ कि आफ्टर द ह्यूज सक्सेस ऑफ इट्स हैरो बेस्ड ऑफिस Danube Property, Dubai is delighted to announce the opening of their second London office in Knightsbridge this Saturday. खुलने वाली है. And Team Laika Radio Network will be broadcasting live from 11 a.m. up till 2 p.m. to mark the special occasion. Watch out for updates on Laika Radio's Instagram and Facebook pages from the grand ओपनिंग. सो ज़रूर सुनते भी रहिए, देखते भी रहिए और इन्जॉय भी करते रहिए. अब भाई अगले गीत की तरफ सरिता बढ़ रही है, वो भी बड़ा ज़बरदस्त गाना है, आपको ज़रूर पसंद आएगा, ऐसी तो आशा हमेशा रखती हूँ मैं.
2: To Kajal on breakfast at 6 a.m. and drive back with Sandy Shah at 4 p.m. Like a Gold.

0: currency updates are sponsored by LemFi mobile app. Send money to India, Pakistan and Bangladesh swiftly from your phone.
1: राइट भी आपको बता दें कि इस वक्त करेंसी का रेट मार्केट में क्या चल रहा है। एक पाउंड के बदले आपको कितने इंडियन रुपीस मिलेंगे? 127.52 पाकिस्तानी रुपीस, 373.96 श्रीलंकन रुपी, 443.14 बांग्लादेशी टका, 164.82 अफगानी 84.93।
0: Are you thinking of sending money to India, Pakistan or Bangladesh? Then think LemFi. LemFi's best exchange rate and money transfers. Earn an additional £5 cash back when you use the code LIKA. Download LemFi now. T's and C's apply. LIKA Gold. Gold Rate. Brought to you by Pooja Sweets and Savories. PoojaSweets.com. Or visit us in Tooting, Kingsbury and Cardiff.
1: It's £108.19 per gram.
0: Gold Race was sponsored by Pooja Sweets, one of the best quality vegetarian food suppliers. PoojaSweets.com or visit us at East Ham, Hounslow or Crowley.
2: का वीकेंड और भी सुहाना द रितु शर्मा शो में एवरी वीकेंड 10 AM टू 1 PM ऑन लाइका गोल्ड रेडियो, लाइका रेडियो ग्रेटर मैनचेस्टर एंड लाइका रेडियो मिडलैंड्स पर।
0: Proud to be the official partner of England Cricket.
1: Right, भी आज तो बहुत सबकी आंखें कहाँ लगी हुई हैं, स्क्रीन पर ही लगी हैं। Yes, पर 3 बजे मैच शुरू होगा तो आपको पता चलेगा। गुजरात टाइटंस और राजस्थान रॉयल्स के बीच में मैच होने वाला है न्यू चंडीगढ़ में, तो देखिएगा। और अपर कान इस तरफ।
0: India cricket score updates were brought to you by Remitly, where more of your money makes it home with competitive rates and low fees. Download the Remitly app today. Remitly UK Limited is authorized and regulated by the FCA.
3: Gem in Gold Afternoons with Bali Brambert. Bali Brambert. Gem in Foods, bilkul ghar jaisa swad aur ghar jaisi hi baat. Available at Asian stores near you.
4: भारत या पाकिस्तान जाने की सोच रहे हैं तो एयर टिकट साउथ हॉल ट्रेवल से खरीदिए।
5: मगर साउथ हॉल ट्रेवल से ही क्यों?
4: क्योंकि उनसे ज्यादा सस्ती टिकटें कहीं नहीं मिलेंगी।
5: गारंटेड
4: बुकिंग करवाएं और उसके बाद 24 घंटों के भीतर कहीं से भी सस्ती ला के दिखाएं तो ये फुल रिफंड या प्राइस डिफरेंस वापस कर देंगे। साउथ हॉल ट्रेवल,
5: फोन 02085748410।
4: 24 घंटे किसी भी वक्त फोन करें 02085748410। एट ऑल प्रोटेक्टेड।
6: Have you had a bereavement in the family? In times of sadness and grief, Om Funeral Care is there to help and support with all customs and rituals. At Canton Road in West London and Ilford in East London, Om Funeral Care's well-versed priests carry out all the rites and rituals in English, Hindi, Gujarati, Marathi, Tamil and other languages. Contact Kalpesh Patel on 0208-922-3344 at 24-hour line.
7: Every morning a shopkeeper opens his doors.
8: Lights on, shutters up, staff ready.
7: But today's customers don't start on the high street.
8: They start on their phones, scrolling Instagram, watching TikTok, searching Google.
7: And if your business isn't there, they don't walk past your shop.
8: They walk into your competitors.
7: Social media today decides who gets seen and who gets forgotten. Is your business part of the conversation or invisible? Visit HeartyHanks.com before your competitors do.
8: Marty Hanks, the digital agency that doesn't play safe.
9: Transfer money home and turn every transfer into a chance to win while making your money go even further with SBI UK.
10: Transfer £1,000 or more in a day to enter our daily draw for a £75 voucher.
9: Transfer £2,000 or more in a week to enter our weekly draw for a 1 gram gold coin.
10: Transfer now using the Yono SBI UK app, online banking or simply visit your nearest branch.
9: And that's not all. Enjoy zero transfer fees and competitive exchange rates.
10: More value, more rewards, more reasons to choose SBI UK.
9: Offer valid from the 4th of May to the 30th of June 2026. Entries open to UK residents 18+. No entry fee and purchase required. Terms and conditions apply. Visit sbiuk.statebank for details. SBI UK Limited is authorised by the PRA and regulated by the FCMPRA.
11: वेडिंग सेलिब्रेशंस, कॉर्पोरेट इवेंट्स, रागसन सब कुछ एफिशिएंटली हैंडल करते हैं। परफेक्ट लोकेशन ढूंढने से लेकर इनक्रेडिबल थीम्स डिजाइन करने तक, वर्ल्ड क्लास कुजीन से हर छोटी बड़ी रिक्वायरमेंट तक मैनेज करते हैं। 30 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस हर इवेंट को खास बनाए। फॉरन का फोन मिलाए 0208839080 और विजिट ragasan.com। लोकेशन, डिजाइन, मैनेजमेंट या केटरिंग, रागासन।
12: स्टेप इनटू द न्यू ग्रैंड शोरूम ऑफ काजल्स कुचोर साउथहॉल
13: एट 159 द ब्रॉडवे साउथहॉल UB1 1LR।
12: फ्रॉम स्टनिंग ब्राइडल वेयर एंड ग्लैमरस पार्टी वेयर टू स्टाइलिश कैजुअल आउटफिट्स फॉर मेन एंड वुमेन,
13: प्लस ब्यूटीफुल ज्वेलरी एंड एक्सेसरीज, फाइंड एवरीथिंग अंडर वन रूफ। काजल्स कुचोर नाउ ओपन 7 days a week।
12: काजल्स कुचोर Southall, style, elegance and occasion wear, all in one destination.
14: डिवोर्स या कस्टडी का इश्यू, इसे अकेले फेस मत करें। कैंटन सॉलिसिटर्स लंदन आपके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए जल्दी एक्शन लेते हैं। अभी कॉल करें 0208-907-2444। आज ही एक्शन ले 0208-907-2444।
15: माँ के हाथ की चाय हो या दोस्तों के साथ गॉसिप,
16: टेबल पे सिर्फ एक हीरो, जैमिन फूड्स का ऑल न्यू पोटैटो चिप्स,
15: मसालेदार मसाला, टैंगी टोमेटो, सॉल्टेड क्लासिक और थोड़ा स्पाइसी मैक्सिकन चिली फ्लेवर, ऑल इन जैमिन्स पोटैटो चिप्स।
16: जैमिन फूड्स प्रेजेंट्स पोटैटो चिप्स, देसी स्वैग इन एवरी बैग।
17: ट्रैवल इन स्टाइल स्पेशलाइज इन हॉलीडेज टू श्रीलंका। वी ऑफर टेलर मेड पैकेजेस टू सूट योर नीड्स। मैच योर स्टाइल विद ट्रैवल इन स्टाइल। कॉल 0208-954-0077. That's 0208-954-0077. Fully bonded, travel in style. Travel in style. Travel in style. Travel in style.
18: From breathtaking wedding jewelry to the finest diamond rings, do come in and see us at Minar Jewelers to create the perfect symbol of your love story. Minar Jewelers, the diamond specialists. Call 0208-767-2142.
19: Across London, this is Bali Brambat on Like a Go.

0: बैक टू बैक दो गाने आपने सुने, ये सेकेंड आवर के पहले दो गीत थे। पहला गीत मैंने चुना था बेवफा सनम फिल्म से, जो 1995 में आई थी, और दूसरा गीत था फ्रॉम द फिल्म शौकीन, 1982 की फिल्म थी। आशा जी की आवाज़ इसमें शामिल थी। तो पहले गीत में सोनू निगम की आवाज़ आपने सुनी। थोड़ा सा फिल्म के बारे में बता दूं और उसके बाद मैं बताऊंगी कि क्यों ये गाने आज के प्रोग्राम में शामिल हुए हैं। पहला गीत था बेवफा सनम से, और बेवफा सनम का अच्छा सिला दिया तूने मेरे प्यार का, ये एक्चुअली इनिशियली अताउल्ला इस्सा खैलवी साहब ने गाया था, पाकिस्तान के सिंगर हैं। और लेकिन ये वाला गीत सोनू निगम ने गाया और इसे योगेश जी ने लिखा, और इसके अलावा उन्होंने उई उई मेरी अम्मा पूर्णिमा ने गाया था वो गीत, वो वाला गीत, और वफा नाराज आई तुझे ओ हर जाए ये गाना, एंड ऑल्सो ओ दिल तोड़ के हस्ती हो मेरा, ये चार गाने योगेश जी ने लिखे थे। और योगेश जी की आज पुण्यतिथि पर हम उन्हें याद कर रहे हैं, मैं उनके बारे में भी थोड़ी सी जानकारी ज़रूर दूंगी। ये फिल्म बेवफा सनम एक्चुअली 12th of May 1995 में रिलीज़ हुई थी, और इस फिल्म का संगीत एक नहीं बल्कि बहुत सारे म्यूज़िक डायरेक्टर्स ने मिलकर दिया था। निखिल विने ने इस पर्टिकुलर गाने को जो मैंने शामिल किया उसे निखिल विने ने अरेंज किया था। वैसे वो गाना बेसिक ट्यून जो थी अताउल्ला इस्सा खैलवी साहब की थी। एंड बेवफा सनम में कृष्ण कुमार थी, अरुणा ईरानी थी, बीना बैनर्जी थी, एंड शिल्पा शिरोडकर के साथ साथ शक्ति कपूर और किरण कुमार भी थे, और ये फिल्म बनाई थी गुलशन कुमार जी ने। और दूसरा गीत जो था वो फिल्म शौकीन का था, शौकीन फिल्म बासु चैटर्जी ने बनाई थी, अशोक कुमार एंड उत्पल दत्त उस फिल्म में थे, एंड साथ में थे ए के हंगल, मिथुन चक्रवर्ती एंड रति अग्निहोत्री। शौकीन के भी गाने काफ़ी मशहूर हुए थे। द म्यूज़िक ऑफ द फिल्म वॉज कम्पोज बाय आर डी बर्मन साहब, एंड लिरिक्स सभी लिखे थे योगेश गौर जी ने। जब भी कोई कंगना बोले, पायल छनचाए, किशोर दा ने गाया था उस गीत को, और ये रंगे महफिल ये आशा जी का गीत था। आ वहीं चल मेरे दिल, ये भी गाना बड़ा प्यारा है, सुरेश वाडकर जी ने गाया हुआ है, एंड चलो हसीन गीत एक बनाएं, ये गाना थोड़ा डिफरेंट है। इसे अशोक कुमार जो हीरो थे इस फिल्म के उन्होंने गाया, और साथ में कृष्णश्री भट्टाचार्य फीमेल वॉइस उन्होंने साथ में गाया था। फिर किसी रोज़ वो गाना भी ज़रूर शामिल करूँगी। राइट, तो रीज़न आपको पता चल गया कि आज योगेश जी के लिखे हुए कुछ एक गीत प्रोग्राम के इस आवर में शामिल करने की मेरी कोशिश है। योगेश गौर कॉमनली क्रेडिटेड एज योगेश, एंड ही वॉज एन इंडियन राइटर एंड लिरिसिस्ट, उन्होंने कुछ लिखी हैं, स्टोरीज भी लिखी हैं, लेकिन साथ में गीतकार भी थे। ही वॉज नोन फॉर हिज कॉन्ट्रीब्यूशंस टू बॉलीवुड, एंड पॉसिबली हिज बेस्ट नोन वर्क केम फ्रॉम द फिल्म आनंद। डिड यू नो आनंद के गाने उन्होंने लिखे थे, सॉन्ग्स इंक्लूडिंग कहीं दूर जब दिन ढल जाए, वो गीत भी इनका लिखा है, एंड ऑल्सो जिंदगी कैसी है पहेली हाय, एंड रजनीगंधा के गाने भी बहुत मशहूर हुए थे। तो रजनीगंधा के गीत आ रहे हैं, मैंने क्यों किया हुआ है एक गाना, लेकिन मैं आपसे जानना चाहूँगी कि कौन सा गीत आप सुनना पसंद करेंगे। वो गीत जिसके लिए प्लेबैक सिंगर मुकेश जी को नेशनल अवार्ड मिला, या वो गीत जो बड़ा फेमस हुआ इसे लता जी ने गाया, रजनीगंधा फूल तुम्हारे, ये गाना टाइटल ट्रैक, और या कई बार यूं भी देखा है, वो वाला गीत सुनना चाहते हैं। जो भी गीत सुनना चाहते हैं मुझे जल्दी से यू गोट अबाउट 3 मिनट्स, जल्दी से मुझे बता दीजिए ताकि मैं वही गीत प्रोग्राम में शामिल कर दूं आफ्टर द कमर्शियल ब्रेक। तो मैं योगेश जी के बारे में और भी जानकारी देती रहूँगी। आइए बढ़ते हैं और करते हैं ये काम।
1: SBI UK Money Talk. Send money to India with competitive rates with Yono SBI UK online and via the SBI UK branch.
0: राइट, अगर इनके ज़रिए आज पैसे ट्रांसफ़र कराना चाहते हैं तो आपको बड़ा अच्छा रेट भी मिल रहा है और साथ में क्या मिल रहा है वो भी हम आपको बताते रहते हैं। 127 रुपीज़ एंड 5 पैसे मिलेंगे अगेंस्ट 1 British sterling pound एंड सेंड मनी टू इंडिया वाया SBI योनो ऐप और ब्रांच बिफोर एंड ऑफ जून एंड बी इन टू विन अ 75 pounds वाउचर एवरी डे व्हेन यू सेंड ओवर 1,000 pounds ऑल्सो अ 1 gram गोल्ड कॉइन एवरी वीक व्हेन सेंडिंग ओवर 2,000 pounds टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई।
1: State Bank of India UK offers savings products, business banking, buy-to-let mortgages and safe deposit lockers. Visit sbiuk.statebank to locate your nearest branch. T's and C's apply.
2: Gemin Foods sponsors Gold Afternoons. From dal bhat, pav bhaji and biryani to namkeen, khakra, chikki, potato chips, mango pulp, pani puri and sweets. Everything delicious. Everything for everyone.
3: Packed for the trip? Gifts? Passport?
4: Check. Just dreading that phone bill when I get back from India. Roaming is a nightmare.
5: Mate, you're doing it wrong. Just get Simzy.
4: Simzy?
5: It's an eSIM app. You buy a data plan for India starting at just $5. No swapping plastic SIMs. No kiosks.
6: Plans for Asia, Europe and beyond. Search Simzy.com. That's SIMZY.com. T's and C's apply.
7: तूने क्या कर रहा है रे?
8: अरे गुरु, आपके शो की टिकट ढूंढ रहा हूँ।
7: ये तो बताओ, कोई पता चला?
9: गुरु गुरु, इस 19 जून को द प्रिंस रिजेंट होटल में किशोर कुमार यानी आपके संगीत का शो है। सुरेश कुमार और इंद्रा ट्रेवल की पेशकश क्रेजी फॉर किशोर ऑन 19 जून।
7: शारु, तो शुभ काम में देर नहीं करनी चाहिए, सुबह से शीघ्र
9: शीघ्र। क्रेजी फॉर किशोर एट द प्रिंस रिजेंट होटल ऑन 19 जून। टू बुक कॉल 0208-514-5400। बुक ऑनलाइन एट Eventbrite।
10: एक्सक्लूसिव रेडियो पार्टनर Like a Gold।
11: Herald, new world of eco-friendly disposables for restaurants, cafes, caterers, food takeaways and food delivery services. Order your free 2025 catalogue today. Call on 0208-507-7900 or download the catalogue from heraldpackaging.com. Herald is a manufacturer of high-quality, eco-friendly and cost-effective disposables for restaurants, cafes, caterers, food takeaway and delivery businesses. Herald disposables available at food services, cash and carries and with disposable supplies to trade. Visit heraldpackaging.com.
12: Location, location, location.
13: In real estate, location is everything. And this one is a winner.
12: Introducing Greens by Danio, a premium collection of townhouses and villas
13: located in Dubai in a prime location for high appreciation.
12: Step inside and walk into fully furnished townhouses and villas with premium Italian furnishings.
13: Step outside and enjoy 50+ amenities inside the master community.
12: And the best part, townhouses and villas Greens start from just £711,000.
13: To book, call our London office on 0203963-5757. Greens by Danube. Prime location.
12: High appreciation.
13: In Dubai.
14: This Eid ul-Azha, share the joy no matter the distance. Whether you're near or far, sending support is just a tap away. Send money with Western Union. Enjoy zero transfer fees on your first online transfer to bank accounts or mobile wallets. Prefer to send money in person. Western Union is also available at participating post offices, Euro Change and other retail partner locations. Download our app today or visit WesternUnion.com. This Eid, send more than money. Send joy. Western Union makes money from currency exchange.
15: Step into the new grand showroom of Kajal's Couture, Southall.
16: At 159 The Broadway, Southall, UB1 1LR.
15: From stunning bridal wear and glamorous party wear to stylish casual outfits for men and women.
16: Plus, beautiful jewellery and accessories. Find everything under one roof. Kajal's Couture, now open 7 days a week.
15: Kajal's Couture, Southall. Style, elegance and occasion wear. All in one destination.
17: Mum always said, beta, clove and neem keep the mouth healthy. Now that same trusted wisdom comes from Baidyanath, over 100 years of Ayurvedic legacy in Siddhayu toothpaste. Fresh breath, strong gums, pure herbal care. Available at all quality food stores and other leading retail stores across the UK. Siddhayu, Ayurveda that fits your life.
18: Discover Malta and Gozo with a twin center island escape. Fly from a choice of UK airports year-round and enjoy 3 nights in Malta. A ferry trip to Gozo for another 3 nights and more. Prices start from just £399 per person. For great deals on cruise and holidays, visit Skylord Cruise and Holidays.com or call 0192 388 3100. Atoll protected.
19: हल्के फुल्के मोमेंट्स को और भी खास बनाए जैमिन स्नैक्स के हल्के फुल्के पफ बाइट्स के साथ।
20: राइस कॉर्न से बने लाइट और क्वालिटी में बेस्ट जैमिन पफ बाइट्स, जो है बारबेक्यू, लेमन चिली, मस्त मसाला और मैक्सिकन सालसा जैसे फ्लेवर्स में अवेलेबल।
19: जैमिन पफ बाइट्स अवेलेबल एट योर नियरेस्ट एथनिक ग्रोसरी स्टोर्स।
21: एक ऐतिहासिक अने दिव्य अवसर पेरिस मा भव्य बीएपीएस स्वामीनारायण मंदिर ना ग्रैंड ओपनिंग मा दर्शन नो लाभ। आ पवित्र यात्रा मा जोड़ाओ आपना परिवार साथे, जहां मळशे शांति भक्ति अने आनंद, अने साथे आईफिल टावर, सेन रिवर क्रूज अने पेरिस सिटी टूर नो आनंद मानो। डिपार्चर 5 सितंबर ना मंत्रा हॉलीडेज। कॉल करो 0203-773-6333। मंत्रा हॉलीडेज, व्हाट्स योर ट्रैवल मंत्रा?
1: Like a Gold, officially London's number one Asian retro music station. Available in Greater London on 10:35 AM, DAB Digital Radio, Alexa and likeagold.com. Feel good track, brought to you by Dairy Valley.
22: Soft and tender, like grandma's warm hug, Dairy Valley Paneer is made with natural ingredients and zero preservatives. Visit dairyvalley.net.

0: रजनीगंधा से चुना हुआ ये गीत आपने सुना और मुझे उम्मीद है कि बहुत पसंद भी आया होगा। वैसे ज़्यादातर वोट इसी गीत को मिले थे। दो मेरे साथियों ने लिखा था कि दूसरा वाला गीत मुकेश जी की आवाज़ में गाया हुआ गीत शामिल कर दें। वेल, उस गीत के लिए ही वन मुकेश जी वन नेशनल फिल्म अवार्ड फॉर बेस्ट मेल प्लेबैक सिंगर। सो हम बात कर रहे हैं एक्चुअली योगेश जी की। योगेश गौर उनका पूरा नाम था लेकिन जाने जाते थे योगेश के नाम से, और उन्होंने बहुत सी स्टोरीज़ भी लिखी हैं, साथ में गीतकार थे। एंड आनंद के गीत मैंने क्यों किया हुआ है वो भी आप तक पहुंचाऊंगी बहुत जल्दी। एंड रजनीगंधा का गीत आपने सुना। ही वॉज बॉर्न ऑन 19th March 1943 इन लखनऊ उत्तर प्रदेश में। ही मूव टू मुंबई एट द एज ऑफ 16 लुकिंग फॉर वर्क एंड सोट द हेल्प ऑफ हिज कज़न योगेंद्र गौर हु वॉज अ स्क्रीन प्ले राइटर। उन्होंने इनकी काफ़ी हेल्प की ड्यूरिंग हिज स्ट्रगल डेज। ही इवन एक्टेड एज एन एक्स्ट्रा इन द हिट मेथोलॉजिकल फिल्म चक्रधारी। फिल्म थी एक, उसमें उन्होंने काम किया था स्टारिंग त्रिलोक कपूर एंड निरूपा रॉय। हिज फर्स्ट ब्रेक वॉज इन 1962 when he wrote 6 songs for the Bollywood movie Sakhi Robin and including the songs Tum Jo Aao To Pyar Aa Jaye, kitna beautiful gana hai, which was sung by Manna Desa, and the song launched his career in Bollywood and he worked with some of India's finest directors like Hrishikesh Mukherjee and Basu Chatterjee. So अगला गीत जो है वो मैंने चुना है आनंद से, लेकिन उससे पहले बहुत से और काम भी हैं।
1: Feel good track brought to you by Dairy Valley.
2: Happy Halwai brings your taste buds oodles of happiness with authentic gulab jamun, rasmalai, motichur laddu and much more. Visit happyhalwai.com.
3: ye hai
4: Laika Gold.
5: Tasty track of the hour brought to you by Coca Noodles.

बहुत से प्यारे प्यारे गीत इन्होंने लिखे हैं और मेरी कोशिश है ज़्यादा से ज़्यादा गीत मैं शामिल कर पाऊँ, नहीं तो एक दो गीत नेक्स्ट आवर तक पहुँच जाएंगे। ये गीत आप तक पहुँचाया

0: Musical night featuring Ketan, Indrani, Sanjay and the 515 band, and it's taking place on Friday 19th June at the Prince Regent Hotel Chigwell, Essex May, and tickets available at eventbrite.co.uk or call 0208 514 5400. Exclusive radio partners and Leica Gold Radio. और भी इन्फॉर्मेशन है जो आपके साथ मैंने साझा करनी है, और वो इन्फॉर्मेशन किसके बारे में है ज़रा जान लेते हैं कि राइट, गेट सेट फॉर रिटर्न ऑफ द स्टेज म्यूजिकल सुरेंद्रेला इट्स टूरिंग फ्रॉम जुलाई फॉर टिकट्स एंड योर नियरेस्ट वेन्यू विजिट rifcotheater.com. एक्सक्लूसिव रेडियो पार्टनर है लाइका रेडियो.
1: Hello there, my name is Deep Raja and I do the weekend breakfast show from 7 a.m. Saturdays and Sundays. Like a gold in London, the Midlands and Manchester.
0: और वही साउथ हॉल ट्रेवल वालों का भी मैसेज आप तक पहुंचा दें. मेक दिस समर मेमोरेबल विद साउथ हॉल ट्रेवल. एक्सप्लोर बीच ब्रेक्स, सिटी एस्केप्स एंड मोर विद हॉलीडेज डील्स दैट इंक्लूड्स फ्लाइट्स, होटल्स एंड एटॉल प्रोटेक्शन. ट्रस्टेड फॉर ओवर 40 ईयर्स एंड विनर्स ऑफ द ब्रिटिश ट्रेवल अवार्ड. विजिट साउथ हॉल ट्रेवल और कॉल दैम ऑन 0208 574 8410.
2: Breaks were brought to you by Southall Travel. Low prices for flights, hotels or holiday packages. Visit southalltravel.co.uk. Get all the latest travel updates for London at breakfast and drive. Leica Extra podcast update.
0: जी हाँ, लेटेस्ट एपिसोड है होस्टेड बाय रूबी रजा एंड इट्स अबाउट मेनोपॉज. आर हॉट फ्लश इज स्टिल हश हश इन अवर कम्युनिटी. इसके बारे में बातचीत करेंगी. आप लाइका एक्स्ट्रा पॉडकास्ट अवेलेबल है ऑन स्पॉटिफाई, यूट्यूब, अमेजन, एप्पल एंड अदर मेजर स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स.
2: लाइका एक्स्ट्रा इज हियर. This is the Leica Radio Network across London, Manchester and the Midlands.
3: At Tesco Mobile, get the iPhone 17 with all-day battery life and 12 gigs of data for just £36.99 a month for 36 months with club card prices, saving you £162. Plus, you'll get £30 worth of club card points worth double with reward partners, or even triple with selected eating out venues. More points, more summer. It pays to be connected. Search Tesco Mobile. Every little helps. Ends 12th of July. Club card and 36-month credit agreement required. Savings calculated on contract duration. Terms at tescomobile.com/terms.
4: Gold Afternoons with Bali Brahmbhatt. Bali Brahmbhatt is sponsored by Gemin Foods. Tamara Tea Time no asli hero. Dal Bhat, Pav Bhaji, Biryani, Namkeen, Khakra, Chikki, Potato Chip, Mango Pearl, Pani Puri. So many varieties for everyone. Marshe Tamara Najikna Asian Shops Ma.
5: travelhubworld.com कामयाबी के शानदार 22 बरस सेलिब्रेट कर रहे हैं बाय ओपनिंग देयर थर्ड ब्रांच ऑन 2 ईलिंग रोड वेम्बली. फाइंड द बेस्ट प्राइस ऑन एनी होटल एनी वेयर इन द वर्ल्ड ऑन travelhubworld.com. फ्लाइट्स एंड हॉलीडेज हमसे सस्ता कहीं नहीं मिल सकता. कॉल ट्रेवल हब 24/7 ऑन 0208 782 8833 और विजिट travelhubworld.com.
0: ट्रेवल हब, बेस्ट सर्विस विद अनबीटेबल प्राइस
5: एट ऑल प्रोटेक्टेड.
0: विजिट travelhubworld.com.
6: Selling your car can be super simple if you choose We Buy Any Car, because they sort out any outstanding finance for you. Just bring along your final settlement agreement. If only they could make parallel parking simpler. To the right a bit, mate. Yeah, back a bit. Bit more. Oh, no, too far. We Buy Any Car. Selling made simple. To sell your car today, enter your reg number now at webuyanycar.com.
7: Voice that turned love, heartbreak and memories into timeless songs. Pepe's presents
8: Atif Aslam live in the UK.
7: Atif Aslam brings his unforgettable sound to the O2 London on Sunday the 14th of June.
8: Book your tickets now at AXS.
7: Presented by Denby Productions, supported by Rianne's Music.
8: Exclusive radio partner Leica Radio.
9: Transfer money home and turn every transfer into a chance to win while making your money go even further.

0: बैक टू बैक दो ब्यूटीफुल गाने हमने शामिल किए. पहला गीता खामोशी फिल्म से, द म्यूजिकल, सलमान खान वाली खामोशी, 1996 में आई थी ये फिल्म. जो गीत मैंने शामिल किया वो बहुत कम सुनाई देता है लेकिन बहुत प्यारा गीत है. एंड दूसरा गीत याराना फिल्म से, राजेश रोशन जी का संगीत, किशोरदा की आवाज़. सो प्रोग्राम का लास्ट एंड फाइनल आवर है, आपका स्वागत है अगर आपने अभी अभी ज्वाइन किया है. वैसे तो बहुत से मेरे साथ ही फर्स्ट आवर से ही मेरे साथ हैं लेकिन कुछ लेट लतीफ़ होते हैं ना मेरे जैसे, जहाँ भी पहुँचते हैं लेट पहुँचते हैं. अपने आप ही अपनी बुराई कर रही है सरिता. राइट, किसी के भी मैंने आज के प्रोग्राम में अभी तक नाम नहीं लिए हैं, पर थैंक यू एवर सो मच इजाज इन चैशम, हरीश रूटा जी, विमल रॉयन जी, गुरुदेव गांजा, रक्षा जी एंड जगतार जी इन वैंकूवर, प्रकाश सुतरवाला इन नॉर्थ होल्ट एंड संध्या भावसर बकायदा इतने सारे मैसेजेस भेजती रही. इंतशाब, थैंक यू, आपने कहा मैं ईद पर यहाँ नहीं थी, ईद मुबारक टू एवरीबडी. हंसा वोरा जी, रानी स्लाव में, हरिवदन भाई, सुभाष परमार जी, उल्लास इन टोरंटो, अर्जुन जी, भरत गंगाराम जी, दिनेश पोपट जी, इरम बीना पारिक जी, थैंक यू आपका भी, एंड सुरेखा जी, और आप कौन हैं, आप, यस आप हैं जयश्री परमार एंड सुभाष परमार जी, फरुख मोहम्मद एंड हाना हासरा, तोची जी, मिसेस शेख, थैंक यू तोशी जी, आप भी सुन रही हैं प्रोग्राम, थैंक यू आपका भी, और आप कौन हैं, यस अनदर मैसेज फ्रॉम राजेश एंड विनी विनोद एंड वरुण जी, सहर जी, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, इसी तरह से सुनते रहे. जसू जी, थैंक यू, और जिनका नाम मैं मिस कर गई उनसे माफ़ी चाहती हूँ. आइए अब ज़रा आगे बढ़ें.
1: SBI UK Money Talk. Send money to India with competitive rates with Yono SBI UK online and via the SBI UK branch.
0: भाई SBI UK के जरिए अगर आप पैसे ट्रांसफ़र करना चाहते हैं तो योर वन पाउंड इन ब्रिटिश स्टर्लिंग कैन गेट यू अप 227 रुपीज़ एंड 5 पैसा टुडे. एंड सेंड मनी टू इंडिया वाया SBI योनो ऐप और ब्रांच बिफोर एंड ऑफ जून एंड बी इन टू विन अ 75 पाउंड्स वाउचर एवरी डे व्हेन यू सेंड ओवर 1000 पाउंड्स. ऑल्सो अ 1 ग्राम गोल्ड कॉइन एवरी वीक विन सेंड ending over 2000 pounds. Terms and conditions apply.
1: UK offers savings products, business banking, buy-to-let mortgages and safe deposit lockers. Visit sbiuk.statebank to locate your nearest branch. T's and C's apply. Get all the latest travel updates for London at Breakfast and Drive.
2: Ye hai Laika Gold, 10:35 AM.
3: You're listening to Bali Brahmat in Gold Afternoons. Gold Afternoons. Proudly sponsored by Gemin Foods. Quality, taste and tradition in every pack. Find your favorites at Asian shops near you.
4: Selling your van can be super simple if you choose We Buy Any Van. They're on average 11 minutes away, so you can get it all sorted in under an hour. If only they could make keeping your van clean simpler. And spotless.
5: Oh, for crying out loud.
4: We Buy Any Van, selling made simple. To get a quote in 30 seconds, enter your reg number now at webuyanyvan.com.
6: Now, make your money grow with ICICI Bank UK. Earn up to 4.60% on non-withdrawable fixed deposits.
7: Choose 1 to 3 year tenures and tap to open instantly in-app. Quick, simple and secure. Plus, explore savings accounts, bonds and more. All at your fingertips. Start saving today with ICICI Bank UK. ICICI Bank UK PLC is authorized by PRA and regulated by the FCA and PRA. TNCs apply.
8: Discover Portugal with a Lisbon and Madeira Twin Centre Escape. Fly from the UK, enjoy 3-night stays with breakfasts, connecting flight and more. Prices start from just £599 per person. For great deals on cruise and holidays, visit www.skylordcruiseandholidays.com or call 0192 388 3100. Atoll protected.
9: Location, location, location.
10: In real estate, location is everything. And this one is a winner.
9: Introducing Greens by Daniel, a premium collection of townhouses and villas
10: located in Dubai in a prime location for high appreciation.
9: Step inside and walk into fully furnished townhouses and villas with premium Italian furnishings.
10: Step outside and enjoy 50 plus amenities inside the master community.
9: And the best part, townhouses and villas, Greens start from just £711,000.
10: To book, call our London office on 020-3963-5757. Greens by Daniel. Prime location,
9: high appreciation
10: in Dubai.
11: Herald, new world of eco-friendly disposables for restaurants, cafes, caterers, food takeaways and food delivery services. Order your free 2025 catalogue today. Call on 0208-507-7900 or download the catalogue from heraldpackaging.com. Herald is a manufacturer of high-quality, eco-friendly and cost-effective disposables for restaurants, cafes, caterers, food takeaway and delivery businesses. Herald disposables available at food services, cash and carries and with disposable supplies to trade. Visit heraldpackaging.com.
12: The voice that touches every soul. Star Express presents Hariharan's Soul India.
13: Live in London. Experience an unforgettable evening with the legendary Hariharan.
12: Saturday, 4th July at the Royal Festival Hall. For bookings, visit southbankcentre.co.uk.
13: Exclusive radio partner, Leica Radio Network.
14: Be part of a historic grand opening.
13: Experience the newly inaugurated BAPS Swaminarayan Mandir in Paris. A once-in-a-lifetime spiritual journey.
14: Travel with your family and witness this divine occasion along with the Eiffel Tower, Seine River Cruise and a Paris City Tour.
13: Departure 5th of September. Call now on 0203-773-6333.
14: Mantra Holidays. What's your travel mantra?
15: Bright Sun Travel is celebrating 40 years of travel and we're giving you the chance to win one of four amazing prizes. You could win a £2,000 holiday voucher, a weekend break for two to Barcelona, a Michelin star dinner for two people, or £400 of Amazon vouchers. Want to enter Bright Sun's 40th anniversary competition? It's easy! Enter before the 30th of June 2026. Just visit brightsun.co.uk/win.
16: From scenic breaks in Scotland, the Lake District, Devon and Cornwall, to classic European journeys across France, Switzerland, Italy and the Netherlands, Star Tours takes care of every detail, including Indian meals on tour. Well planned, comfortable, trusted. That's the Star Tours experience. Call 0208 900 2323 or visit startours.co.uk.
17: Like a Gold, London ka number one Asian retro music station. Ab available hai Greater London mein 10:35 AM par DAB digital radio par. Alexa pe bolo play Like a Gold aur online suno likeagold.com pe.
18: Artist of the Week is brought to you by our new podcast Like a Extra. Stream it now and be a part of the conversation.
0: We hamari is hafte ki artist hain Anuradha Podwal. बहुत से मीठे मीठे गीत और बड़ी ही मीठी आवाज़ अनुराधा पौडवाल और कुमार सानू की आवाज़ों में गाई हुआ ये गीत आपके नाम.

0: आपने भी अपने महबूब के लिए कभी ऐसे गीत गाया, कभी उनकी इस तरह से तारीफ़ की? नहीं की है तो आज कर लीजिएगा। बहुत खूबसूरत गीत था, मीठा मीठा गाना था, उम्मीद करती हूँ आपने पसंद किया। आर्टिस्ट ऑफ द वीक में अनुराधा पौडवाल जी का गाया हुआ गीत, और उसमें दूसरी आवाज़ थी कुमार सानू जी की। ये गाना पिक्चराइज हुआ था पूजा भट्ट एंड आमिर खान पर, दिल है कि मानता नहीं फिल्म से चुना गया था इस गीत को। राइट, आज पंकज कपूर शाहिद कपूर के फादर, ही इज़ ऑल्सो सेलिब्रेटिंग हिज बर्थडे। 29 May 1954 में इनका जन्म हुआ था। ही इज़ डन टेलीविजन एंड फिल्म्स, एंड ही इज़ द रिसिपियंट ऑफ फिल्म फेयर अवार्ड्स एंड 3 times नेशनल फिल्म अवार्ड्स। हिज मोस्ट एक्लेम्ड फिल्म रोल्स इंक्लूड्स इंस्पेक्टर पी के इन राख इन 1989, डॉक्टर दीपांकर रॉय इन एक डॉक्टर की मौत इन 1991, एंड मकबूल इन 2004। एंड लेटर बहुत सारी फिल्मों में इन्होंने पहले भी काम किया है, एंड इनका करमचंद बहुत टीवी सीरियल बहुत फेमस हुआ था। नेशनल फिल्म अवार्ड इन्हें 1989 में राख के लिए मिला था, विच ऑल्सो स्टार्ड आमिर खान एज वेल। सो जिन फिल्मों में इन्होंने काम किया वो बड़ी आउटस्टैंडिंग फिल्म है, पर इन्होंने मेन लाइक लीड रोल में इतनी फिल्मों में काम नहीं किया है। एंड गांधी में थे जब ये अर्ली अभी एंटरी हुए थे इंडस्ट्री में, तो रिचर्ड एटनबरा ने जो फिल्म बनाई थी गांधी, उसमें थे पंकज कपूर। एंड उसके बाद आधारशिला, जाने भी दो यारो, आरोह, मंडी, बहुत सी यादगार इनकी फिल्में हैं। एंड राख में तो इनके काम को बहुत सराहा गया था। तो आज हमारी तरफ से भी इन्हें बहुत बहुत बधाई देते हैं। हैप्पी बर्थडे टू पंकज कपूर।
1: फील गुड ट्रैक ब्रॉट टू यू बाय डेरी वैली,
2: सॉफ्ट एंड टेंडर लाइक ग्रैंडमास वार्म हग। डेरी वैली पनीर इज मेड विद नेचुरल इंग्रेडिएंट्स एंड जीरो प्रिजर्वेटिव्स। विजिट डेरी वैली.net।

0: लेकिन फील गुड ट्रैक brought to you by Dairy Valley.
1: Happy Halwai brings your taste buds oodles of happiness with authentic gulab jamun, rasmalai, motichur laddu and much more. Visit happyhalwai.com.
2: Baby Malrayan ji kehti hain ki aapne bahut acha kiya Pankaj Kapoor ji ko yaad kiya aur gaane sare bahut pasand aa rahe hain. Thank you Sandhya Bhavsar ji, aapka bhi bahut bahut dhanyawad. Aur ab agle geet ki taraf main badh rahi hoon, ye bhi gaana bahut khoobsurat hai. लेकिन उससे पहले ये ज़रा जानकारी आपके साथ शेयर कर लूँ. आफ्टर द ह्यूज सक्सेस ऑफ इट्स हैरो बेस्ड ऑफिस डेन्यू प्रॉपर्टी दुबई इज डिलाइटेड टू अनाउंस द ओपनिंग ऑफ देयर सेकंड लंडन ऑफिस इन नाइट्सब्रिज दिस सैटरडे खुलने वाला है. एंड टीम लाइक अ रेडियो नेटवर्क विल बी ब्रॉडकास्टिंग लाइव फ्रॉम 11 AM अप टिल 2 PM to mark the special occasion. And you can watch out for updates on Laika Radio's Instagram and Facebook pages from the grand opening. Laika
0: Gold. Tasty track of the hour brought to you by Coca Noodles.
2: Another beautiful song. Rafi Saab ki awaaz. Film ka naam tha Aao Pyar Kare. इरादा तो अच्छा है ना. 1964 की फिल्म.

0: What a beautiful song. मुझे बहुत पसंद है ये गाना. बिन बादल बरसात से चुना था इस गीत को. और अब घड़ी की सुइयां ये बता रही हैं कि सरिता बोलना बंद. यस, और वैसे ड्राइव टाइम शो लेकर आते हैं सैंडी शाह, लेकिन आज वो नहीं है. तो वीर विल बी सिटिंग इन फॉर सैंडी शाह. उनका आप साथ देंगे टिल 7 o'clock. 7 बजे आएंगी अश्विनी हेयर. एंड दूसरी तरफ लाइका रेडियो पर राजबदन का आप साथ देंगे. मुझे इजाज़त देंगे, मैं कल मिलूँगी 4 बजे की खबरों के बाद. बाय बाय, टेक केयर, हैव ए सुपर्ब वीकेंड. वैसे मैं कल मिल रही हूँ.
1: Bali Brumbat on Gold Afternoons.
2: Like a gold.
3: Gold Afternoons with Bali Brumbat. Bali Brumbat is proudly sponsored by Jaimin Foods, your trusted name for dal bhat, pav bhaji, biryani and so much more. Available now at your nearest Asian shops. Jaimin Foods, the authentic taste of India.

0: की नजर,
1: जहाँ जिंदगी वहाँ सार्थक। माइक्रोवेव फूड कंटेनर्स।
2: Location, location, location.
3: In real estate, location is everything. And this one is a winner.
2: Introducing Greens by Daniel, a premium collection of townhouses and villas.
3: Located in Dubai, in a prime location for high appreciation.
2: Step inside and walk into fully furnished townhouses and villas with premium Italian furnishings.
3: Step outside and enjoy 50 plus amenities inside the master community.
2: And the best part, townhouses and villas, Greens start from just £711,000.
3: To book, call our London office on 02039635757. Greens by Danube. Prime location.
2: High appreciation.
3: In Dubai.
4: भारत या पाकिस्तान जाने की सोच रहे हैं तो एयर टिकट साउथ हॉल ट्रेवल से खरीदिए।
5: मगर साउथ हॉल ट्रेवल से ही क्यों?
4: क्योंकि उनसे ज्यादा सस्ती टिकटें कहीं नहीं मिलेंगी।
5: गारंटेड।
4: बुकिंग करवाएं और उसके बाद 24 घंटों के भीतर कहीं से भी सस्ती ला के दिखाएं तो ये फुल रिफंड या प्राइस डिफरेंस वापस कर देंगे। साउथ हॉल ट्रेवल।
5: फोन 02085748410।
4: 24 घंटे किसी भी वक्त फोन करें 02085748410। एट ऑल प्रोटेक्टेड।
6: CTV and C5 proudly present Hamare Ram, produced by Felicity Theatre. India aur Dubai mein houseful shows ke baad, ab pehli baar London mein. Dekhiye Ashutosh Rana ko as Ravan aur Rahul R. Bhuchar ko Prabhu Shri Ram ke roop mein. Ramayan ki undiscovered stories live on stage. 9 se 12 July, Eventim Apollo, Hammersmith. Hamare Ram. Book your tickets now. Visit www.eventimapollo.co.uk. Exclusive radio partner, like our Radio.
7: वेडिंग सेलिब्रेशंस, कॉर्पोरेट इवेंट्स, रागसन सब कुछ एफिशिएंटली हैंडल करते हैं। परफेक्ट लोकेशन ढूंढने से लेकर इनक्रेडिबल थीम्स डिजाइन करने तक, वर्ल्ड क्लास कुजीन से हर छोटी बड़ी रिक्वायरमेंट तक मैनेज करते हैं। 30 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस हर इवेंट को खास बनाए। फौरन का फोन मिलाएं 02088390880 और विजिट ragasan.com। लोकेशन, डिजाइन, मैनेजमेंट या केटरिंग, रागासन।
8: यूरोप और यूके के सपने देख रहे हैं तो मंत्रा हॉलीडेज के साथ ट्रेवल कीजिए। दिल की धड़कने बढ़ा देने वाले स्कॉटिश हाइलैंड्स, स्नोडोनिया के अफसानवी लैंडस्केप्स और स्टनिंग कोस्ट ऑफ कॉर्नवॉल को एक्सप्लोर कीजिए। आपका सफर होगा मैजेस्टिक स्विस एल्प्स से लेकर रोमांटिक पेरिस और टाइमलेस ब्यूटी ऑफ इटली के थ्रू।
9: विजिट mantraholidays.co.uk और कॉल 02037736333 नाउ। एप्टा बॉन्डेड। मंत्रा हॉलीडेज, व्हाट्स योर ट्रैवल मंत्रा।
10: Transfer money home and turn every transfer into a chance to win while making your money go even further with SBI UK.
11: Transfer £1,000 or more in a day to enter our daily draw for a £75 voucher.
10: Transfer £2,000 or more in a week to enter our weekly draw for a 1 gram gold coin.
11: Transfer now using the Yono SBI UK app, online banking, or simply visit your nearest branch.
10: And that's not all. Enjoy zero transfer fees and competitive exchange rates.
11: More value, more rewards, more reasons to choose SBI UK.
10: Offer valid from the 4th of May to the 30th of June 2026. Entries open to UK residents 18 plus. No entry fee and purchase required. Terms and conditions apply. Visit sbiuk.statebank for details. SBI UK Limited is authorized by the PRA and regulated by the FCNPRA.
12: London, good news! Aapka favorite iTech ab TRS Cash and Carry South Hall mein. Huge variety of products including fresh vegetables and fruits with better prices. Perfect for retailers, traders, takeaways and caterers. iTech is open 24/7 with free parking. For iTech at Unit 123 South Bridgeway, South Hall, UB2 4AX. Once you visit, you come again and again.
13: चाय ब्रेक हो या बिजी वर्क डे, सबको चाहिए एक परफेक्ट कप ऑफ चाय।
14: और अब रॉयल चाय लाए हैं स्मार्ट सॉल्यूशन फॉर योर बिजनेस।
13: गेट अ रॉयल चाय वेंडिंग मशीन फ्री, परफेक्ट फॉर कैफेज, रेस्टोरेंट्स, ऑफिसेज, शॉप्स, पेट्रोल स्टेशंस और कम्युनिटी स्पेसेस।
14: रिच ऑथेंटिक टेस्ट एवरी सिंगल टाइम।
13: रॉयल चाय, ब्रूड फॉर बिजनेस।
14: ईमेल नाउ info@royalchaivending.com. Limited offer. Terms and conditions apply.
15: मीनार ज्वेलर्स, अगर आप सोना बेचना चाहते हैं या वैल्यूएशन करवाना चाहते हैं तो उसकी सही कीमत के लिए तशरीफ ले जाइए मीनार ज्वेलर्स पर 181 अपर टूटिंग रोड या विजिट कीजिए minarjewelers.com। कॉल 02087677627।
16: स्टेप इनटू द न्यू ग्रैंड शोरूम ऑफ काजल्स कुचोर साउथहॉल
17: एट 159 द ब्रॉडवे साउथहॉल UB1 1LR।
16: फ्रॉम स्टनिंग ब्राइडल वेयर एंड ग्लैमरस पार्टी वेयर टू स्टाइलिश casual outfits for men and women,
17: plus beautiful jewelry and accessories. Find everything under one roof. Kajal's Couture, now open 7 days a week.
16: Kajal's Couture, Southall. Style, elegance and occasion wear, all in one destination.
0: Star Trek of the Hour, sponsored by Star Tours. 28 साल का भरोसा, हर साल हजारों happy travelers, इसलिए families के लिए Star Tours experience अलग होता है. Visit startours.co.uk.
18: Hey, this is Sandy Shah. Drive you home every Monday to Friday between 4 and 7 p.m. with the best tunes, mind games, and a bit of Ye Yavo. Only Like a Gold.

0: Experienced tour operators for air, coach and cruise holidays. So now, whenever you plan for a holiday, plan with Serene Holidays.
1: Call Deepthi Pandya today.
0: 0116-266-2481. For more information, log on to sereneholidays.co.uk.
1: वीजा प्रॉब्लम इंतजार मत करें, हर डिले आपको महंगा पड़ सकता है. कैंटन सॉलिसिटर्स लंदन, असाइलम केसेस, अपील्स, स्किल्ड वर्कर वीजा, स्पॉन्सरशिप लाइसेंस और रिफ्यूजल पर फास्ट काम करते हैं. अभी कॉल करें 0208-907-2444.
2: लंदन, गुड न्यूज, आपका फेवरेट आईटेक अब TRS कैश एंड कैरी साउथ हॉल में. ह्यूज वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स इंक्लूडिंग फ्रेश वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स विद बेटर प्राइसेस, परफेक्ट फॉर रिटेलर्स, ट्रेडर्स, टेकअवेज एंड केटरर्स. आईटेक इज ओपन 24/7 विद फ्री पार्किंग. आईटेक एट यूनिट 123 साउथ ब्रिजवे, साउथ हॉल, UB24AX. वंस यू विजिट, यू कम अगेन एंड अगेन.
3: Bright Sun Travel is celebrating 40 years of travel, and we're giving you the chance to win one of four amazing prizes. You could win a £2,000 holiday voucher, a weekend break for two to Barcelona, a Michelin star dinner for two people, or £400 of Amazon vouchers. Want to enter Bright Sun's 40th anniversary competition? It's easy. Enter before the 30th of June 2026. Just visit brightsun.co.uk/win.
4: Like a Gold, London का number one Asian retro music station, अब available है Greater London में 10:35 AM पर DAB Digital Radio पर. Alexa पे बोलो play Like a Gold और online सुनो likeagold.com पे. Feel good track. Brought to you by Dairy Valley.
5: Soft and tender, like grandma's warm hug. Dairy Valley Paneer is made with natural ingredients and zero preservatives. Visit dairyvalley.net.

इशारों इशारों में हाय, शर्मिला टैगोर इतनी प्यारी लग रही थी इन दिस मूवी, शी वाज एक्चुअली लुकिंग लाइक कश्मीर की कली इन द वोकल्स ऑफ रफी साहब एंड आशा भोसले फ्रॉम द मूवी कश्मीर की कली. वन मोर पंजाबी ट्रैक दिस आवर एंड आई विल बी विद यू नेक्स्ट आवर, सो स्टे ट्यून्ड ऑन लाइक अ गोल्ड.

0: भाई जिन्होंने अभी अभी ट्यून इन किया है, आप सभी सुन रहे हैं लाइका गोल्ड रेडियो लंदन में एंड लाइका रेडियो इन ग्रेटर मैनचेस्टर। दिस इज द इवनिंग शो विद अश्विनी। कैसे हैं आप सब? बढ़िया है ना? होंगे ही। आय हाय, इतने ज़बरदस्त दो गाने हमने सुना दिए। हमने इस प्रोग्राम का आगाज़ ही दो फैंटास्टिक ट्रैक्स से किया है और 90s के बच्चे जो हैं हमारे बेहद खुश हुए हैं ना 90s वाले। पहला अलका याग्निक की आवाज़ में तू शायर है फ्रॉम साजन एंड दैट वाज जुम्मा जुम्मा। ओ माय गॉड, व्हाट अ कंट्रोवर्शियल सॉन्ग इट वाज। और मैं जब भी ये गाना रेडियो पे प्ले करती हूँ ना, मुझे उस समय की कंट्रोवर्सी याद आ जाती है। आज आरजे अश्विनी बन जाती है डीजे अश्विनी। तो खाना खा लिया सबने? रेडी? कैलोरीज बर्न करनी है सबको, है ना? ओके, अटेंडेंस रजिस्टर खुल चुका है। सारे के सारे हमारे प्यारे प्यारे लिसनर्स आ रहे हैं, अपना नाम दर्ज करवा रहे हैं और बता रहे हैं कि हम आपके साथ हैं इस शो में। ओके जी, हमेशा की तरह एक असाइनमेंट होगा। अच्छा, आज की असाइनमेंट बिल्कुल ऑनेस्टली सबको करनी है, नो चीटिंग अलाउड। अच्छा, हम जब छोटे थे, जब मैं छोटा बच्चा था, बड़ी शरारत करता था, मेरी चोरी पकड़ी जाती। मैं आज कमर्शियल्स के बारे में बात नहीं करने वाली हूँ, मैं बात करने वाली हूँ डांस के बारे में। फ्राइडे है ना, फैंटास्टिक फ्राइडे, तो हम ऐसे ही मनाते हैं डांस मस्ती करके। तो जब भी हम सब छोटे छोटे बच्चे थे और बचपन में कोई ना कोई एक हमारा फैंटास्टिक ट्रैक होता था जिस पे हम अमेजिंग डांस करते थे, वो मेलोडियस होता था, म्यूजिकल होता था, जो भी है जिसके पीछे रीज़न। विथ मी, आई ऑलवेज लव डांसिंग। ओके, मतलब फुल ऑन नौटंकी बॉलीवुड डांसिंग मुझे अच्छा लगता है। तो मेरे मौसा जी जो हैं, आई डोंट नो समहाउ आई वाज लाइक 4 or 5 years एज एंड रेडियो पे एक बार ये गाना चल रहा था महमूद का, ताने दिन तंदाना तंदाना तंदाना, एंड आई स्टार्टेड डांसिंग। आई यूज टू बी अ टॉम बॉय बचपन में, तो बस तब से मेरे नाम से वो ताने दिन तंदाना शुरू हो गया। सो दैट वॉज द ट्राई कि हमेशा कोई भी सब, मतलब फैमिली गैदरिंग है, कुछ भी है, तो होता है ना घर के छोटे बच्चे हैं जो ज़रा उत्साहित बच्चे होते हैं, आओ बच्चा आओ जरा डांस करके बताओ सब, है ना, देखो हमारे बच्चे कितने इन्जॉय करते हैं। सो फॉर मी इट वॉज ताने दिन तंदाना। ओके, आपके लिए वो कौन सा गाना था? हर एक बच्चा, लड़का लड़की कोई भी हो, हर कोई एक गाना तो पसंद करता है और डांस करता है उस पर, नहीं तो कोई पोयम होगी, जो भी है सब मुझे लिख के बताओ। व्हाट्सएप नंबर आपको पता है।
1: SBI UK Money Talk. Send money to India with competitive rates with Yono SBI UK online and via the SBI UK branch.
0: Your £1 in British sterling could get you up to 127 Indian rupees. Send money to India via SBI Yono app or branch before end of June and be in to win £75 voucher every day when you send over £1,000. Also, 1 gram gold coin every week when you're sending over £2,000. Terms and conditions apply.
1: State Bank of India UK offers savings products, business banking, buy-to-let mortgages and safe deposit lockers. Visit sbiuk.statebank to locate your nearest branch. T's and C's apply. This is Ashwini, in for Anisa Nazir, on The Evening Show.
2: This Eid al-Azha, share the joy no matter the distance. Whether you're near or far, sending support is just a tap away. Send money with Western Union. Enjoy zero transfer fees on your first online transfer to bank accounts or mobile wallets. Prefer to send money in person. Western Union is also available at participating post offices, Euro Change and other retail partner locations. Download our app today or visit westernunion.com. This Eid, send more than money. Send joy. Western Union makes money from currency exchange.
3: Location, location, location.
4: In real estate, location is everything. And this one is a winner.
5: Introducing Greens by Danio, a premium collection of townhouses and villas
4: located in Dubai in a prime location for high appreciation.
5: Step inside and walk into fully furnished townhouses and villas with premium Italian furnishings.
4: Step outside and enjoy 50+ amenities inside the master community.
5: And the best part, townhouses and villas, Greens start from just £711,000.
4: To book, call our London office on 020-3963-5757. Greens by Danube. Prime location,
5: high appreciation
4: in Dubai.
6: Discover Turkey with a beach and touring escape. Fly from the UK, enjoy 7 nights all-inclusive beach stay, then experience a 3-day escorted tour in Cappadocia. Prices lead in from just £1,199 per person. For Turkey holidays with a difference, visit Skylord Cruise and Holidays.com or call 019-238-83100. Atoll protected.
1: herald new world of eco-friendly disposables for restaurants, cafes, caterers, food takeaways and food delivery services. Order your free 2025 catalogue today. Call on 0208 507 7900 or download the catalogue from heraldpackaging.com. Herald is a manufacturer of high-quality, eco-friendly and cost-effective disposables for restaurants, cafes, caterers, food takeaway and delivery businesses. Herald disposables available at food services, cash and carries and with disposable supplies to trade. Visit heraldpackaging.com.
7: CTV and C5 proudly present Hamari Ram, produced by Felicity Theatre. India aur Dubai mein houseful shows ke baad, ab pehli baar London mein. Dekhiye Ashutosh Rana ko as Ravan aur Rahul R. Bhuchar ko Prabhu Shri Ram ke roop mein. Ramayan ki undiscovered stories live on stage. 9 se 12 July, Eventim Apollo, Hammersmith. Hamari Ram. Book your tickets now. Visit www.eventimapollo.co.uk. Exclusive radio partner, Like Our Radio. You.
8: Transfer money home and turn every transfer into a chance to win while making your money go even further with SBI UK.
9: Transfer £1,000 or more in a day to enter our daily draw for a £75 voucher.
8: Transfer £2,000 or more in a week to enter our weekly draw for a 1 gram gold coin.
9: Transfer now using the Yono SBI UK app, online banking or simply visit your nearest branch.
8: And that's not all. Enjoy zero transfer fees and competitive exchange rates.
9: More value, more rewards, more reasons to choose SBI UK.
8: Offer valid from the 4th of May to the 30th of June 2026. Entries open to UK residents 18 plus. No entry fee and purchase required. Terms and conditions apply. Visit sbiuk.statebank for details. SBI UK Limited is authorised by the PRA and regulated by the FCMPRA.
10: London में एक महान धार्मिक अवसर Unity in Divinity presents महासोम यज्ञ 14th से 21st June Woodlane Stanmore के Temple Grounds पर free entry सपरिवार अवश्य पधारिए. रोज सुबह 10 से 3 बजे तक यज्ञ और 4 से 7 बजे तक मनोरथ followed by महाप्रसाद. आप participate करना चाहते हैं, volunteer बनना चाहते हैं या यज्ञ सेवा लेना चाहते हैं तो आज ही रजिस्टर करें. वेन्यू टेम्पल ग्राउंड्स वुडलेन स्टैनमोर HA74LF. फॉर मोर डिटेल्स somyagna.com. कॉल 07932623852.
11: Bright Sun Travel is celebrating 40 years of travel and we're giving you the chance to win one of four amazing prizes. You could win a £2,000 holiday voucher, a weekend break for two to Barcelona, a Michelin star dinner for two people, or £400 of Amazon vouchers. Want to enter Bright Sun's 40th anniversary competition? It's easy! Enter before the 30th of June 2026. Just visit brightsun.co.uk/win.
7: Like a Gold, London का number one Asian retro music station, अब available है Greater London में 10:35 AM पर DAB Digital Radio पर. Alexa पे बोलो play Like a Gold और online सुनो likeagold.com पे. Feel good track brought to you by Dairy Valley.
12: Soft and tender, like grandma's warm hug, Dairy Valley Paneer is made with natural ingredients and zero preservatives. Visit dairyvalley.net.

0: Feel Good Track, brought to you by Derry Valley.
1: Happy Halwai brings your taste buds oodles of happiness with authentic gulab jamun, rasmalai, moti chur laddu and much more. Visit happyhalwai.com.
2: एक बार मिला लेते हैं, घर यहाँ देखते हैं टाइम कितना हुआ है। इट्स 27 मिनट्स पास्ट 7, 7:27। आप सभी ने ट्यून इन किया है द इवनिंग शो विद अश्विनी। डांस मस्ती भी हो रही है, गपशप, तो सभी सुना रहे हैं अपने अपने अनुभव, बचपन के अनुभव। अब कोई कह रहा है ए मेरी जोहर जबी, दैट वॉज द सॉन्ग जिस पर मैं परफॉर्म करती थी। किसी ने कहा भाई आई एम फ्रॉम केनिया, तो हम लोग तो वहाँ पर गुजराती डांस किया करते थे। किसी ने कहा शोले फिल्म का जो गाना, ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे, ये मैं और मेरा फ्रेंड हम मिलके परफॉर्म किया करते थे। अब बचपन में हम सभी एक्चुअली इतने इनोसेंट होते हैं कि हमें ये भी नहीं कॉन्शियस नहीं होते इतने कि आसपास कौन है, ये क्या कमेंट करेंगे, कैसे करेंगे। नहीं, हम उस इनोसेंस के साथ, उस सिंप्लिसिटी के साथ में डांस मस्ती करते रहते हैं। जब लोग सीटियाँ बजाते हैं, तालियाँ बजाते हैं, तो और उत्साह आता है ना एज किड्स कि आई एम गेटिंग अप्रिशिएटेड। एंड आई थिंक दैट्स द बेसिक नीड ऑफ ह्यूमंस की अप्रिसिएशन, है ना। तो तारीफ अलग बात है, लेकिन तहे दिल से जेन्यूनली किसी को कहना कि वाह वाह यार क्या बात है, कितना बढ़िया परफॉर्म किया। किसी भी आर्टिस्ट के लिए जो तालियां होती हैं ना, जब भी आप किसी प्रोग्राम पे जाए, किसी भी कल्चरल प्रोग्राम पे जाए, किसी भी ऐसे प्रोग्राम पे जाए, इवेंट पे जाए जहां कोई आर्टिस्ट परफॉर्म कर रहा है, तो भाई हम आर्टिस्ट लोगों के लिए ना, आप लोगों की जो तालियां होती ना, वो सबसे बड़ी शाबाशी, आशीर्वाद और पेमेंट होता है। तो जब किसी आर्टिस्ट को मिल जाती वो ताली, चाहे बच्चा हो चाहे बड़ा हो, तो बहुत मज़ा आ जाता है। बिल्कुल, आप लोग अपने अनुभव शेयर करते चलिए। नेक्स्ट ट्रैक जो मैं आपको सुनाने वाली हूँ, लता मंगेशकर और मन्ना डे की आवाज़ में, बड़ा ही खूबसूरत ट्रैक है। आज तो फ्राइडे है, आवाज़ बिल्कुल वॉल्यूम बढ़ाना है, बढ़ा के रखिए। दिस इज बहारों के सपने से, चुनरी संभाल गोरी, टटक टटक। आहा,
3: ये है लाइका गोल्ड, 10:35 AM
0: द इवनिंग शो विद अश्विनी।

0: After the huge success of its Harrow-based office, Danube Properties Dubai is delighted to announce the opening of their second London office in Knightsbridge this Saturday. Team Leica Radio Network will be broadcasting live from 11 a.m. up to 2 p.m. to mark the special occasion. Watch out for updates on Leica Radio's Instagram and Facebook pages from the grand opening. आज का फ्राइडे का जो प्रॉमिस है वो जारी रहेगा आप सबके लिए मस्ती मजा गपशप इंटरेक्शन. सो बात करेंगे एक ऐसी महिला के बारे में जिसने अपनी कार स्पीडिंग के लिए बताया एक बड़ा ही अजीब सा रीजन कुछ ही देर में. यादों की बारात, दैट्स द फीचर ऑफ दिस फर्स्ट आवर. समाधी फिल्म से आप सभी के लिए ये गीत.
1: नमस्कार, रवि शर्मा रोज आपकी सेवा में हाजिर होता हूँ. मंडे टू फ्राइडे जुड़िएगा मेरे साथ 10 से 1 बजे के बीच. मंडे टू फ्राइडे मनोरंजन विद रवि शर्मा.

0: Laika Gold. Currency updates are sponsored by LemFi mobile app. Send money to India, Pakistan and Bangladesh swiftly from your phone.
1: For £1, you'll get 127.7 Indian rupee, 374.83 Pakistani rupee, 443.79 Sri Lankan rupee, 165.21 Bangladeshi taka, 84.83 Afghani.
2: Laika Radio.
0: Are you thinking of sending money to India, Pakistan or Bangladesh? Then think LemFi. LemFi's best exchange rate and money transfers. Earn an additional £5 cash back when you use the code LAIKA. Download LemFi now. T's and C's apply.
2: LAIKA
0: Gold Rate. Brought to you by Pooja Sweets and Savories. PoojaSweets.com. Or visit us in Tooting, Kingsbury and Cardiff.
1: Gold is currently trading at £109.40 per gram.
0: Gold Race was sponsored by Pooja Sweets, one of the best quality vegetarian food suppliers. PoojaSweets.com or visit us at East Ham, Hounslow or Crowley. Ashwini, brightening up your weeknights.
3: India cricket score updates, brought to you by Remitly. Send money fast to India with Remitly's great rates and low fees. Remitly, proud to be the official partner of England cricket.
1: Rajasthan Royals and Gujarat Titans ke beech match hua. Gujarat Titans won by 7 wickets.
3: India cricket score updates were brought to you by Remitly, where more of your money makes it home with competitive rates and low fees. Download the Remitly app today. Remitly UK Limited is authorised and regulated by the FCA.
0: This is Ashwini, in for Anisa Nazir, on The Evening Show.
1: भाई कल शाम में भी आप सबके मैसेजेस थे कि अश्विनी हम लोग अपने अपने गार्डन में बैठे हैं, बैकयार्ड में बैठे हैं और गार्डन में अभी जो हल्की फुल्की ठंडी सी एक ब्रीज आ रही है वो बस हम वो ठंडी ठंडी हवा ले रहे हैं, कुछ ठंडा पी रहे हैं, कुछ ठंडा खा रहे हैं और साथ में आपका शो सुन रहे हैं। क्या बात है, कितना मस्त, एकदम बढ़िया कॉम्बिनेशन ना। तो ये कॉम्बिनेशन ऐसे ही जारी रखिए। और साथ में ज़रा बता दूँ आपको उस महिला के बारे में जिसके बारे में बात करी थी। तो रोमानिया में एक लेडी जो है बड़ी स्पीड में अपनी गाड़ी चला रही थी, मतलब जो लिमिट है उसके ऊपर। अब पुलिस उनके पीछे पड़ गई, पता नहीं क्या ही इमरजेंसी होगी, क्या ही इमरजेंसी होगी, पुलिस उनके पीछे वो चल रहा है, मतलब रास्ते में भाग दौड़ दोनों की। फाइनली पुलिस वर एबल टू कैच हर एंड लाइक क्या है बहन, काहे इतना गाड़ी मतलब जोर से चला रही हो। अब कैन यू इमेजिन दीदी ने क्या आंसर दिया होगा। दीदी ने कहा कि मैं ओवन में केक बेक करने के लिए रख के आई हूँ, टेम्परेचर ज़्यादा हो जाएगा, मेरा केक जल जाएगा, मुझे जल्दी टाइम में घर पे पहुँचना चाहिए। अच्छा, एक हिसाब से केक जल के और कुछ हो जाती चीज़ें तो बात अलग, मतलब वो भी एक पॉसिबिलिटी हो सकती है। बट पुलिस वो हक्का बक्का कि भाई तुम फिर केक मतलब घर में लगा के क्यों गाड़ी लेके बाहर निकली। अब उस पर काफ़ी तामझाम रहा, बट यू नो सोशल मीडिया में आजकल मीम्स जिस तरीके से बनते हैं हमारे यहाँ पे, बड़ी क्रिएटिविटी है लोगों में और वो क्रिएटिविटी देखने में, पढ़ने में, सुनने में बड़ा ही मज़ा आता है ना। मुझे सच में ये रील्स ना, अगर आप फनी रील्स देख रहे हो तो सच में फनी है, इन्फॉर्मेटिव देख रहे हो तो इन्फॉर्मेशन वाली है और भगवान के बारे में देख रहे हैं तो फिर क्या, बस पीस ही पीस है। लेकिन मेरे तो मैक्सिमम आई लव टू वॉच रील्स ऑफ एनिमल्स एंड जो छोटे बच्चे होते हैं ना, मासूम से जो क्रॉल करते हैं वहाँ तक की एज के, उसके बाद धीरे धीरे इनोसेंस फिर बच्चों का गायब होने लगता है। अभी इस आवर का आखिरी ट्रैक सुना रही हूँ आपको मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में, दैट इज़ धर्मवीर से ओ मेरी महबूबा, वॉल्यूम अप रखिएगा। दिस इज़ द इवनिंग शो विद अश्विनी। फर्स्ट आवर तो हमारा ख़त्म हो रहा है, दो और आवर बाकी हैं, फुल ऑन मस्ती चलेगी। फैंटास्टिक फ्राइडे भाई, फैंटास्टिक फ्राइडे के लिए कौन सा गाना लेके आई हूँ बताऊँगी, सुनाऊँगी, अपने आंसर्स देते चलिए। मैंने आप सबसे पूछा है कि बचपन में कौन सा आप डांस आपका फेवरेट था जो आप परफॉर्म करते, तो कई लोगों ने कहा कि हम गाना गाते थे, जो भी यार एक्टिविटी थी जरूर हमें बताइए।
4: Search is changing.
5: Customers aren't just using Google anymore.
4: They're asking AI.
5: And AI doesn't show 10 websites. It recommends one answer.
4: One business, one recommendation.
5: So, when someone asks AI, who's the best company for this?
4: Will your business be the answer?
5: Or the one that got left behind?
4: The future of search has already started.
5: Have you? Visit HartyHanks.com and make sure AI recommends you.
4: Harty Hanks, the digital agency that doesn't play safe.
6: भारत गुजरात या पाकिस्तान जाने की सोच रहे हैं तो एयर टिकट साउथ हॉल ट्रेवल से खरीदिए।
7: मगर साउथ हॉल ट्रेवल से ही क्यों?
6: क्योंकि उनसे ज्यादा सस्ती टिकटें कहीं नहीं मिलेंगी।
7: गारंटेड।
6: बुकिंग करवाएं और उसके बाद 24 घंटों के भीतर कहीं से भी सस्ती ला के दिखाएं तो ये फुल रिफंड या प्राइस डिफरेंस वापस कर देंगे। साउथ हॉल ट्रेवल,
7: फोन 02085748410।
6: 24 घंटे किसी भी वक्त फोन करें 02085748410। एट ऑल प्रोटेक्टेड।
8: रामकृष्ण हरि, यूके, फील द पावर ऑफ महाराष्ट्र। दिस 6th जून एक्सपीरियंस वाद्य महोत्सव 2026 लाइव एट रॉयल विंडसर रेस कोर्स SL4 5JJ। 100 ढोल, 80 ताशा, परंपरा, संस्कृति और फुल ऑन जोश का मेगा सेलिब्रेशन। भारत से यूके तक एक ही रिदम, एक ही प्राइड। टिकट्स लाइव नाउ एट svrtuk.org। लाइका लिसनर्स गेट एक्सक्लूसिव डिस्काउंट, यूज कोड LAIKA10। वाद्य महोत्सव 2026, फील द बीट, लिव द लेगेसी।
4: The voice that turned love, heartbreak and memories into timeless songs. Pepe's presents
5: Atif Aslam live in the UK.
4: Atif Aslam brings his unforgettable sound to the O2 London on Sunday the 14th of June.
5: Book your tickets now at AXS.
4: Presented by Denby Productions, supported by Rianne's Music.
5: Exclusive radio partner, Leica Radio.
9: Transfer money home and turn every transfer into a chance to win while making your money go even further with SBI UK.
10: Transfer £1,000 or more in a day to enter our daily draw for a £75 voucher.
9: Transfer £2,000 or more in a week to enter our weekly draw for a 1 gram gold coin.
10: Transfer now using the Yono SBI UK app, online banking, or simply visit your nearest branch.
9: And that's not all. Enjoy zero transfer fees and competitive exchange rates.
10: More value, more rewards, more reasons to choose SBI UK.
9: Offer valid from the 4th of May to the 30th of June 2026. Entries open to UK residents 18 plus. No entry fee and purchase required. Terms and conditions apply. Visit sbiuk.statebank for details. SBI UK Limited is authorized by the PRA and regulated by the FCMPRA.
11: इस महीने मेरा बॉयलर लेकर आया है प्री बुकिंग सेल का शानदार मौका। अब सभी बॉश बॉयलर्स पर सीधे £350 की बचत। 25 किलोवाट बॉयलर सिर्फ £1,890 से पूरी तरह फिटेड। और हाँ, मिलेगी आपको 7 साल की बॉश गारंटी। तो इंतजार मत कीजिए, अभी कॉल करें 02081502025 और विजिट meraboiler.com। टीज एंड सीज अप्लाई।
12: लंदन, गुड न्यूज, आपका फेवरेट आईटेक अब TRS कैश एंड कैरी साउथ हॉल में। ह्यूज of products including fresh vegetables and fruits with better prices, perfect for retailers, traders, takeaways and caterers. iTech is open 24/7 with free parking. Full iTech at unit 123 South Bridge Way, South Hall, UB24AX. Once you visit, you come again and again.
13: This Eid ul Azha, I stay close to what matters with Remitly, like sending a little something towards Ami's famous biryani, where there's always room for seconds. Remitly, one easy app to send money home. Remitly UK Limited is authorized and regulated by the FCA.
14: So, your decaf, oat milk, extra but not piping hot, 4 pumps of caramel, no sugar, small latte in a large cup. That will be 10 minutes.
15: No worries, I'm having fun on Play Ojo.
16: Keep it fun with PlayOjo's safer gambling tools, including take a break and time checks to keep track of your play.
14: Here's your decaf, oat milk, extra but not piping hot.
15: Thanks. Playtime's over. Lovely.
17: Feel the fun. PlayOjo.
18: 18 plus, gamble aware.
19: The Evening Show with Ashwini.
3: Tune in to Leica Gold, London's number one Asian retro station on the Leica Radio mobile app.

0: The US and Iranian negotiators have reached agreement on a 60-day truce. A child's among three people who've died after falling from a flat in South London. Their deaths are being treated as unexpected. And Arsenal boss Mikel Arteta believes his side has what it takes to take home the Champions League trophy tomorrow. The Premier League title winners take on holders Paris Saint-Germain. From Sky News, I'm Tanya Snuggs.
1: This is Leica Radio Network, officially London's number one Asian commercial radio group. Weather is brought to you by Southall Travel, taking you to the best destinations in the world.
2: आज रात टिमटिम सितारे दिखेंगे, हल्की फुल्की हवा रहेगी, 14 डिग्रीज टेम्परेचर लंदन में है। कल लंदन में 28 डिग्री मैक्सिमम, 14 मिनिमम, सनी डे होगा। मैनचेस्टर में आज रात टिमटिम सितारे दिखेंगे, वहाँ पे भी हल्की फुल्की ठंडी हवा रहेगी, लो टेम्परेचर ऑफ 10 डिग्रीज। टुमारो 24 मैक्सिमम, मिनिमम 12, सनी डे।
1: For special rates to India, Pakistan, Dubai, Maldives, Thailand, USA, Canada, Africa, Australia and New Zealand, call Southall Travel 24 hours a day, 7 days a week on 0208 574 8410. Ashwini.
2: ओहो जी क्या बात, सेकेंड आवर में आपकी हमारी एंट्री, फैंटास्टिक फ्राइडे में आ जाइए। अब सेकेंड आवर में और हमारी मस्ती शुरू होगी, वॉल्यूम अप रखिएगा क्योंकि आरजे अश्विनी बन गई है डीजे अश्विनी। दिस इज द इवनिंग शो विद अश्विनी।
3: Leica
1: Gold. Let's return to the biggest hits back to back. Sponsored by TravelHubWorld.com. For the best service and unbeatable prices, visit TravelHubWorld.com. TravelHubWorld.com.
4: हमसे सस्ता कहीं नहीं मिल सकता.
5: Travel Hub.
4: At all protected.
1: Leica. Ashwini in for Anisa Nasir.

0: Mocha Radio Network.
1: वेलकम, दिस इज द सेकेंड आवर द इवनिंग शो विद अश्विनी. चूड़ी बजी है, हाय हाय. मैंने तो ये गाना ना, मुझे पता नहीं क्यों बड़ा ही अच्छा लगता है. यस बॉस, या मतलब मैं 90s वाली बच्ची हूँ, तो 90s के जो गीत आते हैं तो अरे हम तो अपनी यादों में झूमने लगते हैं बाबा. उदित नारायण अलका याग्निक की आवाज़ में यस बॉस से पहला गीत, दूसरा था आशा भोसले किशोर कुमार की आवाज़ में सीता और गीता इस फिल्म से ये गीत. इसमें जिस तरीके से वो स्केटिंग करते हैं ना, बड़ा मज़ा आ जाता है. एक्चुअली संजीव कुमार की तरफ देख के वो स्केटिंग कर सकते हैं क्या, ये प्रश्न मैं जब छोटी थी तब मुझे पड़ता था उनकी तरफ देख के कि क्या सचमुच इनको स्केटिंग आती होगी. एनीवेज, तो अब धीरे धीरे इस सेकेंड आवर की जर्नी आप और हम करेंगे साथ में. कुछ गुड न्यूज़ अराउंड द वर्ल्ड जो चलती है वो सेगमेंट में आपको सुनाने वाली, कुछ अच्छी अच्छी प्यारी प्यारी खबरें. और वॉल्यूम अब रखिएगा क्योंकि अगला गीत ब्रह्मचारी फिल्म से आजकल तेरे मेरे प्यार के चर्चे हैं. आपके हमारे प्यार के चर्चे बहुत खूब सब जगह फैल रहे हैं कि द इवनिंग शो विद अश्विनी आप लोग सब देखते हैं. टीवी वगैरह सब बंद कर दिया, रेडियो के पास में आके बैठ जाते हैं, चाय का कप या ठंडा ठंडा, अभी तो गर्म है तो सारे ठंडे जो पेय है वो लेके बैठ जाते हैं आप सुनने के लिए. क्या बात
0: है. SBI UK Money Talk. Send money to India with competitive rates with Yono SBI UK online and via the SBI UK branch.
1: एक पाउंड के बदले आपको मिलेगा 127 इंडियन रुपीस. और आप इंडिया पैसे भेज सकते हैं वाया SBI योनो ऐप और ब्रांच बिफोर एंड ऑफ जून. और साथ में आप जीत सकते हैं 75 पाउंड्स का वाउचर एवरी डे जब आप भेजते हैं 1000 पाउंड. साथ ही 1 ग्राम का गोल्ड कॉइन भी आप जीत सकते हैं हर सप्ताह जब आप भेजते हैं 2000 पाउंड. टर्म्स एंड कंडीशन अप्लाई.
0: स्टेट बैंक ऑफ इंडिया UK ऑफर्स सेविंग्स प्रोडक्ट्स, बिजनेस बैंकिंग, बाय टू लेट मॉर्गेजेस एंड सेफ डिपॉजिट लॉकर्स. विजिट sbiuk.statebank to locate your nearest branch. T's and C's apply.
2: The Evening Show with Ashwini.

0: Days for London at Breakfast and Drive. This is Ash Winnie, in for Anissa Nazir, on The Evening Show. Step into the new grand showroom of Gardjules Couture, Southall.
1: At 159 The Broadway, Southall, UB1 1LR.
0: From stunning bridal wear and glamorous party wear to stylish casual outfits for men and women.
1: Plus beautiful jewellery and accessories. Find everything under one roof. Gardjules Couture, now open 7 days a week.
0: Gardjules Couture, Southall. Style, elegance and occasion wear, all in one destination.
2: वेडिंग सेलिब्रेशंस, कॉर्पोरेट इवेंट्स, रागसन सब कुछ एफिशिएंटली हैंडल करते हैं। परफेक्ट लोकेशन ढूंढने से लेकर इनक्रेडिबल थीम्स डिजाइन करने तक, वर्ल्ड क्लास कुजीन से हर छोटी बड़ी रिक्वायरमेंट तक मैनेज करते हैं। 30 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस हर इवेंट को खास बनाए। फॉरन का फोन मिलाए 02088390880 और विजिट ragasan.com। लोकेशन, डिजाइन, मैनेजमेंट या केटरिंग, रागासन।
0: हेरल्ड, न्यू वर्ल्ड ऑफ इको friendly disposables for restaurants, cafes, caterers, food takeaways and food delivery services. Order your free 2025 catalogue today. Call on 0208 507 7900 or download the catalogue from heraldpackaging.com. Herald is a manufacturer of high quality, eco-friendly and cost-effective disposables for restaurants, cafes, caterers, food takeaway and delivery businesses. Herald disposables available at food services, cash and carries and with disposable supplies to trade. Visit Herald Packaging.
3: अब लंदन बैठे मिलेगा एशियन एथनिक स्वाद इंस्टेंटली थैंक्स टू जेमिन फूड्स।
4: जस्ट एड हॉट वाटर, वेट फॉर 5 मिनट्स एंड टेस्ट दी एथनिक रेसिपीज लाइक साबुदाना खिचड़ी, शीरा, पोहा, भाजी, वेज बिरयानी, दाल भात आर रेडी टू सर्व ऑन योर प्लेट।
3: जीरो मेस, नो स्ट्रेस, सेम एथनिक टेस्ट विद जेमिन फूड्स।
5: Bright Sun Travel is celebrating 40 years of travel and we're giving you the chance to win one of four amazing prizes. You could win a £2,000 holiday voucher, a weekend break for two to Barcelona, a Michelin star dinner for two people, or £400 of Amazon vouchers. Want to enter Bright Sun's 40th anniversary competition? It's easy! Enter before the 30th of June 2026. Just visit brightsun.co.uk/win.
0: Like a Goon, officially London's number one Asian retro music station. Available in Greater London on 10:35 AM, DAB Digital Radio, Alexa and likeagoon.com. Feel good track. Brought to you by Derry Valley.
1: Soft and tender, like grandma's warm hug, Derry Valley Paneer is made with natural ingredients and zero preservatives. Visit dairyvalley.net.

0: Feel Good Track, brought to you by Derry Valley.
1: Happy Halwai brings your taste buds oodles of happiness with authentic gulab jamun, rasmalai, motichur laddu and much more. Visit happyhalwai.com.
2: क्या बात है। लता मंगेशकर एंड किशोर कुमार की आवाज में अपना देश से सुन चंपा सुन तारा। अब चंपा और तारा ने एक्चुअली बात सुनी या नहीं ये भी एक सवाल है कि चंपा और तारा जो है इनके साथ डांस करने में मगन हो गई जैसे कि डांस करने में मगन हो गई है हमारी संध्या जी। क्या बात है संध्या भावसर जी, आपने इतना बढ़िया परफॉर्मेंस का एक मुझे वीडियो बना के भेजा। आई रियली फील हैप्पी जब आप लोग इक्वली मेरे जितना ही एंजॉय करते हैं। देखो मैं भी ना यहाँ पे बैठे बैठे डांस कर लेती हूँ गानों पे, ठीक है, और उसकी क्लिप्स निकाल के तो वो पोस्ट भी कर देती हूँ। अब वो कहाँ देख सकते हैं, मेरा अपना इंस्टाग्राम है रेडियो वाली अश्विनी, डेफिनेटली उस पर आपको दिखेगा कि मैं स्टूडियो में क्या मज़ा मस्ती करते रहती हूँ प्रेजेंटेशन करते करते। साथ ही हमारा लाइका गोल्ड रेडियो का भी जो इंस्टाग्राम है उस पर भी आपको हमारी मस्ती मज़ा इंटरेक्शन दिखेगा। ओके, इसके साथ साथ हम दूसरा काम भी करेंगे और ये काम ये है कि आपको बताएं कि आफ्टर द ह्यूज सक्सेस ऑफ हैरो बेस्ड ऑफिस डेन्यू प्रॉपर्टीज दुबई इज डिलाइटेड टू अनाउंस द ओपनिंग ऑफ देयर सेकेंड लंडन ऑफिस इन नाइट्सब्रिज दिस सैटरडे यानी कि कल। टीम लाइका रेडियो नेटवर्क विल बी ब्रॉडकास्टिंग लाइव फ्रॉम 11 बजे से लेकर दोपहर 2 बजे तक टू मार्क द स्पेशल ओकेजन। वॉच आउट फॉर अपडेट्स ऑन लाइका रेडियोज इंस्टाग्राम फेसबुक पेजेस फ्रॉम द ग्रैंड ओपनिंग। तो सारी की सारी आपको चीज़ें वहाँ पे जो ओपनिंग में हुई हैं उसके पिक्चर्स उसकी रील्स आप हमारे साथ में हमारे अपने फेसबुक पेज पे और लाइका रेडियो के जो इंस्टाग्राम है वहाँ पे आप ज़रूर देख सकते हैं। ओके, गुड न्यूज़ अराउंड द वर्ल्ड सुनाऊंगी आपको कुछ ही देर में, उसके पहले हो जाए इमोशन ऑफ द डे। फैंटास्टिक फ्राइडे है तो फैंटास्टिक फ्राइडे में थोड़ा छेड़छाड़ वाला गाना हो जाए किशोर कुमार और लता मंगेशकर की आवाज़ में, बड़े दिल वाला। सोचो कौन सा गाना होगा, सोचो कौन रास्ता भूल रहा है, देखो जरा।
0: This is the Leica Radio Network across London, Manchester and the Midlands.
3: Leica Gold.
0: Ashwini in for Anisa Nasir for the evening show.
3: Leica Gold.
0: Emotion of the day.

0: इमोशन ऑफ द डे।
1: मिला लेते हैं घर, यहाँ देखते हैं टाइम कितना हुआ है। इट्स 33 मिनट्स पास्ट 8, 8:33। मैंने कहा था आप सबसे कि मुझे 35 के ऊपर जब गिनती आती है तो थोड़ा सा यहाँ पे मामला जो है गड़बड़ हो जाता है, बट 33 तो बहुत अच्छे से आता है। इट्स 33 मिनट्स पास्ट 8। आप सभी ने ट्यून इन किया है द इवनिंग शो विद अश्विनी। मंडे से लेके फ्राइडे तक आपका मेरा साथ रहता है, शाम 7 से 10 बजे तक। पूरा सप्ताह जो है मेरा तो बहुत ही बढ़िया बीत रहा है आप सबके साथ में। यहाँ पे आके जब धूम धड़ाका मस्ती होती है ना, आहा मज़ा आ जाता है। चलिए गुड न्यूज़, ये तो गुड न्यूज़ है कि हम आप और आप हैं साथ में मंडे से फ्राइडे तक। शाम में आप लोग खाना वाना बनाते हुए, सारे कामकाज करते हुए मुझे सुनते रहते हैं। तो अब ज़रा दुनिया जहां की गुड न्यूज़ के बारे में बात करते हैं। ऑस्ट्रेलिया ऑफर्स अप टू 3 hours ऑफ फ्री डेली इलेक्ट्रिसिटी थ्रू सोलार शेयरिंग। इन केन्या वुमेन आर टर्निंग डिस्कार्डेड प्लास्टिक वेस्ट इनटू अफोर्डेबल व्हीलचेयर्स फॉर डिसेबल्ड चिल्ड्रन। क्या बात है भाई, बहुत बढ़िया। इन न्यूजीलैंड सुपरमार्केट आर नाउ रिक्वायर्ड टू डोनेट अनसोल्ड फूड इंस्टेड ऑफ थ्रोइंग इट अवे। मतलब खाने लायक चीज़ रहे, बस इस चीज़ का वो ध्यान रखेंगे। टोक्यो इंट्रोड्यूस्ड अ 4-day वर्क वीक टू हेल्प पीपल हैव मोर चिल्ड्रन। वहाँ पे तो मतलब बहुत ही ज़्यादा मेहनती लोग हैं, इसलिए उन्हें छुट्टियाँ दी जाती कि जाओ जनसंख्या बढ़ाओ, फैमिली बढ़ाओ। नेक्स्ट ट्रैक, बॉबी के जितने भी दीवाने होंगे, 1973 में यह फिल्म हुई थी रिलीज, लता मंगेशकर और शैलेंद्र सिंह की आवाज़ में। जिसने भी झूठ बोला होगा ना, ऑल द बेस्ट, कौवा आके काटेगा अभी।
0: दिस इज लाइक अ गोल्ड। Hey there, मैं हूँ बाली ब्रह्मभट्ट। Catch me on my show Gold Afternoons with tributes, अनसुनी बातें, राग आधारित गाने on Like a Gold and Like a Radio Midlands from 1 PM to 4 PM।
2: झूठ

0: भाई मिला लेंगे एक बार घड़ियां, देखते हैं टाइम कितना हुआ है। इट्स 44 मिनट्स पास्ट 8। फ्राइडे इवनिंग, हाँ फैंटास्टिक फ्राइडे, मज़ा आया फैंटास्टिक फ्राइडे सुन के। तीसरे आवर की तरफ चलेंगे और तीसरे आवर में कव्वाली या फिर गज़ल क्या आने वाली, वो ये तो कविता बन गई, कव्वाली या गज़ल क्या आने वाली। ओके, सो मंडे से फ्राइडे ज़रूर हम लोग फिर से मिलेंगे, मज़ा मस्ती करेंगे। अभी नहीं जा रही मैं कहीं, हूँ मैं अभी एक घंटा तो आराम से और हूँ आप सबका साथ निभाने। अच्छा, सैटरडे स्पेशल कुछ बनाया प्रोग्राम, कहाँ जाना है, क्या गैदरिंग होगी? देखिए, आप और हम रहते हैं लंदन शहर में, इतने बड़े शहर में इतनी सारी चीज़ें होती रहती है सेनोरिटा, तो ज़रूर घर से बाहर निकलना, जाना, घूमना फिरना, घर के काम शॉपिंग भी कर लेना, लेकिन घूमो फिरो। मुझे अपना ये शहर ना बहुत अच्छा लगता है, अपने शहर की वाइब मुझे बहुत अच्छी लगती है, क्योंकि जहाँ तहाँ लोग एक तो घूमने आते हैं और समर्स जैसे स्पेशली आते हैं, वैसे सारे अराउंड द ग्लोब के लोग जिनके फैमिली मेम्बर्स दोस्त यहाँ रहते होंगे प्लस टूरिस्ट भी, तो जैसे जैसे समर्स करीब आता है अप्रैल ऑनवर्ड्स वी स्टार्ट सीइंग द नंबर ऑफ पीपल, यू नो टूरिस्ट जो है उनकी तादाद बहुत बढ़ जाती है। बड़ा अच्छा लगता है ऐसे देख कर, एंड देन फिर हम लोग भी कहीं ना कहीं घूमने फिरने निकल जाते हैं बिकॉज बच्चों की छुट्टियाँ होती है, तो समर प्लान्स बिल्कुल उस सब वीकेंड्स पे ये सारी चीज़ें चलती रहती हैं। तो वीकेंड्स पे हमारे दूसरे प्रेजेंटर्स भी आते हैं, उनका साथ देते रहिए, लेकिन मंडे टू फ्राइडे इवनिंग शाम 7 से 10 तो इवनिंग शो विद अश्विनी। ना डांट खा रही, मैं तो प्यार से ही बोल रही हूँ, ज़रूर सुनिएगा मुझे। लास्ट दो ट्रैक्स इस आवर के, बदन पे सितारे, दैट्स द फर्स्ट ट्रैक, सेकंड वन इज बंगले के पीछे। वॉल्यूम अप रखिए।
1: Like a Radio 90s, Like a Radio Punjabi, Like a Gold 2, now available on the Like a Radio mobile app and Alexa. This is Ashwini, in for Anisa Nazir, on the evening show. Like a Gold.
2: Wherever you want to go for the holiday of a lifetime or a trip to visit loved ones, call Southall Travel 24 hours a day for total peace of mind. A fast, reliable service and a money-back guarantee. Call them today on 0208 574 8410. That's 0208 574 8410 and very soon you could be on your way. Southall Travel, the specialists for any airline, anywhere, anytime. 0208 574 8410.
3: No more worries for me or you.
4: Southall Travel, auto protected.
5: यूरोप और यूके के सपने देख रहे हैं तो मंत्रा हॉलीडेज के साथ ट्रैवल कीजिए। दिल की धड़कने बढ़ा देने वाले स्कॉटिश हाइलैंड्स, स्नोडोनिया के अफसानवी लैंडस्केप्स और स्टनिंग कोस्ट ऑफ कॉर्नवॉल को एक्सप्लोर कीजिए। आपका सफर होगा मैजेस्टिक स्विस एल्प से लेकर रोमांटिक पेरिस और टाइमलेस ब्यूटी ऑफ इटली के थ्रू।
6: विजिट mantrahalidays.co.uk और कॉल 0203 7736333 नाउ। Bonded. Mantra Holidays. What's your travel mantra?
7: CTV and C5 proudly present Hamare Ram, produced by Felicity Theatre. India aur Dubai mein houseful shows ke baad, ab pehli baar London mein. Dekhiye Ashutosh Rana ko as Ravan aur Rahul R. Bhuchar ko Prabhu Shri Ram ke roop mein. Ramayan ki undiscovered stories live on stage. 9 se 12 July, Eventim Apollo, Hammersmith. Hamare Ram. Book your tickets now. Visit www.eventimapollo.co.uk. Exclusive radio partner, Like Our Radio.
8: Transfer money home and turn every transfer into a chance to win while making your money go even further with SBI UK.
9: Transfer £1,000 or more in a day to enter our daily draw for a £75 voucher.
8: Transfer £2,000 or more in a week to enter our weekly draw for a 1 gram gold coin.
9: Transfer now using the Yono SBI UK app, online banking, or simply visit your nearest branch.
8: And that's not all. Enjoy zero transfer fees and competitive exchange rates.
9: More value, more rewards, more reasons to choose SBI UK.
8: Offer valid from the 4th of May to the 30th of June 2026. Entries open to UK residents 18 plus. No entry fee and purchase required. Terms and conditions apply. Visit sbiuk.statebank for details. SBI UK Limited is authorized by the PRA and regulated by the FCMPRA.
10: This Eid ul Azha, I stay close to what matters with Remitly, like sending a little something towards Ammi's famous biryani, where there's always room for seconds. Remitly, one easy app to send money home. Remitly UK Limited is authorized and regulated by the FCA.
11: Minar Jewelers, agar aap sona bechna chahte hain ya valuation karwana chahte hain, to uski sahi qeemat ke liye tashreef le jaiye Minar Jewelers par, 181 Upper Tooting Road, ya visit kijiye minarjewelers.com. Call 0208 767 7627.
12: Discover unique Grand Prix holidays with flights, race tickets, and hand-picked stays. Combine iconic motorsport weekends with city breaks, beach escapes, or even cruise experiences for the ultimate getaway. Prices start from just £799 per person. Visit skylordcruiseandholidays.com or call 0192 388 3100. Atoll Protected.
13: आवाजों में ताकत होती है जब वो सही जगह तक जाती है. लाइका रेडियो और लाइका गोल्ड आपकी आवाज बन सकते हैं. ऑन एयर हो, ऑनलाइन या ऑन ग्राउंड, हर प्लेटफॉर्म पर आपका ब्रांड चमकेगा. संपर्क करें 0207-132-1458 या ईमेल sales@laikaradio.com.
14: The Evening Show with Ashwini.
15: बदन पे सितारे लपेटे हुए

0: taking you to the best destinations in the world.
1: बिल्कुल क्लियर स्काई है tonight और हल्की फुल्की हवा है तो टिमटिम सितारे दिखेंगे. लो टेम्परेचर ऑफ 14 इन लंदन tonight. कल 28 मैक्सिमम मिनिमम 14. इट विल बी सनी डे मैनचेस्टर में आज रात. यहाँ पे भी क्लियर स्काई है, जेंटल ब्रीज है, टिमटिम सितारे दिख सकते हैं. बिल्कुल 10 डिग्रीज मिनिमम मैक्सिमम कल होगा 24 मिनिमम 12 सनी डे.
0: For special rates to India, Pakistan, Dubai, Maldives, Thailand, USA, Canada, Africa, Australia and New Zealand, call Southall Travel 24 hours a day, 7 days a week on 0208 574 8410. Ashwini.
1: ओए होए होए होए जी, क्या बात क्या बात. तीसरे आवर में है आपकी और हमारी. यहाँ पे बड़ी स्मूथली आप और हम आ गए, दो घंटे का ट्रैवल करके यहाँ पे पहुँच गए. और वेलकम है जी तीसरे आवर में आप हम और ये मेलोडियस गीत द इवनिंग शो विद अश्विनी.
0: लाइक अ गोल्ड लेट्स रिटर्न टू द बिगेस्ट हिट्स back to back sponsored by travelhubworld.com for the best service and unbeatable prices visit travelhubworld.com travelhubworld.com
2: humse sasta kahin nahi mil sakta
3: travelhub
2: at all protected
0: Leica. Ashwini in for Anisa Nasir.

0: Swinney, brightening up your weeknights.
1: बैक टू बैक जो ये डांस नंबर्स चल रहे हैं, आप सब इसे एंजॉय कर रहे हैं। वेलकम, दिस इज द थर्ड आवर। गोरिया रे गोरिया, आई नो फिल्म से सुना है आप सभी को जॉली मुखर्जी लता मंगेशकर की आवाज में। नेक्स्ट ट्रैक वॉज लता मंगेशकर की आवाज में काली चरण फिल्म से, जा रे जा ओ हर जाई। थर्ड आवर, यस, सैटरडे की तरफ धीरे धीरे आप और हम बढ़ते जा रहे हैं। वीकेंड तो शुरू हो गया ना, ये पे बिल्कुल। फ्राइडे अगर वर्कआउट करने नहीं गए तो दुख मत मनाना, गिल्ट मत लाना, हाय राम आज तो मैं वर्कआउट करने नहीं गई, योगा नहीं किया, वॉक नहीं किया, ऐसा कुछ मत सोचना, क्योंकि फ्राइडे इवनिंग जो है वर्कआउट अच्छे से हो जाने वाला है, क्योंकि द इवनिंग शो विद अश्विनी रहता है आप सबके लिए। अगला ट्रैक कौन सा सुनाने वाली हूँ, ब्यूटिफुल रोमांटिक ट्रैक है, इसमें डांस तो नहीं है शायद, पर जिनको डांस करना है कर लेना। उसके पहले SBI 8,
2: ये है
0: Like a Gold SBI UK Money Talk. Send money to India with competitive rates with Yono SBI UK online and via the SBI UK branch.
1: Your £1 in British sterling could get you up to 127 Indian rupees. Send money to India via SBI Yono app or branch before end of June and be into winner £75 voucher every day when you send over £1,000. Also 1 gram of gold coin every week when sending over £2,000. Terms and conditions apply.
0: State Bank of India UK offers savings products, business banking, buy-to-let mortgages and safe deposit lockers. Visit sbiuk.statebank to locate your nearest branch. T's and C's apply.
2: The Evening Show with Ashwini.

0: Breakfast for London at Breakfast and Drive.
1: थर्ड आवर अभी तो शुरू हुआ है जी, अभी तो बस देखिए कि क्या प्लेलिस्ट आपके लिए अपलोड कर रखी है हमने यहाँ पे, एक से एक जबरदस्त गीत। अब हम धीरे धीरे बढ़ रहे हैं आर्टिस्ट ऑफ द वीक की तरफ। तो आर्टिस्ट ऑफ द वीक पूरे सप्ताह रही अनुराधा पौडवाल, रही मतलब कि अभी कल का दिन है, बरसों का दिन है। एंड अनुराधा पौडवाल के मैक्सिमम गीत हम लोगों ने सुने हैं 90s में, मतलब जो भक्ति गीत भी होते थे घर पे, जो सुबह सुबह कैसेट भी लगती थी ओम बुरबुआ स्वाहा की हमारे यहाँ पे, सो वो भी अनुराधा पौडवाल की आवाज़ भी लगती थी। जब भी मैं अनुराधा पौडवाल की आवाज़ सुनती हूँ तो कहीं ना कहीं मैं अपने बचपन में चली जाती हूँ, बिकॉज म्यूजिक इज एपिसोडिक मेमोरी होती है हम लोगों की। किसी म्यूजिक के साथ में कोई किस्से कहानियाँ कुछ तो हमारे लाइफ में ऐसा हो जाता है जो बन जाता है हम सबके लिए एक एपिसोड। और ऐसे एपिसोड्स जो हैं फिर कितने भी चाहे हम बड़े हो जाए बूढ़े हो जाए वो हमेशा हमारे साथ में रहती है। तो अगला ट्रैक अनुराधा पौडवाल एंड अमित कुमार की आवाज़ में बागी फिल्म से सुना रही हूँ आपको, और उसके बाद में बिकॉज इट्स फ्राइडे तो इट्स गज़ल टाइम एंड गुलाम अली जी की आवाज़ में हंगामा है क्यों। ओए होए होए होए होए, वॉल्यूम अप रखना है रख लो, मीडियम रखना है रख लो, लो तो मत करना क्योंकि मज़ा नहीं आनेगा। दिस इज़ द इवनिंग शो विद अश्विनी ऑन लाइका गोल्ड रेडियो इन लंदन एंड लाइका रेडियो इन ग्रेटर मैनचेस्टर।
0: दिस इज अश्विनी इन फॉर अनीसा नज़ीर ऑन द इवनिंग शो।
2: Location, location, location.
3: In real estate, location is everything, and this one is a winner.
2: Introducing Greens by Daniel, a premium collection of townhouses and villas
3: located in Dubai in a prime location for high appreciation.
2: Step inside and walk into fully furnished townhouses and villas with premium Italian furnishings.
3: Step outside and enjoy 50+ amenities inside the master community.
2: And the best part, townhouses and villas Greens start from just £711,000.
3: To book, call our London office on 02 0039635757. Greens by Danube, prime location,
2: high appreciation
3: in Dubai.
4: भारत या पाकिस्तान जाने की सोच रहे हैं तो एयर टिकट साउथ हॉल ट्रेवल से खरीदिए।
5: मगर साउथ हॉल ट्रेवल से ही क्यों?
4: क्योंकि उनसे ज्यादा सस्ती टिकटें कहीं नहीं मिलेंगी।
5: गारंटेड
4: बुकिंग करवाएं और उसके बाद 24 घंटों के भीतर कहीं से भी सस्ती ला के दिखाएं तो ये फुल रिफंड या प्राइस डिफरेंस वापस कर देंगे। साउथ हॉल ट्रेवल
5: फोन 02085748410।
4: 24 घंटे किसी भी वक्त फोन करें 02085748410। एट ऑल प्रोटेक्टेड।
6: Dreaming of Europe and the UK? Travel with Mantra Holidays and explore the breathtaking Scottish Highlands, the dramatic landscapes of Snowdonia and the stunning coast of Cornwall. Then journey through Europe from the majestic Swiss Alps to romantic Paris and the timeless beauty of Italy.
7: Visit mantraholidays.co.uk or call 02037736333 now. APTA bonded. Mantra Holidays. What's your travel mantra?
0: CTV and C5 proudly present Hamare Ram, produced by Felicity Theatre. India aur Dubai mein houseful shows ke baad, ab pehli baar London mein. Dekhiye Ashutosh Rana ko as Ravan aur Rahul R. Bhuchar ko Prabhu Shri Ram ke roop mein. Ramayan ki undiscovered stories live on stage. 9 se 12 July, Eventim Apollo, Hammersmith. Hamare Ram. Book your tickets now. Visit www.eventimapollo.co.uk. Exclusive radio partner. Like our radio.
8: इस महीने मेरा बॉयलर लेकर आया है प्री बुकिंग सेल का शानदार मौका। अब सभी बॉश बॉयलर्स पर सीधे £350 की बचत। 25 किलोवाट बॉयलर सिर्फ £1,890 से पूरी तरह फिटेड, और हाँ मिलेगी आपको 7 साल की बॉश गारंटी। तो इंतजार मत कीजिए, अभी कॉल करें 02081502025 और विजिट meraboiler.com। T's and C's apply.
0: Like a gold, London का नंबर वन एशियन रेट्रो म्यूजिक स्टेशन अब अवेलेबल है ग्रेटर लंदन में 10:35 AM पर DAB डिजिटल रेडियो पर। एलेक्सा पे बोलो प्ले लाइका गोल्ड और ऑनलाइन सुनो lykagold.com पे। Artist of the week is brought to you by our new podcast Lyka Extra. Stream it now and be a part of the conversation.

0: Track, brought to you by Derry Valley.
1: Happy Halwai brings your taste buds oodles of happiness with authentic gulab jamun, rasmalai, moti chur laddu and much more. Visit happyhalwai.com.
2: ये है Laika Gold. 10:35 AM.
3: हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ सरिता सबरवाल. एवरी वीकेंड 4 till 7 बहुत सी मीठी मीठी बातें आपके साथ शेयर करती हूँ. सैटरडे एंड संडे मेरे साथ ही रहेंगे.

0: चलिए भाई एक बार हो जाए टाइम चेक आखिरी बार। 8:45 मिनट्स पास 9 आप सभी ने ट्यून इन किया है लाइका गोल्ड रेडियो लंदन में एंड लाइका रेडियो इन ग्रेटर मैनचेस्टर। दिस इज द इवनिंग शो विद अश्विनी। मंडे से फ्राइडे रहता है आपका और मेरा साथ हर शाम 7 से 10 बजे तक। तीन अमेजिंग फीचर्स हैं, यादों की बारात फर्स्ट आवर में, सेकंड आवर में इमोशन ऑफ द डे, जो पर्टिकुलर डे है उस डे के इमोशन से हम आपके लिए गीत लेके आते हैं। थर्ड इज गज़ल या कवाली। तो अल्टरनेट डे ये पैटर्न है कि एक दिन गज़ल होगी तो एक दिन कवाली होगी। बहुत प्यार आप लोग देते हैं, बहुत मज़ा आप लोगों को आता है हर गीत पे। आप लोगों की तरफ से जो फीडबैक आता है, डांस मज़ा मस्ती करते हुए आप भी इंजॉय करते हैं, मैं भी करती हूँ। और मैं डांस मस्ती मज़ा इंजॉय कैसे करती हूँ, तो मेरा जो अपना पेज है रेडियो वाली अश्विनी इंस्टाग्राम पे आप चेक कर सकते हैं, साथ ही हमारा लाइका गोल्ड रेडियो का जो इंस्टाग्राम पेज है वहाँ पे देख लीजिए, पूरी मस्ती मज़ा होती है। और लाइका रेडियो का जो हमारा मैनचेस्टर का पेज है वहाँ पे भी वो मस्ती मज़ा गपशप इंटरेक्शन आपको दिखती रहेगी। हमेशा की तरह यही कहूँगी कि प्यार ज़िंदगी में बहुत बहुत ही प्यारी चीज़ है ना। प्यार दो, प्यार लो। पावर तो किसी को बर्बाद करने के लिए चाहिए ना। आई एम श्योर आप लोगों में से कोई भी अपने पावर का यूज़ नहीं करता होगा। ऑन दैट नोट आई हैव टू से लव यू ऑल। प्लीज़ टेक केयर ऑफ योर सेल्फ। मंडे से फ्राइडे रहना मस्ती करने के लिए। गुड नाइट।
1: ये है लाइका गोल्ड। This superhit song is proudly sponsored by Tilda Basmati Rice. Discover the serious delicious possibilities with Tilda.
2: Star Track of the Hour sponsored by Star Tours. Coach, Eurostar, your flight. Aap choose karo apna style. Baki sab Star Tours experience sambhal leta hai. Visit startours.co.uk.

0: ये है लाइका गोल्ड।
1: Wherever you want to go for the holiday of a lifetime or a trip to visit loved ones, call Southall Travel 24 hours a day for total peace of mind. A fast, reliable service and a money-back guarantee. Call them today on 0208 574 8410. That's 0208 574 8410 and very soon you could be on your way. Southall Travel, the specialists for any airline, anywhere, anytime. 0208 574 8410.
2: No more worries for me or you.
3: Southall Travel, at all protected.
4: Location, location, location.
5: In real estate, location is everything. And this one is a winner.
4: Introducing Greens by Daniel, a premium collection of townhouses and villas.
5: Located in Dubai, in a prime location for high appreciation.
4: Step inside and walk into fully furnished townhouses and villas with premium Italian furnishings.
5: Step outside and enjoy 50 plus amenities inside the master community.
4: And the best part, townhouses and villas, Greens start from just £711,000.
5: To book, call our London office on 020-3963-5757. Greens by Danube. Prime location.
4: High appreciation.
5: In Dubai.
6: Transfer money home and turn every transfer into a chance to win while making your money go even further with SBI UK.
7: Transfer £1,000 or more in a day to enter our daily draw for a £75 voucher.
6: Transfer £2,000 or more in a week to enter our weekly draw for a 1 gram gold coin.
7: Transfer now using the Yono SBI UK app, online banking, or simply visit your nearest branch.
6: And that's not all. Enjoy zero transfer fees and competitive exchange rates.
7: More value, more rewards, more reasons to choose SBI UK.
6: Offer valid from the 4th of May to the 30th of June 2026. Entries open to UK residents 18 plus. No entry fee and purchase required. Terms and conditions apply. Visit sbiuk.statebank for details. SBI UK Limited is authorised by the PRA and regulated by the FCMPRA.
8: वेडिंग सेलिब्रेशंस, कॉर्पोरेट इवेंट्स, रागसन सब कुछ एफिशिएंटली हैंडल करते हैं। परफेक्ट लोकेशन ढूंढने से लेकर इनक्रेडिबल थीम्स डिजाइन करने तक, वर्ल्ड क्लास कुजीन से हर छोटी बड़ी रिक्वायरमेंट तक मैनेज करते हैं। 30 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस हर इवेंट को खास बनाए। फॉरन का फोन मिलाए 0208839880 और विजिट ragasan.com। लोकेशन, डिजाइन, मैनेजमेंट या केटरिंग, रागासन।
9: यूरोप और यूके के सपने देख रहे हैं तो मंत्रा हॉलीडेज के साथ ट्रेवल कीजिए। दिल की धड़कनें बढ़ा देने वाले स्कॉटिश हाइलैंड्स, स्नोडोनिया के अफसानवी लैंडस्केप्स और स्टनिंग कोस्ट ऑफ कॉर्नवॉल को एक्सप्लोर कीजिए। आपका सफर होगा मैजेस्टिक स्विस एल्प से लेकर रोमांटिक पेरिस और टाइमलेस ब्यूटी ऑफ इटली के थ्रू।
10: विजिट mantraholidays.co.uk और कॉल 0203736333 नाउ। एप्टा बॉन्डेड। मंत्रा हॉलीडेज, व्हाट्स योर ट्रैवल मंत्रा।
11: इस महीने मेरा बॉयलर लेकर आया है प्री बुकिंग सेल का शानदार मौका। अब सभी बॉश बॉयलर्स पर सीधे £350 की बचत। 25 किलोवाट बॉयलर सिर्फ £1,890 से पूरी तरह फिटेड। और हाँ, मिलेगी आपको 7 साल की बॉश गारंटी। तो इंतजार मत कीजिए, अभी कॉल करें 0208150 2025 और विजिट meraboiler.com। T&Cs apply।
12: आपके अपने लाइका गोल्ड पर।

0: Laika Gold.
1: Location, location, location.
0: In real estate, location is everything. And this one is a villa.
1: Introducing Greens by Daniel, a premium collection of townhouses and villas.
0: Located in Dubai, in a prime location for high appreciation.
1: Step inside and walk into fully furnished townhouses and villas with premium Italian furnishings.
0: Step outside and enjoy 50 plus amenities inside the master community.
1: And the best part, townhouses and villas, Greens start from just £711,000.
0: To book, call our London office on 02039635757. Greens by Danu. Prime location.
1: High appreciation.
0: In Dubai.
2: The voice that turned love, heartbreak and memories into timeless songs. Pepe's presents
3: Atif Aslam live in the UK.
2: Atif Aslam brings his unforgettable sound to the O2 London on Sunday the 14th of June.
3: Book your tickets now at AXS.
2: Presented by Denby Productions, supported by Rianne's Music.
3: Exclusive radio partner, Laika Radio.
4: आपके घर में किसी प्रियजन की मृत्यु हुई है, इस दुख की घड़ी में आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर अंतिम संस्कार की सभी रस्में ओम फ्यूनरल केयर करके देंगे। कैंटन रोड वेस्ट लंदन और इल्फर्ड ईस्ट लंदन में ओम फ्यूनरल केयर्स वेल वर्स्ड प्रीस्ट्स कैरी आउट ऑल द राइट्स एंड रिचुअल्स इन इंग्लिश, हिंदी, गुजराती, मराठी, तमिल एंड अदर लैंग्वेजेस। कॉन्टेक्ट कीजिए कल्पेश पटेल ऑन 0208922334 24 Our line.

0: Non-stop classics. Like a gold, London.
1: Travelhubworld.com कामयाबी के शानदार 22 बरस सेलिब्रेट कर रहे हैं by opening their third branch on 2 Ealing Road, Wembley. Find the best price on any hotel, anywhere in the world on Travelhubworld.com. Flights and holidays हमसे सस्ता कहीं नहीं मिल सकता. Call Travelhub 24/7 on 0208-782-8833 or visit Travelhubworld.com.
2: Travelhub, best service with unbeatable price.
1: At all protected.
2: Visit travelhubworld.com.
3: The voice that turned love, heartbreak and memories into timeless songs. Pepe's presents
4: Atif Aslam live in the UK.
3: Atif Aslam brings his unforgettable sound to the O2 London on Sunday the 14th of June.
4: Book your tickets now at AXS.
3: Presented by Denby Productions, supported by Rianne's Music.
4: Exclusive radio partner, Leica Radio.
5: चलो जाइए एक नवा सफर पर
6: सिरीन हॉलीडेज अपने पूर्व अफ्रीकाना स्थलों की मुलाकात लेवा आमंत्रण आपे छे कंपाला नाइरोबी मुंबासा जांजिबार अने दार ए सलाम साथे जिंजा अने मचिसन फॉल्स
7: बस पैक करो अने रिलैक्स थई जाओ
6: केम के आपनी सफर अमारी सफर छे वधु माहिती माटे
7: कॉल करो दीप्ति पंड्या ने
6: 0116266481 पर वधु माहिती माटे लॉग इन करो sirenholidays.co.uk पर
8: राम कृष्ण हरी UK तैयार आहात ना ऐतिहासिक क्षणाचे साक्षीदार व्हायला येत्या 6 जूनला होते वाद्य महोत्सव 2026 रॉयल विंडसर रेस कोर्स SL4 5JJ 100 ढोल 80 ताशे मराठी खाद्य संस्कृतीची चव घ्यायला आणि मराठी उद्योजकांना भेटायला नक्की या महाराष्ट्राची परंपरा संस्कृती आणि आनंदाचा जल्लोष आणि विठ्ठल नामाचा गजर हा सोहळा तुम्हाला लाइव्ह बघायला नक्कीच आवडेल थेट भारतापासून UK पर्यंत सर्वांना जोडणारा एकच नाद वाद्य महोत्सव टिकट्स आता उपलब्ध आहे svrtuk.org जय हरी विठ्ठल
9: So, your decaf, oat milk, extra but not piping hot, 4 pumps of caramel, no sugar, small latte in a large cup. That will be 10 minutes.
10: No worries, I'm having fun on Play Ojo.
11: Keep it fun with Play Ojo's safer gambling tools, including take a break and time checks to keep track of your play.
9: Here's your decaf, oat milk, extra but not piping hot.
10: Thanks. Playtime's over. Mmm, lovely.
12: Feel the fun. Play Ojo.
13: 18 plus gamble aware.
14: Leica Radio Network. Proud hospitality partner, Ragasan.
15: अपने बिजनेस को यूके के लार्जेस्ट एशियन कमर्शियल रेडियो नेटवर्क पर एडवर्टाइज करने के लिए कॉल करें लाइका रेडियो सेल्स ऑन 0207-132-1458 या ईमेल करें sales@laikamedia.co.uk
16: सारी रात बॉलीवुड क्लासिक्स का साथ सिर्फ लाइका गोल्ड पर